0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुणेरी आवाज 107.8 खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद रामा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी अभी तक तो हम बहुत सी चीजों को मैनेज कर रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, लाइफ को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, अपने प्रोफेशन को मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब खुद के ऊपर नजर गई तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा और अपनी सही पहचान करते हुए क्या वो सिचुएशंस हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, इस पर कई सारी बातें हम कर चुके हैं। आज भी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर पिछली कड़ी को हम देखें सिस्टर शिवानी, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए थे कि जब सिचुएशन आ जाती है तो एक छोटा सा रिकैप लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि Why actually we need to manage the self?
1: We just saw last time के परिस्थितियां बहुत सारी हैं हमारे सामने जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ही चीज है जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज माई रिस्पॉन्स। सो वी शिफ्टेड द फोकस के सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय क्यों ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो सिचुएशन अपने आप संयम में आ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ एक बातों के बारे में हमने विचार किया। एक था साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम उलझन कहते हैं ना, बहुत उलझन है क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हम एक मिनट निकाल के भी स्टेप आउट करें कि जो ड्रामा चल रहा है उसको यहां से न देखने की बजाय एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें हर एक एक्टर का रोल बहुत क्लियर दिखाई देगा और सिचुएशन जैसी है वैसे दिखाई देगी। और फिर जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वही प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो साक्षी दृष्टा वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन मुझे नहीं कंट्रोल कर रही है, मेरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन जब हम उसमें उलझे हुए थे कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। सो जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत केओस हो रहा है, लेट्स से ऑफिस में होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट पे हो, आज शाम को सबमिट करना है, डेडलाइन इज देयर एंड यू हैव टू सी द एनवायरमेंट ऑफ द ऑफिस, इट इज लाइक केओस, एवरीवन इज शाउटिंग एट ईच अदर एंड जल्दी करो, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे
0: ब्लेमिंग,
1: ऐसे वातावरण में वो प्रोजेक्ट खत्म होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है, क्योंकि द होल एनर्जी फ्लो इज वेरी नेगेटिव। लेकिन अगर हो तो जाएगा पूरा, लेकिन एक्सपीरियंस क्या रहा सारा दिन का या वो एक महीने का जब आप वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, स्पेशली इवेंट्स ऑर्गेनाइज हम करते हैं, अब रोल ही है इवेंट ऑर्गेनाइज करना। इवेंट कुड बी एज स्मॉल एज कि आपके घर पे आज एक डिनर है, आपके घर पे आज एक बर्थडे पार्टी है, दैट्स ऑल्सो एन इवेंट। और उस इवेंट में आप देखो पूरा परिवार कैसा केओटिक सा हो जाता
0: है, और उसके बाद जैसे ही सारे मेहमान जाते हैं आप ऐसे थक जाते हैं, बिकॉज इट इज लाइक इतना टायरिंग पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है।
1: तो ऐसे जैसे ये छोटी छोटी सिचुएशंस हैं, इनमें आप एक बार स्टेप आउट करके देखो। मॉर्निंग में आप देखो, जो आप घर पे, हमने लास्ट टाइम भी बात की कि मॉर्निंग का सीन कैसा होता है घर पे, अब इस मॉर्निंग के सीन में सपोज आज हमारे घर जो बहन आती है सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो आज नहीं आई, तो पूरा सीन कैसा हो जाता है। इट इज एवरी वन इज लाइक, अब एक है कि आप शोर मचाते रहो एक दूसरे पे चल, और एक है आप एक मिनट स्टॉप करो कि यू नो व्हाट एम आई डूइंग। घर साफ होता जा रहा है और अंदर क्लीनिंग द बर्तन, वे क्लीनिंग द हाउस एंड अंदर क्यों नहीं आए, ऐसे नहीं है वैसे, इट्स अ सिचुएशन नॉट इन माई कंट्रोल, माई रिस्पॉन्स। तो अगर उस समय हम 10 सेकेंड भी अपने आप को स्टॉप करके कहें वट एम आई डूइंग एंड यू विल इमिजिएटली जस्ट स्लो डाउन, जस्ट हैव टू कम आउट ऑफ इट वन मिनट लाइक दैट। तो वन वॉज डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, द अदर वॉज फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन, कि हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन

0: टेंशनें जो अपने अंदर भर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भी हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है. तो लेट्स बी केयरफुल, जहां तक इन्फॉर्मेशन मीडिया से भी है, जहां तक इन्फॉर्मेशन चारों तरफ की, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा भरते जा रहे हैं. और उससे क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है ना यहाँ पे, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंज्यूम करने लगती हूँ बाहर से, तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर जो ऑलरेडी इतना भर गया है. हाँ, इतना भर
1: कोई भी कॉर्नर नहीं है जिस पर लिखे हैं.
0: या तो उसमें फिर मेरा रिस्पांस फिर ऑटोमेटेड होने लगता है, क्योंकि मेरा रिस्पांस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है. और फिर इन्फॉर्मेशन भी कौन सी क्वालिटी की हम भर रहे हैं, तो जहां इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा दर्द वाली भरेंगे तो रिस्पांस फिर ज्यादा दर्द वाला हो जाएगा. तो इसलिए हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन भरे तो भले हम सुन पढ़ तो रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य ले, तो एटलीस्ट फर्स्ट लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव. और तीसरा हमने देखा कि जब भी हम ये जर्नी पर हैं कि ये दर्द मेरी क्रिएशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ, फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. लेकिन जब कभी ऐसी थोड़ी सी भी हार खा लें, रिएक्ट कर जाएं, एटलीस्ट देन स्टॉप एंड लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ. नहीं तो अगर एक बार, दो बार, चार बार ऐसे हार खाते गए तो लगेंगे नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम ही राइट था कि ये सब कुछ तो बाहर से ही आता. लेकिन अगर सपोज मैंने एक बार रिएक्ट किया, गुस्सा किया, ना लेट मी सिट बैक एंड यू नो रिकवर. जैसे कि एक इलनेस तो आ गई, लेकिन इलनेस का इलाज कर लें, उससे रिकवर हो जाए. क्योंकि हम उससे रिकवर नहीं होते तो एक के बाद एक बीमारी
1: फिर हमें उसके साथ जुड़ती जाते हैं.
0: तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार अगर बीमारी आपको कोई हो जाती है तो आपका अपना इलाज आपको पूरी तरह से करना चाहिए ना. शारीरिक बीमारी भी होती है, कहते हैं रेस्ट कर लो, अच्छी तरह से रेस्ट कर लो ताकि आप उस बीमारी से रिकवर हो जाओ. अगर आप बिना रिकवर हुए ही एक्टिविटी में आ गए तो वो बीमारी हो सकता है आपको फिर से दोबारा आ जाए. तो इसी तरह एक बार गुस्सा किया, उसमें से रिकवर नहीं किया तो 10 मिनट बाद फिर कुछ और हो जाएगा. और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे एंगर इज नेचुरल.
1: और इनफैक्ट नहीं, एक बार जब एंगर कर जब हो जाता है ना, जब अपने आप को रिस्ट्रेन किया उसके बावजूद भी हो गया, उसके ऊपर हमने काम नहीं किया उसी वक्त, तो उसके रिपरकशंस, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद ये देखा जैसे शिवानी कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं.
0: बिकॉज वी सॉ कि फीलिंग क्या होती है, फिर मेरी गलती तो थी ना, फिर जस्टिफाई मतलब आपकी गलती थी. देन अगेन दैट यू नो, क्योंकि वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम इतना डीप रूटेड है कि अगर एक वो थॉट आ गई कि मेरी गलती नहीं थी, दूसरी थॉट आएगी आपकी गलती थी, तीसरी थॉट आएगी फिर चेंज किसको होना चाहिए, आपको. यू सी ना, अगेन वी फॉल बैक इन टू दैट ओल्ड थिंकिंग पैटर्न. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिएक्ट कर भी दिया किसी भी फॉर्म का रिएक्शन, बाहर या अंदर, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स एंड सिट बैक विद योरसेल्फ. अगर आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपका कोई फैमिली मेंबर या आपके कोई फ्रेंड्स, अगर उनका मूड खराब हो गया, यू नो दे आर अपसेट एंड यू सी देम लाइक दैट कि दे आर अपसेट, दे आर इन पेन, तो आप क्या करते हो?
1: हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम उनके साथ बातें करने लगते.
0: नाउ सी, इज इन दैट नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट भी हम टाइम निकालकर उनसे बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हाउ आर यू, इट्स ओके, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, भूल जाओ, कोई बात नहीं. तो जबकि हम औरों के लिए ये टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि वो दर्द में है एंड उनका दर्द मुझे मैटर करता है, तो मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ बैठूंगी, तो मैं अपना काम छोड़ के अपने साथ क्यों नहीं बैठ सकती? अगर मैं दर्द में हूं, मैं दर्द में ही काम करती जाती हूं, करती जाती हूं, अपने साथ क्यों नहीं 2 मिनट निकालकर बैठ सकते?
1: That's very true actually.
0: So the minute we go into pain, let's stop. अपने आप से बात करें, फिर उस सिचुएशन को पर्सपेक्टिव में देखें और रिकवर करें विद द पॉजिटिव थॉट, व्हाटएवर हैपेंड फाइन, आई एम अ पावरफुल सोल. अगेन यू नो, वो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ है थॉट्स का, कोई बात नहीं, उसको स्टॉप करके, कट करके, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करना है. अगर मैंने अपने आप को नहीं स्टेबल किया तो फिर मैं हर सिचुएशन में फेल होती जाऊंगी सारा दिन. आप देखो, अगर एक बार आपका मूड खराब हो गया आज सुबह सुबह, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, फिर हर सिचुएशन में, यही अगर आपने 2 मिनट निकाल लिया आपने, ना दिस इज ऑल मेडिटेशन, दिस इज ऑल मेडिटेशन. नो मेडिटेशन, क्योंकि फर्स्ट चीज है अपने आप से रिश्ता, फिर परमात्मा से रिश्ता, अपनी हीलिंग, दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन

0: you know, every time we think it's supposed to be very technical. No, meditation is just beautiful. Taking out time, apne aap se baat ki, parmatma se baat ki, apna dhyan rakha, usse shakti li. Aur isiliye hum hamesha kehte hain ki wo ek ghante ke baad ek minute. Taki wo automatic agar hamari routine mein fix ho jaye ki hum har ek ghante ke baad ek minute nikalenge, to kahin na kahin agar us ek ghante ke andar thoda bhi kuch upar niche plus minus hua tha, to us ek minute ke andar.
1: बिल्कुल, जैसे आप ये कह रहे हो, हम एक हर एक घंटे बाद, हर दो घंटे बाद घर फोन करते हैं, बच्चा ठीक है कि नहीं. सो अगेन यू नो, इस हस्बैंड को फोन करते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, कि कितने सारे लोग ऐसे करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बोलें, अपने आप के साथ करें कि मैं ठीक हूं कि नहीं.
0: इट्स ओनली दैट, वो एक मिनट सिर्फ उसी के लिए है. और बजाय कि अब कई बार क्या होता है कि अगर हम वो एक मिनट निकालते हैं तो कई बार हम एक सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स में फिर चले जाते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मुझे दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, उसने ऐसा किया. नो, देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. हमें वो वन मिनट इसलिए नहीं निकाला है कि हम वो परिस्थिति का चिंतन करने वाले हैं उसमें बैठकर, उनको ऐसा उनको. सो इसलिए हम परिस्थिति का चिंतन ना करके तुरंत वो वन मिनट स्टार्ट ही करते हैं पॉजिटिव थॉट से कि आई एम अ पावरफुल बींग, या आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ लवफुल बींग. मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं जो शांति का सागर है, तो मैं आत्मा कैसे होंगे. तो क्या है, पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा.
1: जस्ट फील्स यू द मोमेंट यू गिव दैट थॉट.
0: इसलिए वन मिनट में हम ये नहीं कहेंगे कि आप वन मिनट निकालकर हर टाइम उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो उस एक घंटे में
1: हम सोच रहे हैं.
0: हम वैसे भी सोच रहे थे. एग्जैक्टली. तो वो वन मिनट इसलिए निकलता है ताकि उस एक घंटे के अंदर जो ऑर्डिनरी वेस्ट, कभी थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स जो आ गई होंगी, तो ये वन मिनट में हम कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते. तो जितना भी थोड़ा सा वो एक घंटे के अंदर ऊपर नीचे हुआ होता है वो खत्म हो जाता है. भले हम अपने सभी भाई बहनों को ये बार बार कह रहे हैं, बट आई स्टिल फील नॉट मेनी आर ट्राइंग. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बात बहुत सिंपल लगती है कि एक घंटे में एक मिनट, ये कौन सी बड़ी बात है, बट ये एक घंटे में एक मिनट बहुत पावरफुल टूल है. अगर समवन जस्ट टेक्स इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट और इसको एक हफ्ते के लिए सिर्फ करे, एक हफ्ते के लिए आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दो जो हर एक घंटे के बाद बजेगा ही बजेगा, और वो तो बजेगा लेकिन आप स्टॉप करेंगे. आप
1: वो स्टॉप तो करेंगे
0: और आप पॉज करके वो क्रिएट करेंगे. लाइफ विल चेंज, दैट इज डेफिनेट.
1: वेरी ट्रू. और वो उस एक घंटे के बाद जो एक मिनट है उसमें ये नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं सोचना कि क्या हुआ था.
0: वो कई बार क्योंकि दर्द इतनी डीप रूटेड है ना, और वो वैसे ही चल ही रहा था उस एक घंटे में, तो कई बार वो एक मिनट भी उस सिचुएशन के बारे में या उस व्यक्ति के चिंतन के बारे में ही एक, बिकॉज वन मिनट इज वेरी शॉर्ट. और आप एक घंटे के बाद हर टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते. आप ऑफिस में हैं, आप बार बार ये नहीं कर सकते आप पांच मिनट निकाल लो, दस मिनट. सो इसलिए इट्स वन मिनट. लेकिन अगर वो वन मिनट एक्यूरेटली आप करो, अब होता क्या है, सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा. लेकिन अगर मैंने वो वन मिनट 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा. फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11, तो
1: स्टेज जो कुछ नहीं हो पाएगा.
0: फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है. हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना, डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है, 10 to 11 ये करना है. तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो, 9 to 10 क्या फील करना है. What to do is one column, 9 to 10 what to do and what to feel. 10 to 11 कैसा फील करना है,
1: पावरफुल, लवफुल.
0: एंड बेसिकली एवरीवन वांट्स टू फील हैप्पी. अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो वन यूनानिमस वर्ड इज खुशी चाहिए. तो हम और आप, इट्स अमेजिंग, आप यू आस्क एनीवन टुडे कितने दिन खुश रहना चाहेंगे, कहते 365 days. अच्छा, पूरे दिन में कितनी बार, कहेंगे हर मिनट. तो प्योर डिजायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं, और कर रहे हैं ऑपोजिट. क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ. तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया, 10 to 11 ये काम हो गया, तो सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया. और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई.

0: फिर अगर मेरी आज इवनिंग अच्छी नहीं बीती या कुछ ना कुछ यू नो हर टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे ऑफिस पे पड़ेगा कि नहीं कल से?
1: बिल्कुल, मैं ऑलरेडी थकी हुई होंगी, यू नो ऑलरेडी मेरा लड़ाई हो चुकी होगी क्योंकि मैं थकी हुई थी और थकी हुई होती गई, अगले दिन मॉर्निंग फिर मेरा यही।
0: आप किसी से भी आज पूछो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है तो ऑर्डर पता है क्या देंगे, वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। पहले मेरा काम, फिर परिवार, फिर मैं खुद। अब काम इतना ज्यादा टाइम ले रहा है आज, कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम में चलेंगे, फैमिली को ही हम 2-3 घंटा दे पाते हैं तो वो थर्ड स्टेप तक हम पहुंचते नहीं,
1: तब तक हम सो जाते हैं।
0: इसलिए कहेंगे सेल्फ के लिए टाइम नहीं है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी ले रहे हैं। व्हाट इज द ऑर्डर, वर्क, फैमिली, सेल्फ, क्या ये राइट ऑर्डर है हमारा? तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो द ऑर्डर शुड बी सेल्फ, फैमिली, वर्क। सेल्फ हेल्दी होगा तो फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। फैमिली हेल्दी को छोड़कर आप ऑफिस जाएंगे तब जाकर आपका वहां कुछ मन लगेगा, आप ठीक से काम करेंगे। सेल्फ दर्द में है तो रिलेशनशिप्स घर पे थोड़े से ऊपर नीचे हुए। अब इस दर्द में इस परिवार को छोड़ के ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस पहुंच के मन कहां होता है? ये हुआ, ये हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट है, पता नहीं क्या। तो आर यू डूइंग जस्टिस टू वर्क ऑल्सो? तो अगर स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है आप परिवार के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते और काम के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे घंटे स्पेंड कर सकते हैं वहां
1: लेकिन आप तो बिल्कुल निकलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा।
0: एक्चुअली पहले वर्क को कर दिया, सेल्फ के ऊपर टाइम नहीं दिया तो उस वर्क में ज्यादा घंटे स्पेंड करने पड़ रहे हैं क्योंकि दर्द में आप काम करो और हेल्दी स्थिति में काम करो, फर्क।
1: ऑफकोर्स आप इतने बोझिल, इतने हैवी, इतने थकान से भरे हुए होते हो। इनफैक्ट यहां से शिवानी एक और बात कि बार बार हम ये कहते हैं कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ,
0: काम परिवार के लिए कर रहा हूँ।
1: क्लीन ये होता है, जब ये आपने ये कहा तो मेरे को बिल्कुल सामने ये याद आएगी कि वर्क को हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है लेकिन हमारी प्ली ये होती है
0: कि फैमिली के लिए,
1: हमारे लिए तो काम।
0: एब्सोल्युटली, लेकिन फैमिली को क्या चाहिए आपसे? फैमिली को सिर्फ धन नहीं चाहिए आपसे, चाहिए क्या आपसे? खुशी चाहिए, घर में प्यार चाहिए। आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वॉज नॉट राइट। एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना, नहीं, इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूं मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता। तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा, मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया, नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क एंड जितना काम मुझे करना है 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। हम काम कर रहे हैं, यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहां पर है?
1: वहां क्या चल रहा होगा?
0: अगर घर पे नहीं भी है, ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो काम भी कर रहे हैं मन ऐसा क्यों, ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं? सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क? इवन काम के क्षेत्र में फुल कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहां पे स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं हमारा सारा टाइम काम पे है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो राइट सेट करनी है। पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक, परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूं, देन एवरीथिंग विल बी मोर यू नो फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथ एंड आई विल एंजॉय एवरीथिंग आई एम डूइंग। नहीं तो मैं तीनों को एंजॉय नहीं कर रहा, तीनों जगह ही कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे।
1: पर मजे की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए।
0: एक मिनट, एक घंटे के बाद एक
1: मिनट।
0: इट जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा। वो सुनने में इतना इजी लगता है कि एंड मेजोरिटी बोलते हाँ हम तो जरूर कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना पड़ता है। कई कॉरपोरेट हाउसेस में जब उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऑफिस में जैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड लिटिल लाइट म्यूजिक, यू नो मेडिटेशन म्यूजिक हर घंटे के बाद बजता है एक मिनट के लिए, रिमार्केबल रिजल्ट, पूरा एनवायरमेंट ऑफिस का ठीक हो जाता है। एंड क्योंकि लोगों को एक

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: सोनेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं यहाँ, लड़ने वालों के कदम में जहान होता है।

दबीने आमा कोने से आधारे दारू घड़बाया ता दारू घड़बाया दारू घड़बाया ता दारू घड़बाया दारू घड़बाया ता दारू घड़बाया दारू घड़बाया ता दारू घड़बाया महिषासुर मर्दिनी आई तू तू च महाकाली तू च चंडिका तू जगदम्बा तू शेरावाली चौधरी पुठान कैसा गुलामी लाख तुझे अवतार लाख तुझे अवतार दारू घड़बाया ता दारू घड़बाया दारू घड़बाया ता दारू घड़बाया दारू घड़बाया ता दारू घड़बाया दारू घड़बाया ता दारू

चमत्कार तू दाखव कर गए यवना का संहारे, चमत्कार तू दाखव कर गए यवना का संहारे। दारू घड़बया ता दारू घड़बया, दारू घड़बया ता दारू घड़बया, दारू घड़बया ता दारू घड़बया, दारू घड़बया ता दारू घड़बया। निजली से आई आज कुठे तू कशी तुला जागवू, स्वातंत्र्याची तहान माझी सांग कशी भाग।

0: आनंदाचे सुर पुण्याचा माग आपण ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो खुशियां बांटो.
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
2: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है तब वो सच बोलेंगे. हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा. इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी. लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ. सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी. ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू. आप सच बोलेंगे, देर इज नो रीजन. कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो खुशियां बांटो.

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। आपके हम हर बार बताते हैं कि इतने सारे ईमेल्स आते हैं, फोन कॉल आते हैं, और आज इसीलिए हमने तय किया है कि कुछ ऐसे सवाल जो बहुत से दर्शकों के होते हैं और बहुत सारा उसमें ही जवाब मिल सकता है, उन्हें हम चुने और अपने प्रोग्राम में शामिल करें और इन सवालों का जवाब साथ मिलकर तलाशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे हम सफर हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सुश्री शिवानी, इतने सारे सवाल और इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सवाल होते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं हम कि मिलते जुलते सवाल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी वही है, मुश्किलें वही हैं, अड़चने वही हैं, स्ट्रेस उतना ही है, एंगर है, बाकी सारी और चीजें हैं। एक सवाल जो यहां पे इन्होंने भेजा है, मुंबई से आया है और विनय जी ने ये लिखा है, मेल भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मैरिड मैन और मैं अपनी वाइफ के साथ हूं, बहुत खुश हूं, लेकिन हर बार मुझे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पर बहुत शक करती है। मैं उन्हें इतनी बार समझाने के बाद भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा कहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई डू केयर फॉर हर एंड हो ये रहा है कि धीरे धीरे मैं इरिटेट होने लग गया हूं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ से भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है और आप शायद उन्हें कुछ समझा पाएं, और मैं चाहूंगा कि आप बात करें।
1: वेरी टिपिकल प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जहां दोनों वर्किंग हो गए और दोनों बहुत सारा समय बाहर बिताने लगे, तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम क्रीप अप होने लग गई, क्योंकि हम परिवार के साथ कम समय
0: बाहर ज्यादा
1: समय बिताने लगे। और एक नॉर्मल भी होता

0: पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एंड आई बिलीव कि आप मेरे बारे में सोचते हैं कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल, या आई बिलीव कि आप सोचते हैं कि शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी, सो आई स्टार्ट फीलिंग यू लाइक हर मोर देन मी, एंड ये मेरे लिए बहुत डैमेजिंग हो जाता है, क्योंकि मैंने सारा कुछ इस बिलीफ पर बेस कर दिया कि फिजिकल लुक्स एक्सेप्टेंस लाते हैं, फिजिकल लुक्स पे मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है, और लोगों की अप्रिसिएशन मेरी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है. अब क्या होता होगा मे बी कि जहां भी मदर एंड डॉटर इकट्ठे जाते हैं, इफ शी फील्स कि फिजिकली मदर उससे ज्यादा सुंदर है, शी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग कि मदर को ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, और जहां ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता तो शी मस्ट हैव फेल्ट कि ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब ये समझने की बात होगी कि इट्स नॉट एक्चुअली फिजिकल ब्यूटी. किसी को भी आप सिर्फ एक दो मिनट के लिए फिजिकल ब्यूटी पर आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कि लोगों की हमारे प्रति एक्सेप्टेंस या हमारे तरफ अट्रैक्ट होने की जो बात आती, इट्स मोर ऑन माय एनर्जी लेवल. सो एंड इन योर मदर, यू कैन नेवर कम्पीट विद अ मदर.
1: नो, बट देन आई कैन अंडरस्टैंड, शी इज याना फ्रॉम राजस्थान एंड शी इज सो हर्ट. मतलब आप एंगर और हर्ट से जुड़ा हुआ कि शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड नाउ आई डोंट इवन वॉन्ट टू टॉक टू हर.
0: हाँ, लेकिन इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये प्रॉब्लम तो खुद अपनी क्रिएट की हुई है, एंड वन थॉट एंड वो फिनिश हो जाएगी.
1: ज्यादा टीनेजर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है
0: क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत लो है इस टाइम, और सेल्फ एस्टीम सारा फिजिकल पर बहुत ज्यादा आधारित है, एंड सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंडेंट है कि कितने लोग
1: मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे अटेंशन कितना दे रहे हैं, मैं जहां जाती हूं मुझे देखते हैं.
0: सेल्फ इतना वैक्यूम में है कि मुझे औरों की अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, मेरी सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे औरों से अटेंशन नहीं चाहिए, और दूसरी बात, दूसरे लोग भी अगर आपको चाहिए एक्सेप्टेंस, देन इट्स नॉट फिजिकल ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट. अपने इनर सेल्फ पर काम करना शुरू करें. मे बी इट्स पॉसिबल दैट फिजिकली तो आपकी मदर अट्रैक्टिव है ही है, लेकिन इट्स ऑल्सो दैट शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन,
1: है
0: ना. तो शी सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, तो उनके अंदर से वो पॉजिटिविटी जो रेडिएट होती है, उसके प्रति लोगों का आकर्षण होता, और इसको देख देख के मैंने अपने अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, वो नेगेटिव ऑरा मेरे अराउंड है, उसकी वजह से लोग मेरे से
1: दूर होते जाएंगे,
0: और भी दूर हो जाएंगे. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वॉक इन करता, यू कैन फील द एनर्जी. आप फील कर सकते हैं कि कितना फियर है, कितनी इनसिक्योरिटी है. तो नथिंग अबाउट द फिजिकल लुक, लेकिन लोग वैसे ही दूर हो जाएंगे, बिकॉज आई एम कैरिंग अ वेरी नेगेटिव ऑरा. तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल लुक्स. वो आधारित है कि हमारा ऑरा क्या है. जैसे ही हम किसी भी कमरे में प्रवेश करते, हमारे साथ साथ हमारी एनर्जी फील्ड एंटर करती है, एंड वो एनर्जी फील्ड डिसाइड करती है कि और लोग मेरी एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं या मुझसे दूर होना चाहते हैं. तो उस पर वर्क करें, एंड यू विल हैव एवरीवन विद यू,
1: एंड समवेयर आई थिंक शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर मदर एज वेल. यू नो,
0: मदर इज ऑलरेडी अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन इंटरनली ऑल्सो, इट्स अंडरस्टैंडेबल, एंड शी शुड अंडरस्टैंड दैट शी शुड लाइक द आइडिया दैट हर मदर इज सो ब्यूटिफुल.
1: सो इट्स लाइक
0: एक थॉट है कि यू नो, इनसिक्योरिटी किस बात की, कुछ भी नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि उनको जब वो दोनों इकट्ठे होंगे,
1: और कितना बिल्डअप कर लेते हैं एक्चुअली, इतना हर्ट में रह के, इतना हर्ट में रह के कंटिन्यूअसली, यानी आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुख दे रही हैं कहीं ना.
0: और ये आज आप अपनी मदर के साथ एक्सपीरियंस करें, कल आप औरों के साथ भी करेंगे. तो इसको अगर बिलीव को यहां ही नहीं ठीक कर दिया, तो ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होगी और रिलेशनशिप्स में. और अगर मेरा मदर डॉटर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, तो मैं अपने आगे की रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग नहीं बना सकूंगी. मेरे हर रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक हीनता की भावना, एक भय और एक इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी. मुझे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनसे डर है, उनसे खतरा है, तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी. और ये मेरी अपनी प्रॉब्लम होगी, आई हैव टू रिमेम्बर, ये औरों की वजह से नहीं है.
1: जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी. आप आज बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत करके हमें लिखा है, इट्स अ बिग स्टेप. अगला स्टेप ये है कि आप जिम्मेदारी उठाइए, आप अपने जिस भी जो भी

0: फील कर रही है और फिर एक थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे, एक
1: थॉट इस केस में तो वो रियलाइज भी कर रही होंगी कि मदर की कोई गलती तो है ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट उनको ये लग रहा होगा मुझे ऐसे थॉट्स आए क्यों रहे हैं. तो कुछ नहीं, स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट और अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दे, वो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दे और अपने आप.
0: एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर दैट ब्यूटीफुल सोल एक्चुअली. सिस्टर शिवानी, एक और सवाल है जो बहुत से दर्शकों का सवाल से जुड़ता है और ये है वितेश शर्मा जी हैं. ये इन्होंने हैदराबाद से लिखा है. ही इज अ रिटायर्ड जज एंड ही सेज आई हैव गॉट टू सन्स. बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बच्चे हैं दोनों, एक अमेरिका में है और एक बैंगलोर में है. मैं और मेरी वाइफ एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं लेकिन अब मैं 65 के करीब हूं, ज्यादा हूं. मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं, मेरा मन ये करता है कि बाकी लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगता है. पर मैंने अपने हिसाब से ही बच्चों को कभी भी बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आने दिया था. जब वो छोटे थे तब मैं इतना बिजी था अपने प्रोफेशन में और वाइफ के साथ जो था वो भी एक दूरी बनी रही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहा. अब इतनी लोनलीनेस में फील करता हूं, ना बच्चों के साथ रिलेट कर पा रहा हूं ना वाइफ के साथ रिलेट कर पाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूं उनको और वाइफ ने अपना सर्कल बना रखा है. मेरे पास ना मैं कह पाता हूं अपने बच्चों से कि मैं लोनली हूं क्योंकि मुझे अब प्रोग्राम भी देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैंने भी उन्हें लोनलीनेस कहीं दी है. और ना मैं वाइफ के साथ जो है अपना रिलेशनशिप दोबारा, मतलब मुझे पता ही नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करूं मैं. एंड देयर इज दिस लोनलीनेस व्हिच इज सीपिंग इन, सो आई वांट टू शेयर इट विद यू.
1: ट्रू. नाउ ये बहुत अच्छा है कि ये एक रियलाइजेशन आ गई है. और कहीं ना कहीं और भी एक बात जो बहुत अच्छी है वो है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसकी. यू नो, ये एक फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया.
0: आई थिंक ही सेड बिकॉज ऑफ द यू नो प्रोग्राम आई हैव बीन सीइंग, आई एम रियलाइजिंग दैट
1: बिकॉज यू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला स्टेप होता है क्योंकि इसी सीढ़ी पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हमारा दृष्टिकोण नहीं तो सिर्फ औरों की तरफ होता है. तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया था. अब ये भी समझना होगा कि ये एकदम से एक दिन में दूसरे नहीं चेंज होंगे. हाँ, मैं चेंज हो सकता हूं लेकिन औरों को, और लोग भी क्योंकि है तो फैमिली तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. ये तो बहुत नजदीक के संबंध है. ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते होंगे. इट्स जस्ट दैट उनको तो इसी व्यवहार की आदत पड़ी है ना बहुत समय से.
0: अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चला कि आप बदल गए. ये ना हमने कहा था एक बार पहले.
1: क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में तो पुराना वाला पास्ट एक्सपीरियंस से ही चल रहा है. क्योंकि लेबलिंग ये होता है वो ब्लॉकर बिलीफ. यू नो, जो हमने सोच देखा था कि किसी को भी हम एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसे है. हाँ. अब क्या होगा, वाइफ बच्चे सभी एक साइड पर जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि ये हमारे फादर ये तो है ही ऐसे. नाउ इट विल नीड टाइम फॉर देम फॉर दैट बिलीफ सिस्टम टू चेंज. तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए मुझे ही वो एनर्जी भेजनी पड़ेगी. अगर तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमने बहुत समय से एक ऐसी पर्सनल कॉन्वर्सेशन शायद की नहीं तो बहुत इजी नहीं होगा बताना कि यू नो आई एम रियलाइजिंग. क्योंकि इजिएस्ट वे तो अदरवाइज ये है जस्ट गो एंड शेयर कि आई हैव रियलाइज्ड. लेकिन हमारे ईगो हमें ये सब करने से रोक देती है. सिंपल, बहुत सिंपल होगा अगर यू कैन वॉक अप टू ऑल थ्री एंड टेल देम आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने अपनी पूरी जीवन क्या किया है. बट नाउ I have realized and so I have changed. You know, not even wanting. I have changed. And कुछ उसके बाद बोलना नहीं है कि मुझे हाँ. ये करना है या मुझे वो relationship build होना है. वो एक barrier है जो मैंने ही रखा था बीच में. अब मुझे जाकर सिर्फ उस barrier को हटाना है क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो वैसे ही ready थे. तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. तो या तो मैं एनर्जी से उस बैरियर को हटाऊं और अगर मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी है तो अगर मैं सीधा वो मैसेज कन्वे कर देता हूं तो वो बैरियर एक क्षण में फिनिश हो जाएगा. एंड इतना ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप होता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता. ये तो सिर्फ हमने पकड़ के रखा है कि हम दूर हैं, हम दूर हैं. दूर मतलब क्या? रिलेशनशिप है क्या? एनर्जी एक्सचेंज. ठीक है, बहुत समय से हमने एक्सचेंज किया ही नहीं. हम अलग अलग होके बैठे थे, बीच में एक वॉल था. आज वो वॉल हट गया. क्या होगा? एनर्जी फ्लो बिगिंस. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट. इसमें कोई पुरुषार्थ तो इनको करना ही नहीं पड़ेगा. जस्ट बिगिन. एंड अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत समय से कम्युनिकेट

0: नमस्कार, मी मोनाली स्वागत. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.
2: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, करियर ऑप्शन में. आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे. और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग विशेष बात करने वाले करियर इन मैजिक. जी हाँ, मैजिकल करियर भी बोल सकते हैं आप. और पिछली बार जैसे कि हमने बातें की थी डॉक्टर संदीप शेलके जी से होम्योपैथी के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में, और खास उसमें मेडिकल में होम्योपैथी किस तरह से काम करती है, होम्योपैथी में कैसे करियर बना सकते हैं, होम्योपैथी के क्या चैलेंजेस हैं, इस विषय को लेकर विस्तार से आपसे बातें की थी. तो आज हम लोग एक और नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं कि मैजिक यानी जादू सीख के अपना करियर कैसे बना सकते हैं, अपने जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरह से लोगों की दुआओं के साथ में, है ना. किसी को खुशी देकर, किसी को हंसा कर, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट पाकर अगर आप अपना कमाई कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना. तो आइए आज ऐसे ही एक बड़े मैजिशियन से आपकी बातचीत कराने वाला हूं, प्रशांत भावसार जी से. आप नागपुर से हैं और पिछले काफी समय से जो है ये काम कर रहे हैं मैजिशियन का, और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं आप. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने बताया कि आप मैजिक का काम करते हैं, मैजिक वर्कशॉप भी करते हैं, सिखाते भी हैं. तो मुझे बड़ा जिज्ञासा हुआ कि क्यों ना हमारे रेडियो मधुबन को जो सुनते हैं, और खास शनिवार के दिन आपके लिए हम करियर वाला ये प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग फील्ड के बारे में बातें करते हैं. तो आइए, आप सभी की तरफ से प्रशांत भावसार सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में.
4: ओम शांति.
3: ओम शांति. प्रशांत जी कैसे हैं आप?
4: बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा. खुशी
3: जी, जी जी, मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप समय दे पा रहे हैं हमें और आपसे बातचीत हो रही है. प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए हमें, अपने परिवार के बारे में बताइए विस्तार से.
4: जी जी. तो जादू का जो सीखा कैसे हुआ कि मेरे जो गुरु थे भावसार जी थे, मेरे अंदर पर बैठे वो, और उन्होंने जादू पर बनाया था नागपुर में मेडिकल कॉलेज के टैक्सर में. जादू जैसा घर बना, उन्होंने जैसे एंट्री होते से गेट खुल जाना, एंट्री होते से काली बजे गेट खुल जाना, कार्पेट के ऊपर पैर रखते थे, खोपड़ रखी उसके ऊपर अपने आप बाल उगाना, बातें करना, ऐसे बहुत सारे कमेंट उन्होंने बनाए थे घर के पास ही बनाए उन्होंने जादू मार्केट. तो बहुत लोग आते थे वहाँ पे.
3: अच्छा.
4: तो बचपन में मैं वहाँ पे एक बार देखने के लिए चीज क्या है, देखते जादू ने क्या है.
3: हाँ, हाँ,
4: मदर खेल का हमने बहुत सारे देखे तो उत्सुकता थी, ये ऐसे गायब क्यों, ऐसे तुरंत दिखती है, तुरंत कैसे गायब होती है आंखों के सामने. तो जिज्ञासा में देखने गया जादू मार्केट पर, तो अंदर से मैंने बात किया, अंदर मैंने बड़े हैरत अंदर जो अपने कला जो है वो अलग तरह की कला है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं. सौ में से हार्डली दो तीन लोग इसको सीख पाते हैं, बाकी लोग देखते चले जाते हैं. मुझे लगा कि यार कुछ अलग बनना है अपने को, तो ये कला सीखना अति आवश्यक है. डांस ड्रॉइंग, डांस ड्रॉइंग पेंटिंग, ये तो कोई भी करता ना, कॉमन चीज है.
3: बिल्कुल.
4: मैजिक को ना कोई अलग

0: का रहता हूँ, तो मैंने वहां पे ज्वाइन किया, उनसे बात किया, जब भी उनके शो रहते थे, बड़े बड़े शो करते थे वो, तो उनके साथ में रहता था, तो ऐसे में धीरे धीरे उनके सानिध्य में रहते मैं सीख गया और कुछ अलग रह गया, अपना अलग हटके कर रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: और अपनी पॉपुलरिटी भी जल्दी बन गई कि अरे वाह इतना अच्छा कम समय में ऐसा महंगे महंगे स्टेज शो कर रहा है, तो उसे प्रसिद्धि भी अच्छी मिली, पैसा भी अच्छा मिला और भावना भी अच्छी हुई, काफी अच्छा लगा कि लोग फिर अपने चॉइस क्या करें, लेकिन इसको प्रैक्टिस काफी ज्यादा है। और पहले आज से कुछ साल पहले जादू टोना जादू अलग अलग मुल्क मानते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जादू कला इसको बहुत कम मानते थे, जादू टोना करना कुछ गलत करना ऐसा उसको लोगों के दिलो दिमाग था, लेकिन जादू कला में ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर तो कोई नाता नहीं है इसका जादू टोने को लेकर, और उसमें गलत हो ही नहीं सकता,
1: बिल्कुल
0: है ना, तो वो सब कला है जिस लोगों को हंसी मनोरंजन हम लोग करते हैं, लोगों के चेहरे पे हम लोग स्माइल ला देते हैं अपने एक्टिंग के जरिए अपने स्पीच के जरिए, तो काफी अच्छा लगता है कि लोग सराहते हैं, लोग मान सम्मान देते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और मेरे परिवार में भी दो तीन लोग हैं जो इसको चला रहे आगे, मैं वर्कशॉप लेता हूँ, मैजिक का वर्कशॉप लेता हूँ, अभी भी लिया नागपुर में भी लिया, और हमारे नागपुर में जामठा में ब्रह्म कुमारी जो विश्व शांति सरोवर वहाँ भी वर्कशॉप लिया, बच्चे बच्चों के लिए वगैरह जो भी गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अप्रिशिएट किया चीज को, कला है ना, कला कला कला सर कैसे है, कला कोई भी सकते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और कला में कोई उम्र का बंधन होता ही ना,
1: हाँ
0: हाँ, 5 साल के ऊपर जैसे समझ में आया तो सभी कर सकता है, छोटा बड़ा बुजुर्ग कोई भी कला को सीख सकता है,
1: जी जी जी,
0: ये ऐसे ही है, चालू कला भी है।
2: प्रशांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आपका जो वीडियो है सरोवर का वो मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा, आपने उसमें अध्यात्म को भी जोड़ा है, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वो बताइए, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं?
0: वर्तमान मीडिया से जुड़ा हूँ, नागपुर का महाराष्ट्र का नंबर वन दैनिक पेपर है नवभारत, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ कम से कम 25 साल से, और उनका भी सहयोग मुझे बहुत बार रहता है, मैजिक शो में संडे को मुझे छुट्टी रहती है, तो संडे के दिन मैक्सिमम मैं मैजिक शो करता हूँ, और वहाँ से मुझे ऑफिस में जगह कॉपरेशन मिलता है, वहाँ भी मेरे शो हो चुके हैं।
1: अरे वाह,
0: हाँ ऑफिस में ऐसा है कि मेरे नाम से कुछ जानते हैं, जादू का नाम भी सब लोग जानते हैं, बोलेंगे प्रशांत माधव जी है क्या, तो कोई बोले कौन प्रशांत माधव पता नहीं, लेकिन आप जादूगर एक तुरंत
2: पहुंच जाओ, जादूगर एक ही है,
0: तो अच्छा लगता हम लोग को, अच्छा लगता है, चलो अलग हटके तो कुछ काम कर रहे हैं, और सभी लोग बोलते कुछ अलग हटके काम कर, लिंक हटके काम कर, तो ज्यादा मजा उस चीज में,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मुझे भी बहुत खुशी होती है, और मुझे भी मैं आपके ब्रह्म कुमार परिवार से जुड़ा हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार एक आध्यात्म के तौर पे मैंने बाबा को लेके शोज करता हूँ, काफी जगह मेरे शो हो चुके हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल शो हो चुके मेरे,
1: जी जी जी,
0: हाँ जी, चीजें ऐसी है कि उसमें हम अलग अलग फेसवॉश को यूज कर सकते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो
2: प्रशांत जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, मीडिया से जुड़े हुए हैं और काम करते हुए साइड में आप मैजिशियन का काम करते हैं, लेकिन मैजिशियन आपकी एक पहचान भी बन गई, जो तो काम कर रहे हैं उसको सेकेंडरी हो गया और मैजिक आपका प्राइमरी हो गया, फर्स्ट हो गया, तो लोग आते हैं तो आपको एज ए जादूगर ही आपको याद करते हैं और पहचान देते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक जो है स्टेटस बन जाता है, एक नाम आ जाता है।
0: जी जी।
2: तो आइए इसके इसी विषय को लेकर आगे और बात करते हैं, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही है प्रशांत भावसार जी से और मैजिक के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैजिक आपने कितना समय लगाया सीखने में और कैसे आपने इसकी स्टार्टअप किया? आप अपने जो गुरु से शुरू किया है, जो चीजें देखा वही से आपको लगा कि ये नया चीज है, इसको सीखना चाहिए, तो कितना टाइम आपको लगा? थोड़ा सा अपना अनुभव भी शेयर कीजिए। कुछ चीजें जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ चीजें हो सकती है इसमें, तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत वाली आपकी एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिए।
1: जी, हालांकि मुझे इसको 20-25 साल से मैजिक शोज में कर रहा हूँ और शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ है मुझे, क्योंकि समझ में आता कि क्या करें, लोग उसको उल्टा पुलटा कुछ बोलते थे उस चीज को, जादू तो मैं करता, ये करता, वो करता, तो चिढ़ाते भी थे। लेकिन जब उनको पता लगा कि अरे ये तो कोई चीज आसान चीज है, अपन भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फिर धीरे धीरे वर्कशॉप लेकर धीरे धीरे सीखना चालू किया, तो काफी लोग परिवार जुड़े कि नहीं यार हमारा बच्चा भी कर सकता है। जो आप कितने बड़े बड़े शो देखते हैं, आदमी काटते हैं, पीटते हैं, गायब कर देते हैं, जो उनको अलग था, लेकिन जब उनको सिखाया ये सब ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ट्रिक के जरिए सब कर सकते हैं। तो फिर मानवीय हलचल से सब

0: ये अलग हटके कला है और मैजिक ऐसी कला की फैमिली देख के पूरा फैमिली देख सकते उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसमें एक नवीनता पूर्ण होती है और फालतू की कुछ नहीं होगी वहाँ पे, प्योरली अच्छा मनोरंजन होता है, फैमिली एंटरटेनमेंट होता है उसमें, इसे आप देख सकते हैं। और हर संडे सैटरडे संडे फेस्टिवल्स में हम लोग ऑलरेडी बुक हो जाते हैं, एक एक महीने से हम लोग बुक हो जाते हैं वहाँ से फेस्टिवल आया तो कोई भी।
1: अच्छा,
0: हाँ अभी गणपति का शो रहे, अभी दुर्गा ऐसे भी फेस्टिवल चालू होंगे, अभी तो सब मैगजीन बुक रहते हैं। कभी कभी कोई भी मैगजीन एक एक दिन में दो दो तीन शो करते, सब क्या करते वो। हाँ, और पैसा भी अच्छा कमाते वो लोग।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वर्तमान में वो है कि युवा को मेरा बोलने का मतलब है कि आप इस मैजिक फील्ड में आइए, सीखिए और कमाइए। हाँ, कोई भी सकता है, सीखने की तो उम्र होते नहीं ना सर कोई भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी सीख सकता उसमें।
1: जी जी,
0: आपको मैं बता दू मैजिक में फर्स्ट टेस्ट दीदी जिसका नाम है कृतिका पारेख, अहमदाबाद की है वो, फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट टेस्ट दीदी है, फेमस मैजिशियन है।
1: अच्छा,
0: फेमस मैजिशियन, इंडिया फर्स्ट टेस्ट दीदी कृतिका पारेख नाम है उसका। वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा मैजिक करती है।
1: अच्छा,
0: और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बड़े बड़े शोज करती है। लड़कियां
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और मैं चाहूंगा कि कुछ आपने गुरु के बारे में जरूर बताइए जिनसे आपने सीखा, जिनकी क्या हॉबी थी, कैसे वो आपके साथ जुड़े और किस तरह से उनके कौन कौन से शोज आपने देखे और किस तरह से वो काम करते थे, उनकी विशेषता क्या थी, वो थोड़ा सा बताएं।
0: हाँ, तो मेरे गुरु जी सुनील भावसर जी थे, वो मेरे अंकल लगते थे, और वो भी मैंने सर्विस करते हुए उन्होंने मैजिक को डेवलप किया। बहुत छोटे गांव से आए थे वो नागपुर में, तो उनको भी लगा कि अपन सर्विस तो करते रहते हैं, सर्विस में कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन हम लोग कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है जिंदगी में, खुद के लिए, देश के लिए। लोग उन्होंने जादूगर बनाया, जिंदगी में खुद वहां सीखा और आगे बढ़ा, और उनके बड़े बड़े शोज करते थे वो भी। उनका एक ऐसे था कि बॉक्स में अंदर उसको डाल देते, फिर वो बॉक्स तालाब में डाल देते और फिर वो बॉक्स में अपने आप बांट देते, ऐसे बहुत सारी विशेषता थी उनके। एक बॉक्स में बंद करके वहां पर बंद से उड़ा देते थे उनको, तो लोगों के बीच में आ देते थे।
1: जी जी जी,
0: कागज फाड़ के बहुत सारे नोट निकाल देते, कबूतर खरगोश, ऐसे कबूतर खरगोश ऐसे निकाल के लोगों को मना नहीं करते थे। तब बैन नहीं था ना, अभी बैन हो गया उसके ऊपर, तो पहले बैन नहीं था, तो उनको खरगोश है कुछ भी है निकाल देते थे, अच्छा लगता था उनको, बच्चों को। अच्छा, 20-25 साल पुरानी बात है वो, 25 साल पुरानी बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हमारे गुरु सुनील भावसर जी थे, तो उन्होंने उनको बहुत सहयोग किया और उनके बदल के आज मैं इस पर आया। आज भी मेरे भी खुद के वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैंने भी एक नया कार्यक्रम किया, मैंने आंखों पे 12 पट्टी नकाब पहन के नागपुर से वर्धा सेवाग्राम और फिर रिटर्न नागपुर, ऐसे 70 स्पीड से बाइक चलाई मैंने।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: हाईवे पे, हाईवे पे
1: पट्टी बांध के,
0: हाँ आंखों पे 12 पट्टी और नकाब, हाँ बांध के गाड़ी चलाए वो हाईवे पे, वो भी 70 स्पीड बाइक चलाए। हमारे यूट्यूब पे आप देख सकते, नजीम प्रशांत मौसा नाम से ब्लाइंड फोल्ड यूट्यूब पे लाइव है मेरा, तो वो रिकॉर्ड बन गया। तो वो भी अपने एक साहस पूर्ण काम किया, जिसको अंजाम दिया। तो मैजिक तो कर दिया, आप भी कर सकते हैं, लेकिन बस डेरिंग चाहिए, बस डेरिंग चाहिए।
1: बताइए मुझे कि हम लोग, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बताया कि आप बाइक जो है आंखों पे पट्टी बांध के, वो भी 12 पट्टी बांध के चलाए, तो ये क्या प्रैक्टिस तो होगी आपकी, कितना टाइम लगा
0: आपको प्रैक्टिस? काफी कम से 10-15 साल लगे प्रैक्टिस।
1: अच्छा, अच्छा,
0: तब जाके तो डायरेक्ट बड़ा काम किया हाईवे रोड पे,
1: क्योंकि थोड़ा सा भी आग बंद करते हैं तो हमारा बाइक इधर उधर हो जाता है,
0: आजू बाजू लोग चल रहे, आप ले सकते पूरा 1000 लोग आजू बाजू खड़े हैं, बाजू में ट्रक चल रहे, बाजू में गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, देख सकते हैं आप यूट्यूब पे, देख सकते हैं मैंने पैसा वहां ब्लाइंड फोन के नाम से, और कंटिन्यू लाइव था ना वो, उसमें तभी रिकॉर्ड बनता है, कंटिन्यू चाहिए, बीच में ब्रेक, एक मिनट का भी ब्रेकिंग चलता उनको, तो कंटिन्यू चाहिए, वो पकड़ नहीं पाया मैं जो कितना ट्रिक होने के बाद में, इतना स्पीड से मैंने सक्सेसफुल किया उसको, और वो मुझे रिकॉर्ड पत्र बना उसका रिकॉर्ड का। तो वो ऐसी कला ऐसी है कि जोखिम भरी है, इतनी अच्छी भी है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाता है।
1: एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे,
0: जी जी,
1: हमारे जीवन में ऐसे कुछ चैलेंजेस हम लोग ले रहे हैं, तो चैलेंजेस के बीच में जो है

0: जोखिम भी लगता है, तो जोखिम से लोग डरते हैं कभी कभी, है ना
1: जी? हाँ बिल्कुल सही।
0: तो क्या अभी इन चीजों को, जैसे आपने बाइक वाला, ये तो एक्स्ट्रा में ही है शायद, नहीं मेरे ख्याल से
1: हाँ ये
0: मैजिक से
1: एक्स्ट्रा।
0: हट गए। हाँ ये तो स्टंट हो गया आपका खुद
1: स्टंट ही हो गया वो
0: करके,
1: जी
0: है ना?
1: जी स्टंट
0: बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो ये मैजिक से अलग है?
1: हाँ जी हाँ जी
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: स्टंट है, स्टंट मैजिक बोल सकते उसको आप।
0: स्टंट मैजिक बोल सकते हैं एक
1: हाँ
0: बात।
1: इसमें
0: हाँ ये
1: काफी
0: बात
1: लोग
0: सही।
1: करते हैं क्योंकि काफी कम लोग स्टंट मैजिक करते हैं क्योंकि उसमें जान जाने की बहुत बड़ी संभावना होती है।
0: जी जी जी
1: इस बार या उस बार दोनों जगह उसमें ये तो आप
0: बिल्कुल
1: कर पाए तो जीत गए, नहीं कर
0: बिल्कुल,
1: पाए तो खत्म हो गया आपका विषय। काफी लोग की डेथ हो चुकी है उसमें, केरला में
0: बिल्कुल
1: हो चुकी है,
0: बिल्कुल
1: केरला में हो चुकी है, बेंगलुरु में हो चुकी है, दो लोगों की डेथ ब्लाइंड फोल्ड के चक्कर में। थोड़ी सी गलती होगी तो सीधा नाले में गए, सीधा कहीं भी घुस गए,
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा हादसा हो चुके हैं।
0: बहुत
1: तो
0: ज्यादा,
1: मैं भी डरते हुए जो प्रोग्राम किया और सक्सेसफुल रहा
0: बहुत
1: और
0: बढ़िया
1: जिसे सब तारीफ किया मुझे।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको
1: जी जी
0: कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत
1: जी जी
0: शुभकामनाएं।
1: जी जी
0: आइए आगे बढ़ते हैं, और
1: जी
0: मैजिक की बातें चल रही थी, तो
1: हाँ जी
0: जैसे कि आप उनके बारे में, अपने चाचा जी के बारे में जिन्होंने आपको सिखाया,
1: जी जी जी
0: उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने जिक्र किया, जैसे वो टाइम पे वो करते थे, तो वो अभी भी है आपके साथ
1: नहीं
0: या?
1: अभी डेथ हो गई उनकी उसमें।
0: अच्छा उनकी डेथ हो गई,
1: हाँ
0: ठीक
1: कल
0: है
1: 20 साल
0: ठीक
1: की पड़ रही उनकी डेथ हो गई।
0: है। अच्छा, तो
1: उनका नाम आज भी बरकरार है, जादू वाला
0: बिल्कुल
1: आज भी
0: बिल्कुल,
1: लोग याद करते उस चीज को।
0: तो उनका जो आखिरी लास्ट लास्ट में उन्होंने कुछ इल्यूशंस वगैरह भी यूज करते हैं जादू में, तो
1: हाँ
0: वो क्या
1: इल्यूशन
0: है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और वो चाचा जी ने कुछ इल्यूशंस या कुछ अलग माइंड स्टोन उन्होंने अपने मैजिशियन में, मैजिक के कार्य में किया हो, तो वो हमें बताइए थोड़ा सा।
1: हाँ वो तो एक इल्यूजन उन्होंने किया था जो उनको उनको एक बक्स में बंद करके डाल दिया था और हमें तालाब में उसको क्रेन से डाल दिया था बांगड़ा बांध के अगर कोई रस्सी से। फिर वो पापा का फिर वो उन्हें खुद को छुड़ा के हथकड़ी छुड़ा के खुद को बांध के बाहर निकाल के वो तैरते हुए बाहर आए थे।
0: अरे वाह,
1: वो हजार लोगों के सामने वो प्रोग्राम किया था उन्होंने, बहुत साल
0: हाँ
1: पुराने बात है, 20-25 साल पुराने। तो उसका स्टंट था वो
0: हाँ
1: और एक आग के ढेर में उनको ऊपर से डाल दिया था क्रेन से,
0: हाँ हाँ
1: तभी वहां से वो बाबा का सही सलामत आए थे। तो ऐसे
0: अच्छा
1: स्टंट किया है, तो ऐसे
0: हाँ,
1: स्टंट मैजिक स्टंट क्या थोड़ा सा खतरनाक भी होते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन जब सक्सेस हो गया तो आपकी वहां पर बहुत होती है उसमें। जैसे
0: बिल्कुल बिल्कुल। और
1: मैंने कहा कि मैंने स्टंट किया ब्लाइंड से,
0: हाँ इसमें तो पूरा माना डेरिंग, और थोड़ा भी
1: डेरिंग
0: गलती नहीं होना चाहिए, अगर
1: आप
0: थोड़ा भी
1: थोड़ा
0: मिस्टेक हो
1: आंखें
0: जाए
1: हाँ
0: तो आपकी प्रॉब्लम हो
1: जी
0: सकती है,
1: आप
0: ना?
1: थोड़ा आंखें बंद करके यहाँ से बाहर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता आंखें बंद करके।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ऊपर तो मेरे
0: बिल्कुल
1: 12 लोगों ने माता के गेस्ट आए थे, हजार लोगों के सामने किया और नकाब उसके ऊपर नकाब लोगों ने चेक किया, लोगों ने चेक करने का तो नहीं बांधा। उसके बाद मैंने बाइक चलाया दुकान,
0: बहुत
1: वो भी
0: बढ़िया,
1: 24 आवर्स ऑनलाइन था वो कैमरा वगैरह, चार पांच
0: अच्छा
1: कैमरा थे। उसके कैमरे से भी लोगों के बीच में ट्रीक करना और चुनौतीपूर्ण
0: कंटिन्यू
1: काम था,
0: चलाना, हाँ अपने आप
1: कंटिन्यू
0: में एक
1: चलाना
0: और
1: वापस आना, और थोड़ी भी उसमें गलती होती
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: मेरा भी काम तमाम हो जाता।
0: चलिए एक
1: लेकिन
0: और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हमने कहीं वीडियोस देखा था बेंगलोर या कर्नाटक में,
1: हाँ जी हाँ जी
0: उसको एक आदमी उड़ता है, लड़का उड़ता है
1: जी
0: बहुत
1: हाँ जी
0: ऊपर
1: हाँ
0: तक,
1: जी
0: तो क्या ये
1: हाँ जी
0: रियल में उड़ने जैसा कुछ है क्या, जादू से उड़ते हैं क्या लोग?
1: नहीं, जादू से मैं उड़ता था, मैं यहाँ से तुरंत माउंट आबू आ गया होता ना, क्यों क्यों ट्रेन का और प्लेन का खर्चा करता मैं भाई। तो ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है, जैसे ट्रिक है वो,
0: अच्छा
1: उसको
0: अच्छा
1: वीडियो ट्रिक बोल सकते हैं आप, तो कोई हरकत नहीं। पीछे में उनका एक पर्दा लगा हुआ था, वो वैसे टेबल से टेबल उड़ते हैं और पीछे में जो बैकग्राउंड पे वायरिंग चेंज करते हैं। वो पूरा
0: अच्छा
1: कैमरा ट्रिक होती है,
0: अच्छा पूरा कैमरे ट्रिक है वहाँ
1: कवर
0: पे।
1: कैमरा, ताजमहल गायब करना, कुतुब मीनार गायब करना, ट्रेन गायब करना, ये भी जो स्टंट है ये सिर्फ ट्रिक होती है और कुछ नहीं है।
0: अच्छा
1: हाँ ये सामने जो जिसको बोलते हैं इलिजेंस या जिसको
0: हाँ
1: बोलते दृष्टिभ्रम जिसको बोलते ना,
0: हाँ
1: कुछ समय
0: हाँ
1: के लिए आंखों से ओझल हो जाना
0: हाँ
1: और वो चीज दूसरे शिफ्ट कर देना, ऐसा कुछ
0: हाँ
1: तो वो ट्रिक होती है बस, और कुछ नहीं होता। अगर वास्तव में
0: हाँ
1: लोग उड़ते आते तो फिर हम कहीं भी उड़ सकते थे ना, शायद
0: हाँ
1: उनका पेट्रोल पड़ने का खर्चा बढ़ता सरकार का,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो फ्री में उड़ा देते, चलो भाई हम आपके साथ भी उड़ते थे करके, हम भी उड़ रहे आप भी उड़ो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो है ना ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ट्रिक होती है। वो ट्रिक बस उसके लिए भी कामना बहुत होता है, काफी खर्चा करना पड़ता है उस ट्रिक के पीछे में। वहाँ के
0: बिल्कुल
1: लोग
0: बिल्कुल
1: अपने
0: बिल्कुल
1: 99% वहाँ से ऑडियंस जो है वो अपने लोग थी वहाँ पे जो हवा करे सीरीज,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बाकी
0: बिल्कुल,
1: बाहर लोग एंट्री देते हैं उसमें, तो
0: हाँ
1: बाहर लोग एंट्री से पकड़ में ना ट्रिक क्या है।
0: सही बात है सही बात है, हाँ
1: तो
0: हाँ
1: 99% अपने लोग थी वहाँ पे जो अपने
0: बिल्कुल
1: भावा कर
0: बिल्कुल,
1: सके
0: हाँ
1: और ट्रिक के जरिए वो कर सके ऐसा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कारनामा,
0: बिल्कुल
1: ऐसा फॉरन में का भी।

0: लोग करते हैं, अपने इंडिया में भी बहुत लोग करते हैं। अब जो आंखों से जितना जो दिखता है वही सही मानेंगे ना, ऐसी बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ऐसा कुछ होता है रियली में, ऐसा नहीं होता है। हमें उड़ना वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, योग वगैरह बात ही नहीं हो। पुराने सदी पुरानी बात अलग बात थी, सब सात्विक काम था, सब अच्छे लोग थे उस समय उस युग में, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही।
1: जी जी जी,
0: ट्रेन के जरिए वो लोग करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम लोग भी ट्रेन में गायब करते, कुछ चीजें गायब कर देते हैं, तो वो उस समय के लिए था ना, उस समय के।
1: हाँ, उससे कुछ सेकंड का खेल है।
0: हाँ, कुछ सेकंड का खेल है।
1: बिल्कुल,
0: और वो भी मैक्सिमम ऑडियंस अपने लोग रहते हैं वहाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: वास्तविकता है। लेकिन जब ब्लाइंड फोल्ड जो मैंने किया रियल रहता है, वो साहस पूर्ण काम है, ड्रिंग वाला काम है।
1: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि जैसे अभी हमारी यूथ है, वो अगर अपना पढ़ाई वगैरह करते हुए इन चीजों को सीखना चाहे, पार्ट टाइम वगैरह, क्या सीख सकते हैं?
0: हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं।
1: हाँ,
0: वो उसका कोर्सेस है, बात था फर्स्ट बेसिक कोर्स होता है, जिसमें 5 साल के बाद में कोई भी लड़का लड़की को सोच सकता है। बेसिक कोर्स में क्या होता है, घर की जो चीजें होती है, जैसे पेंसिल है, ग्लास है, पेपर है, करेंसी है, मैच बॉक्स है, तो घर की जो चीजें उसे जो अपन मैजिक सिखाते थे, बेसिक कोर्स, वो कम से कम 10-15-20 दिन का रहता है। तो बेसिक चीज में सीखने के बाद आप आधा घंटा कर्म कहा भी छोटे मोटे पार्टी में आप शोज कर पाते हो।
1: अच्छा,
0: बेसिक कोर्स वो फर्स्ट होता है। बाद में सेकंड होता है एडवांस मैजिक, जिसमें आप कम से कम 2-3 हजार पब्लिक रही तो भी वो इजिली सीख सकता है। इसमें कुछ रिलीजर्स होते हैं, कुछ आइटम भी होते हैं।
1: अच्छा,
0: तो जो प्रैक्टिस है उसको कम से 2 या 3 महीने लगते हैं सीखने के लिए। और उसके बाद थर्ड लास्ट जो कोर्स है प्रोफेशनल मैजिक।
1: अच्छा,
0: जब भी बड़े शो हम लोग करते हैं 2-3 घंटे के, तब उसको जो सीखने लगे उसको साथ में लेके आते हैं और उसको इलेजन बताते हैं, इलेजन होता कैसा है और कैसे, क्योंकि मैजिक में सिर्फ छोटी 10 उंगली का कमाल है, इधर की उंगली आपने उधर कर दे तो मैजिक फ्लॉप हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और मैजिक में नो वर्स मोर गाना है ना।
1: बिल्कुल,
0: आपने गाना गलत बोल दिया, ट्यूनिंग अलग बोल दी गाने की, तो दोबारा कर देता हूँ।
1: सही बात है,
0: ड्रॉइंग में गलती बोला ठीक है, सुधार कर उसको ठीक कर, लेकिन मैजिक में एक बार ओपन होगी, सीक्रेट ओपन होगी तो ओपन होगी, उसको दोबारा मैं कर सकता हूँ। उसको सावधानी पर भी उसको सिखाना पड़ता है। तो हम लोग उसको बाकायदा स्टेज में कैसे खड़ा रहना है, कैसे क्या बात करना है, कैसे डायलॉग वाइज करना चाहिए, कैसे एंगल करना चाहिए, आजू बाजू में लोग भी रहे तो भी उनके बीच में भी कैसे सीखे छुपा के उसको प्रेजेंट करना चाहिए, सिखाते हैं हम लोग। कम से कम 5-6 महीने में जो व्यक्ति है वो अच्छे से ट्रेन हो रहा है और आराम से शो कर पाता है और कमाई भी इसमें अच्छी है।
1: सही बात है। चलिए प्रशांत जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी जो सुन रहे हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा।
0: हाँ,
1: तो आइए एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं कि इल्यूशन क्या है, इसमें कैसे काम होता है और कितना आप मैजिशियन बनने के बाद कमाई कितना कर सकते हैं, वो सारी चीजें और आपके मन की भावनाओं को कोशिश करूंगा कि मैं ठीक से पूछ पाऊं प्रशांत जी से, और आपको पूरा एज ए मैजिशियन आप कितना समय में तैयार हो सकते हैं वो सारी सवाल आपको जो है उसका जवाब मिलेगा आगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा जादूगर वाला गीत अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

की छड़ी घुमाऊं करूं न कोई छोरी, आंख झपकते खोल दूं तारा या तिजोरी।

0: रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर इन मैजिशियन के बारे में बातें हो रही है। मैजिक एक बहुत ही अच्छा जादू शब्द सुन के खुशी होती है सबको। और आप अगर जादू की कला सीखकर अपना करियर बना लेते हो, पैसा कमाना शुरू कर देते हो, तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मैजिक के साथ बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा मनोरंजन है, ये दुखी को खुशी कर देता है, उदास को सुख देता है, उदासी में हंसी ला देता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है दुआएं कमाते हैं इसमें, है ना। तो इसीलिए ये जो प्रोफेशन है ये हमेशा चलता रहता है, लोगों को खुशी प्रदान होती है। तो आइए, मेरे साथ फिर से प्रशांत जी जुड़े हैं और उनसे बातें हो रही हैं, और वो खुद एक मैजिशियन है और काफी लंबे समय से वो इन चीजों को कर रहे हैं। तो प्रशांत जी, अब बताइए कि जैसे हम लोग अगर नए बच्चे इसमें आना चाहते हैं, इस फील्ड में आ गए या सीख लिए, तो कम से कम उनको कितना टाइम देना पड़ेगा और कितने समय के बाद वो एक प्रोफेशनली कमाना शुरू करे, तो कहाँ से शुरू होगा, कितना होगा कमाई? जी
2: जी, तो वैसे उम्र का 6 साल के बाद आप तो इसमें कर सकते हैं। कोई भी कला हो उसको खुद का इंटरेस्ट होना अति आवश्यक है। उसको आप जबरदस्ती नहीं करते, ये करो, तो खुद का इंटरेस्ट होना, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। मैजिक चीजें ऐसे की उसको हम लोग दो चीज बता सिखा दे, तो चार चीज उसे अपने दिमाग से लगाना चाहिए। हार्डली हम लोग सिखा देते, वैसे वर्किंग कर देते उसके ऊपर, तो कम से कम 5 या 6 महीने के अंदर 2-3 जो कोर्स

0: पर है तो पूरा कर सकता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: हालांकि तो नागपुर में तो कुछ ज्यादा ये डिग्रीज वगैरह नहीं है, नीचे कॉलेजेस नहीं है, लेकिन आप अगर में केरला में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, बेंगलुरु में जाइए, बॉम्बे में जाइए, कलकत्ता में जाइए, तो वहां तो कॉलेजेस है मैजिक के, वहाँ डिग्रियां नहीं थी इसकी।
1: अरे वाह,
0: बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है वहाँ पे और शो कंटिन्यू वहाँ चलते रहते हैं वहाँ पे।
1: अच्छा।
0: बड़े बड़े मीटर में सिटीज में हमारे नागपुर में कंटिन्यू शो चलते रहते हैं, क्योंकि फिर भी रहती हूँ। आप ऐसे बड़े सिटी में जाओ, केरला में तो बात आता है मैजिक पार्क बनाया मैजिशियन ने, मैजिशियन चुपकड़ करके वहाँ था, तो पूरा पार्क बनाया कम से कम 40-50 एकड़ में, तो पूरा मैजिक के रिलेटेड वहाँ पे सब सिखाते भी है।
1: 40-50 एकड़ में?
0: जी हाँ, बहुत बड़ा एकड़ में उसने बनाया, गवर्नमेंट का उसको बहुत बड़ा प्राधान्य मिला वहाँ पे, सपोर्ट मिला उसको। तो केरला में आप कभी जाइए तो मैजिक पार्क करके वहाँ पे है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: और बहुत सुंदर उसने बनाया, तो वहाँ पे डिग्री भी मिलती सिखाते बाकायदा, और कलकत्ता पे भी डिग्री मिलती है उसकी बाकायदा। हर महीने उसको नए नए मैजिक उसको इन्वेंशन करना पड़ता खुद चीज। आजकल सर इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है, हालांकि आपको मैजिक कहता है बाहर बाजार मिल जाएगी। आज आप 10 रुपए का कोई चिप्स का पैकेट हो उसके अंदर मैजिक आपको मिल जाएगा, बट उसको करने की कला जो हाउ टू प्रेजेंटेशन वो महत्वपूर्ण होता है। चाहे चीज छोटी है बड़ी उससे मतलब नहीं, लेकिन छोटी चीज में भी आप कल सर 10-15 में आराम खींच सकते हैं, अगर आपने काबिलियत हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने की इच्छा हो या कुछ उसमें नया बनाने की इच्छा हो तो कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कुछ नहीं, उस पर तो आप उसका कुछ बोल नहीं सकते। जितना प्रैक्टिस में उतना काम आएगा, जितना आप लोगों को दिखाएंगे उसका आपको आउटपुट मिलेगा, और कमाई तो उसमें अच्छी है। अभी भी हमारे नागपुर में काफी लोग बड़े बड़े शोज कर रहे हैं, आप बड़े बेटर में स्टूडियोज पुणे बॉम्बे कलकत्ता इधर उधर जहाँ भी जाए, बड़े बड़े मैजिक में वहाँ पे अच्छे खाना करते हैं। 500-500 रुपए टिकट रहती है उनकी, 1000 रुपए टिकट रहती है उनकी, फिर भी लोग हाउस पे शो रहते हैं उनका।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत
0: केलाल जी है, जी केलाल जी है, सरकार जी है, उनको जो प्रोफेशनल शोज रहते हैं जरूर आनंद जी है, उनको प्रोफेशनल शो 1000 रुपए टिकट स्टार्टिंग होती, इसके बाद भी लोगों को भीड़
1: ज्यादा होती है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: देखने के लिए उनको लाइन लगती है
0: जी। हमारे तो हमने भी जस्ट हमने मैजिक डे मनाया सर, हमने नागपुर में कम से कम 1 महीने पहले की बात है, तो वो हमारा हार्डी कैपेसिटी का सर 2-3 हजार लोगों को दी।
1: अच्छा।
0: तो हमने मैजिक डे मनाया काफी नागपुर के अभी में शो किया वहाँ पे, तो हॉल के अंदर जितने लोग बैठे थे उससे डबल लोग बाहर खड़े थे।
1: अच्छा,
0: इतनी भीड़ थी, लोग पैसे ले भैया हमसे पैसे लो, हमको अंदर जान दो, हमको शो देखनी है, ऐसे थे लोगों को हमने वापस बाहर गाँव से लोग वापस ले गलत किए थे। तो ये क्रेज है जादू का, अभी भी है और आगे भी रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो जादू जिस तरह से बता रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग जब मेले में जाते हैं
0: जो
1: हर साल कहीं ना कहीं गांव में मेले लगते हैं, और मेले के मेले अंदर जो है वो सारे जैसे कि बाइक चलाने वाले हैं, ये सब आते
0: बिल्कुल,
1: हैं
0: बिल्कुल।
1: तो उसके साथ में मैजिशियन का भी एक शो लगा रहता है, वो पूरा पैक रहता है और बड़ा अच्छी तरह से लोग जो है टिकट खरीदते हैं, घंटे भर का शो रहता है, आधा घंटा पहले टिकट बिकती है और टिकट फुल होने के बाद फिर मैजिक शो शुरू हो जाता है। फिर ऐसे 2-3 शो करके मुझे लगता है कि 10-15 दिन का जो अगर मेला लग जाता है हफ्ते भर, तो कम से कम कहीं ना कहीं बड़ा मेला रेगुलर होता है किसी
0: 15-20 दिन तो चलते हैं मेले को।
1: हाँ, तो अगर 10 दिन भी आपने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल शो चलाया और आपको अच्छा कमाई हो जाता है, तो मेरे ख्याल से एक बार में पूरे साल भर का आपका खाने पीने का तो रह ही जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी कमाई
1: अच्छी कमाई जाती है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। कमाई ऐसा नहीं है कि भाई आप आज ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करके अनुभवी बन जाते हैं और थोड़ा सा नाम हो जाता है, तो निश्चित तौर पे आपको जो है एक अच्छा कमाईने का जरिया भी मिल जाता है। और महीने में अगर आप 10 शोज भी कर लेते हो, हर शो का 4-5 हजार भी पकड़ लिया, तो 50-60 हजार रूपये आराम से आपका मिल जाता
0: आराम
1: है।
0: आराम से, आराम से,
1: और उसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं, आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो शोज रिपीट होते रहते, प्रोग्राम तो उतने ही चलने हैं जितना आपने सीखा है, तो आदत होने के बाद फिर वो तो आपके एक क्या कहते हैं कि
0: रूटीन हो
1: जाता है, वो नोटिंग हो जाता है और उसको बहुत सिंपली तरीके से आप करते हैं, लोगों को लग भी जाता है कि ये तो सचमुच मैजिशियन है ना।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: तो ये चीजें हैं कि करते करते बहुत अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस बन जाती है और प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट ऐसा कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते कि भाई जैसे अब जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, डिग्री कोर्स वगैरह का भी बात आपने कही, क्योंकि ये भी पहली बार मैंने सुना कि इसका भी कोई डिग्री कोर्स होता है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो प्रोफेशनली सब कुछ करना चाहते हैं तो पहले आप मैजिशियन को असिस्ट कीजिए अपने यहाँ के।

0: बुटीक में, और फिर सीखने के बाद आप छोटे मोटे जो शोज करना शुरू करेंगे, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप बकायदा जो है जैसे कलकत्ता है या बॉम्बे है जहाँ स्कूल्स है या कॉलेजेस है उसमें भी एडमिशन ले लेता, वहां पर भी आप जो है सीख के नए सीखने को मिलेंगे नई चीजें, और आप खुद उनसे कुछ नया बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगा आपको। तो फिर हो सकता है कि आप उसमें अगर कोई अच्छा चीज करके दिखाते हो तो वो भी आपका एक रिसर्च वाला मैजिक हो जाता है, तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे, तो उससे कई लोग सीखेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कूल के लिए कॉलेज के लिए भी एक नया जो है सिलेबस में चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको कमाई करने के साधन हैं और रुचि की चीजें हैं। तो इसके अलावा प्रशांत जी आपने कुछ सेवा कार्य भी इसके माध्यम से करते हो, तो उसके बारे में बताइए कुछ। मरीजों के लिए आपने मैजिक किया था हाल ही में, वो पेपर में आया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो कि हम लोग इससे लोगों को जो है ना, एक सोशल सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो समाज में हम रहते हैं, समाज से हम कमाते हैं तो समाज को रिटर्न भी देना पड़ता है।
1: यस यस,
0: अगर आप कमाते हो तो उनको रिटर्न भी दो। हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में कमाए, तो ऐसे गरीब बस्ती में जाकर उनको थोड़ा सा अगर टाइम
1: करते करते
0: तो उनके मन पे जो खुशी होगी, उनको जो खुशी मिलेगा, वो अपने आप में एक जो है समाज को आप कुछ दे रहे हो अपनी कला के माध्यम से, इसका आपको मन जो है संतोष या सुकून फील कर।
1: बिल्कुल।
0: तो प्रशांत जी आपने ऐसा कुछ सोशल काम किया है
1: जी? अभी हाँ, अभी जस्ट मैंने दो दिन पहले हमारे चिकुड़ी कैंसर हॉस्पिटल है नागपुर में, काफी बड़ा है, जैन सेवा मंडल की तरफ से जो क्रिटिकल पेशेंट जो कैंसर के जो लास्ट स्टेज पे होते हैं,
0: अच्छा,
1: जो आज है कल आएगी पता नहीं, तो उनके लिए मेरा शो आता था, मजिक शो आता, तो दो घंटे का मेरा शो आता है।
0: अच्छा,
1: अच्छा शो रहा है, सबने बहुत हंसी ला दी चेहरे पे, बहुत खुश हो गए कैंसर के पेशेंट, और सबने बहुत दुआ दी, और इस तरह के शो काफी कर चुका हूं सोशल वर्क में, और झोपड़पट्टी में जाके गरीब बच्चों को भी वहां सिखाया, उनको उनको मैजिक शो भी करवाया, और जितने भी एनजीओ है नागपुर में उनके लिए मैं नाम मात्र शुल्क ऊपर मैं शोज करता हूँ, पैसा सर्वोपरि नहीं है, पहले भगवान जी ने अपने को कला दी है उसको उपयोग भी ऐसे होना चाहिए, मैं हर जगह पैसा बेचता नहीं, लोगों को खुशी दिखता, लोग खुश होते तो अपन खुश है। और मैंने कुछ साल पहले भी माउंट अभी ब्रह्म कुमार जो मैं आगे वहाँ शो किया था, रतन मोहन दीदी के सामने शो किया, बहुत मुझे खुश हुई डायमंड हॉल में, और हारमोनी हॉल में भी शो हुआ मेरे, तो वहां पे मुझे रतन मोहन दादी ने बहुत प्यार दे लाड़ता दिया, और आधा घंटे का शो मेरा बहुत अच्छा, सबने बहुत तारीफ किया
0: जी, जी।
1: और मुझे दोबारा आने की वहाँ इच्छा है, अगर बाबा ने मुझे बुला बुला बुला करेंगे तो मैं तुरंत वहाँ पे आ जाऊंगा शोज करने के लिए।
0: हाँ।
1: तो मैं चाहता हूँ मुझे वहाँ दोबारा बुलाए,
0: बिल्कुल,
1: तो मैं आने के रेडी हूँ वहाँ पे, और मुझे भी अच्छा लगता है कि सोशल काम में मेरी कला काम आ रही है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और उनकी दुआएं मेरे साथ में
0: मिलती है।
1: हाँ, पैसा तो हर कोई कमाता, दुआ कमा चाहिए अपने भगवान जी को, ये बोलते कि दुआ कमाए दुआए काम आ गई कमर गया, दवाई काम नहीं होगा दुआ काम होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अपना अच्छा कला भगवान जी दे तो उसका मैं उपयोग ऐसे कर रहा हूँ सोशल वर्क में, किसी भी संस्था के पास में बजट रहता नहीं पैसे का, आपका नाम बहुत हमने सुना है, मधु करने की इच्छा है, मैंने बोला आपको जो बन पड़ता हो दो मेरा दो दिन ठीक है आप मेरे शोर को।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वृद्धाश्रम हो गया, वृद्धाश्रम अन्नाथालय अन्नाथ हो गया, काफी जगह जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में शो कर चुका मैं, और जादू के हाँ जादू के जरिए मैं अंधश्रद्धा जो होती
0: है का भी काम किया है,
1: वो भी काम शुरू करे,
0: बहुत
1: मॉल में लोगों के डाउट्स भी क्लियर किए इसे मैजिक के जरिए से।
0: सही बात
1: जी।
0: चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आपने जो है मैजिक के बारे में बताया, करियर इन मैजिक के बारे में बताया, और मैजिशियन क्या कर सकते हैं वो आपने बताया, इससे समाज में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, समाज में क्या सेवा कर सकते हैं मैजिक के माध्यम से, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और कर भी रहे आप। तो चलिए जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे हमारे विद्यार्थी मित्रों को?
1: मैसेज मेरा ये है सभी मेरे युवा को मेरे दोस्तों को ये है कि आप कोई भी कला को आप कम मत आंकिए, हर कला में श्रेष्ठता अपन ला सकते हैं, चाहे अभिनय कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिस से वो आप बड़ा बन सकते हो, लता मंगेशकर हो या अमिताभ बच्चन या तुलना चंद्रकर सर हो,
0: बिल्कुल,
1: तो प्रैक्टिस से वो लोग जितना आगे बढ़े उन्हें एजुकेशन से आगे नहीं बढ़े लेकिन प्रैक्टिस से आगे बढ़े, हालांकि देखा है उनका एजुकेशन बहुत कम है, उनका डिग्री नहीं कुछ नहीं, लेकिन आज वो कहा के क्या पहुंच गए। तो वैसे मैजिक कला भी जैसे केलाल जी सरकार जी हो चुके हैं, उनका भी रुतबा रहा है मैजिक में भी, वैसे ही कि आप लोग भी इस मैजिक फील्ड में आइए, सीखिए, खुद को डेवलप करिए, और खूब सारा लोगों का प्यार भी कमाइए और पैसे भी कमाइए, मेरा सबसे यही अनुरोध है, जहाँ भी कुछ तकलीफ हो मैं तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए सिखाने के लिए तैयार हूँ,

0: कॉलेज में आपके साथ हूँ और रहूंगा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपने संदेश के लिए। और आपने कहा कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र है सीखना चाहते हैं, उनको सिखाते भी है, वर्कशॉप भी आप कंडक्ट करते हैं।
0: हाँ जी।
1: और साथ साथ में सोशल वर्क भी आप करते हैं एनजीओ के साथ मिलकर। बहुत बहुत दुआएं आपको एंड थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने मैजिक के बारे में दिया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर प्रशांत भावसार जी हमारे साथ नागपुर से जुड़े और आप सभी को मैजिक के बारे में बताया, और आशा करूंगा कि आप सुनकर कहीं ना कहीं आपके मानस पटल पर विचार तो चल रहा होगा कि मुझे भी सीखना है। बिल्कुल सीखिए आप, देखिए अगर कुछ आपको लग रहा है कि आपको प्रशांत जी से जुड़ना है तो आप 9414154415 इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम लोग आपको हेल्प आउट करेंगे प्रशांत जी से जुड़ने के लिए। और आप अपना करियर अच्छे से करें, मैं चाहूंगा कि इसमें करियर में किसी की मत सुनिए, आप अपनी दिल की सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है उसी में आप काम करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज हमने इस पर बात किया तो इसी में आप करियर बने, नहीं नहीं, हमारा मकसद ये है कि आपको अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताना और उसका लिमिटेशन क्या है और अनलिमिटेशन क्या है और उससे फायदा क्या है वो सारी चीजें बताना। अब आपकी रुचि देखिए, आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बने, अगर आप मैजिशियन बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मैजिशियन ही बने। किसी के कहने पर या पीयर प्रेशर में आकर, माता पिता के प्रेशर में करियर के बारे में कभी भी डिसीजन गलत ना हो आपका, क्योंकि करियर का डिसीजन अगर गलत हो जाता है तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ता है, फिर से वापस आपको समय मिलता नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि शो के माध्यम से सारी बातें आपको बता दे और आप अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़े, अपना करियर बनाएं, अपना और देश का नाम ऊंचा करें। ऐसी शुभ आशा के साथ फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए सलाम नमस्ते, हमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति,
0: ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी,
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो। रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं नीतू जैन। आज मैं आपको संतुलित आहार, जीवन का आधार, इस विषय को लेकर अपना चिंतन आपके साथ शेयर कर रही हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आप सभी ने यह तो सुना ही होगा, इस निरोगी काया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संतुलित आहार। मानव जीवन जीवन की शैली के तरीकों में बदलाव और व्यस्त दिनचर्या में पौष्टिक भोजन का अभाव, यह दोनों मनुष्य शरीर पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। भारत में विदेशी भोजन का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। भारतीय भोजन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल न होने की वजह से विदेशी भोजन भारत के लोगों के भोजन शैली को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में हिंदुस्तान की हर गली कूचे में लगने वाले चाउमीन, मोमो, फास्ट फूड के स्टॉल हमारे पारंपरिक भारतीय भोजन को चुनौती दे रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है स्वस्थ और संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर की आवश्यकताओं के सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर लिया जाता है, जिससे हमको एक स्वस्थ जीवन शैली जीने में मदद मिलती है। एक स्वस्थ आहार में क्या शामिल होता है? एक ऐसा आहार जो हमारे शरीर को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, ऐसा भोजन संतुलित स्वस्थ आहार कहलाता है। दूसरा प्रश्न, किस तरह का भोजन हमारे शरीर के लिए अधिक पोषण युक्त होता है? ऐसा भोजन जो बहुत सारी उपजाऊ सब्जियों और फलों के उपयोग से बनाया हो, ऐसा भोजन जिसमें शक्कर युक्त खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में अक्सर महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसका यदि बहुत अधिक सेवन किया जाता है तो इससे वजन बढ़ सकता है। वयस्कों के लिए प्रतिदिन 6 ग्राम नमक पर्याप्त है। अगर हम ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। उचित संतुलित और स्वस्थ भोजन अन्य बीमारियों के साथ हृदय रोग, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करता है और यह अधिक ऊर्जा देता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सुधार भी कर सकता है। आज के विषय से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप इसकी प्रॉपर मात्रा में जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने डाइटिशियन की भी सलाह ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कितनी मात्रा में कैसे अधिक पौष्टिक आहार लिया जाए। स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ प्रयोग में ले, क्योंकि स्वास्थ्य स्वस्थ है तो सब कुछ सही है। तो श्रोताओं, आज के इस विषय में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए चिंतन के साथ। धन्यवाद।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक

0: Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani, welcome.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti and welcome to Being Divine.
1: Thank you.
0: आपने बड़ा difficult homework दे दिया मुझे.
1: Difficult?
0: आपने बोला me as a कपड़ा.
1: The shirt that I'm wearing is I.
0: I, हाँ, तो मैं अपने आप को सोचूं कि मैं ये हूँ.
1: हाँ.
0: तो मैंने सोचा जब मैं ये हूँ तो फिर मैं ये नहीं हूँ.
1: हाँ,
0: बॉडी नहीं
1: वो नहीं हूँ, ठीक है, बट ये मैं हूँ. और अब मैं सारा दिन काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा?
0: तो ध्यान उधर ही रहेगा, मेरे भी कपड़ों पे, दूसरों के भी कपड़ों पे.
1: एक फर्स्ट चीज ये होगी कि ध्यान किस पर रहेगा, सिर्फ
0: कपड़ों
1: मेरे भी कपड़ों पे, दूसरों के भी कपड़ों पे. ठीक है, एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन अगर हम करने लगेंगे कि कौन बेटर, यू नो हाउ वी टेंड टू डू, कौन बेटर, कौन हायर, कौन मोर ब्यूटीफुल, तो किस बेसिस पे करने लगेंगे?
0: मेरी शर्ट ज्यादा सफेद है.
1: वेरी ट्रू, क्योंकि हमने सोचा मैं शर्ट हूं. अब अगर चलते चलते, खाना खाते हुए, कुछ करते हुए इस कपड़े पे कुछ गिर गया,
0: मैं मैला हो गया.
1: फिर अगर किसी दरवाजे से, कीले से लटके ये फट गया, तो कौन फट गया?
0: मुझे चोट लग गई,
1: मैं फट गया. इज इट ट्रू?
0: इज इट ट्रू? मेरे कपड़े को लगी,
1: मेरे कपड़े को लगी और मैं फट गया, दोनों में फर्क? दोनों में फर्क. ये लगती कितनी छोटी बात है, लेकिन अगर इस तरह से हम जीवन जीने लगे तो सारा दिन हमारा ध्यान सिर्फ किस पर होगा? ये ड्रेस उस ड्रेस से बेटर होनी चाहिए. अगर ये ड्रेस पर दाग लग गया तो ये ड्रेस परफेक्ट कैसे हो जाए, और अगर ये ड्रेस फट गई तो हाय मैं फट गया, मेरा क्या होगा, ये जीवन कैसी जीवन होगी. अब इस ड्रेस के नीचे हमने एक और ड्रेस पहनी हुई है, वो है ये ड्रेस. जितना हमें ये डिफिकल्ट लग रहा था एक घंटे के लिए करना कि इस ड्रेस को मैं समझूं, उतना ही इजी और नेचुरल हमने इसको बना दिया है. इस ड्रेस को हमने मैं समझना शुरू कर दिया है. वो भी किसी दिन शुरू हुआ होगा.
0: हम शीशे में नहीं देख के कपड़े पहन के नहीं पूछते अपनी वाइफ से, फ्रेंड से, मैं कैसे लग रहा हूँ.
1: हाउ एम आई लुकिंग टूडे इज बेस्ड ऑन हाउ दिस बॉडी इज लुकिंग, क्योंकि आई थॉट बॉडी इज आई.
0: क्या
1: अब अगर आपने मैं ड्रेस को समझ लिया होता, तो ड्रेस अगर ब्यूटीफुल होती तो मैं ब्यूटीफुल. शरीर को मैं समझ लिया तो शरीर अगर ब्यूटीफुल तो मैं ब्यूटीफुल. जब आपने कहा मैं ड्रेस हूं अगर, तो अपने को भी ड्रेस देखा तो दूसरे को भी ड्रेस देखा. तो मैं शरीर समझ लिया अगर, तो अपने को भी शरीर देखा, दूसरे को भी क्या देखा?
0: शरीर देखा.
1: कंपेयर किया तो किस बेसिस पर किया? शरीर के बेसिस पर ही किया. इस शरीर को कहीं थोड़ा सा कुछ हुआ, हमने कहा मुझे हो गया, मेरा नाक परफेक्ट नहीं, मेरा दांत परफेक्ट नहीं, मैं समझने लग गया, क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी परफेक्ट, सो आई स्टार्टेड मेकिंग माई बॉडी परफेक्ट.
0: तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरा नाक, आई से मैं परफेक्ट नहीं हूँ.
1: मैं परफेक्ट नहीं.

0: which will decide?
1: No, it's my choice.
0: Is it the hand which will decide?
1: No.
0: Then who will decide?
1: I will decide.
0: I. We're very clear ke chaku instrument hai. Haath kya hai?
1: Haath bhi is mera instrument hi samajh sakta hun.
0: Mera instrument bhi samajh sakta hun. Nahi, hai instrument.
1: Ha?
0: Hai instrument.
1: Ha.
0: Jaise wo chaku instrument tha, uske paas decision making power nahi thi ke kya karna hai. See, haath ke paas bhi decision making power nahi hai kya karna hai. Ye bhi instrument hai. Is haath ke dwara mujhe kya karna hai? I. So similarly, ye pura shareer bhi mera kya hai phir?
1: Phir wo galti se haath ut gaya, galti se muh khul gaya, galti se tongue, zaban phisal gayi. Ye sab baatein kya wrong hai sab?
0: I. Galti se yahan hui, haath ke dwara kiya.
1: To meri galti hai.
0: Meri. Haath ki thodi hai. तो ये पूरा शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना अगर ये हाथ इंस्ट्रूमेंट है आपने कहा भी लुक थ्रू आ रहा
1: है अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज
0: दिस इज द अटैचमेंट टू द फर्स्ट रॉन्ग इमेज
1: बॉडी
0: बॉडी
1: एंड व्हाट इज द
0: क्योंकि ये फर्स्ट चीज थी जो हमने अक्वायर की
1: एंड व्हाट इज द सेकंड रॉन्ग
0: सेकंड विल बी रिलेशनशिप क्योंकि वो सेकंड चीज थी जो हमने अक्वायर की थर्ड थी हमारी पोजिशंस डेजिग्नेशंस नॉलेज क्योंकि वो थर्ड चीज
1: सेकंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड सेकंड तो आप माँ के पेट से निकले पैदा हुए माँ
0: तो रिश्ता अक्वायर किया ना आप अपने जीवन की यात्रा में कितने सारे रिश्ते अक्वायर करते हैं
1: इट इज बाय बर्थ ना
0: सबसे पहली चीज आपको क्या मिली ये शरीर मिला
1: फिर माँ फिर बाप
0: फिर पेरेंट्स मिले फिर भाई बहन मिले
1: दोस्त टीचर्स
0: फिर फ्रेंड्स फिर टीचर्स फिर स्पाउस फिर चिल्ड्रन ये सब रिश्ते अक्वायर किए ना इस पूरे जीवन की यात्रा
1: में अक्वायर भी किए फिर छूट भी जाने
0: दिस रियलाइजेशन अक्वायर भी किया छूट भी जाना है
1: वो जॉब जो है जो जनरल था आर्मी का वो भी छूटेगा प्राइम मिनिस्टर का भी छूटेगा एक्टर का भी टाइम खत्म हो जाएगा मतलब बॉडी का इस बॉडी का भी
0: दिस इज इट इसका मतलब सब कुछ जो अक्वायर किया
1: जो सब कुछ जो है वो मतलब टेम्पररी है
0: सब कुछ जो अक्वायर किया वो टेम्पररी है
1: हाँ अक्वायर किया
0: सब कुछ
1: बॉडी को हम अक्वायर किया कह सकते हैं
0: बॉडी को ही सबसे पहले अक्वायर किया सब कुछ जो मेरा है
1: जो मिली समझो जो मिली,
0: मिली
1: और मेरा है
0: मिली है जो मिली है
1: एक
0: जो
1: ब्यूटीफुल लाइन थी सिस्टर आज मेरे समझ में आ रही है मेरे गुरु के गुरु कहते थे मेरे तब समझ में नहीं आई थी उन्होंने इंग्लिश में लिखा था Everything is for me. Nothing is mine. सब कुछ मेरे लिए है मेरा नहीं
0: मेरे लिए है मतलब
1: उसको ऐसे समझो कि आज ये कुर्सी जो भी है आज इस गद्दी पे प्राइम मिनिस्टर बन के मैं बैठा हूँ आज ये मेरे लिए इवन दिस चेयर
0: इवन
1: दिस शर्ट टूडे
0: मेरे लिए बट इवन दिस
1: हाँ
0: ये मेरे लिए
1: इसके बाद यहाँ आ रहा हूँ मैं कुर्सी फिर शर्ट फिर ये बॉडी मेरे लिए है
0: मेरे लिए
1: मेरे
0: अब
1: नहीं
0: मेरे लिए अब ये लाइन
1: यहाँ अटैचमेंट हटाने के लिए
0: ये मेरी नहीं ये मेरे लिए है तो फॉर मी करके जब हम उसको यूज
1: तो करें
0: डिटैच हो गया और डिटैच होके बहुत अच्छे से यूज करेंगे डिटैच होंगे तो इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे
1: देखिए आपकी बातों से
0: माइंड कहकर
1: शास्त्र क्लियर हो रहे हैं जब हाँ। मेरे समझ में नहीं आया था जब अष्टावक्र ने ज्ञान दिया था अपने राजा जनक को उनको इतना ज्ञान मिला तो बोले मैं तो जा रहा हूँ जंगल अब क्या मैं राजा की गद्दी पे बैठा नहीं बोले अब मैं अब ज्ञान रख के मेरे लिए समझ के अब तुम गद्दी पे बैठो
0: मीन्स ट्रस्टी होकर ट्रस्टी होकर उस सब चीज को यूज करना है स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है डिटैचमेंट डिटैचमेंट से हम एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि डिटैचमेंट मतलब जैसे कि हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा हम एक
1: बहुत
0: वैराग डिटैचमेंट मीन्स हम उन चीजों से डिटैच होंगे जब ट्रस्टी होकर उनको यूज करेंगे तब हम उन चीजों को वो चीज मतलब शरीर हो सकती है वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है हम उसको बहुत एक्यूरेटली और बहुत प्यार से निभाएंगे लेकिन मेरा है तो कैसे भी यूज करते हैं उसको
1: तो यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे ये तो मुक्ति भी होगी
0: हाँ देखो
1: एक जैसे

0: अब डिटैच हो गए तो मुक्त हो गए,
1: डिटैच हो गए तो अटैचमेंट से सबसे पहले मुक्त हो गए।
0: बस
1: हम क्या कहते हैं परमात्मा को, ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, गाते हैं ना सुबह खड़े होकर, ये तन मन धन सब कुछ तेरा है। अब ये सुबह हमने कह दिया कि ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, क्या सारा दिन में हम उस लाइन को जीते हैं?
0: नहीं,
1: सिर्फ एक घंटे के लिए कॉन्शियसनेस शिफ्ट कि ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, अब इसको यूज करें पूरा दिन।
0: तो जैसे बैंक का मैनेजर है,
1: वो होता है,
0: धन उसका है कि भाई ये तेरे पासबुक ले जा, तू ये लेके जा, तू ये कर ले, बट ही इज जस्ट सिटिंग देयर, सबका सब कुछ दे रहा है।
1: ये क्यों हमें सिखाया गया कि रोज सुबह बोलो ये तन मन धन सब कुछ तेरा है?
0: क्यों?
1: तूने दिया तुझको अर्पण, ये सब कुछ तेरा है। क्यों सिखाया गया? ताकि हम इन तीनों चीजों को, फिर ये तीनों भी तो शक्तियां हैं ना, तन मन धन की जो शक्ति है, हम इन तीनों चीजों को सारा दिन में फिर कितने ब्यूटीफुली और एक्यूरेटली यूज करेंगे।
0: अमानत,
1: और किसकी अमानत?
0: घर में किसी का बच्चा भी कुछ दिन रहने के लिए आता है, बेटी, तो बोलते हैं संभाल के रखना ध्यान से, यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमारे घर में, अच्छी तरह जैसे आई वैसे वापस भी।
1: बच्चा क्यों? अगर कोई अपना कोई पेट डॉग भी आपके घर छोड़ के चला जाए कि मैं एक दिन बाहर जा रहा हूँ, ये आप संभालना, ट्रस्टी होकर संभालेंगे। किसी की कार चलानी होगी, किसी और की कार है, ट्रस्टी होकर संभालेंगे। एक दिन ये थॉट क्रिएट करें, ये शरीर उसका है, उसने दिया है, मुझे इसको अब सारा दिन यूज करना है। तो इस शरीर को कैसे यूज करेंगे?
0: दूसरे की अमानत,
1: इसमें क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे,
0: जो मंदिर में खिलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, वो यहाँ भी लगाएंगे।
1: हम बाकी सब चीजों का इतना ध्यान रखते हैं, फिर इसका क्यों नहीं रखेंगे?
0: शर्ट का रखते हैं,
1: शर्ट का रखते हैं,
0: ये बहुत महंगी है, महंगा कपड़ा है, देखो स्त्री कितनी डिग्री पे है, पहले दूसरे कपड़े पे स्त्री करके देखते हैं कि जल तो नहीं रहा, ठीक है।
1: और इस शरीर में क्या कुछ डाल देते हैं, अंदर जाके वो क्या क्या कर रहा है
0: शरीर में, थॉट्स में, ब्रेन में, माइंड में,
1: तन मन धन
0: सब में,
1: सब में। अब ये सब कुछ जो हमें मिला है यूज करने के लिए, जो मेरा है, अगर हमारा इससे अटैचमेंट हो जाता है, पहले तो रॉन्ग इमेज एंड देन अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज, तो क्या रिजल्ट होगे? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये मुझे मिला है यूज करने के लिए, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ा ऐसे, जब मैंने इसको ऐसे पकड़ा, मुझे मालूम है ना ये एक दिन गिरेगा, फॉर हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड इट लाइक दिस?
0: जब तक उसकी लाइफ है, जब तक उसकी बैटरी है, जब तक वो,
1: ये एक दिन गिरेगा, राइट? ये कुछ घंटे बाद गिर सकता है, ये कुछ दिन बाद गिर सकता है, आई डोंट नो, लेकिन ये नॉलेज है कि ये एक दिन
0: गिरेगा जरूर,
1: ये सर्टन है,
0: सर्टन है, 100%
1: नॉलेज है। जैसे आपने कहा गिरना सर्टन है, लेकिन फिर भी पकड़ा ऐसे कि गिरना नहीं चाहिए, फाइनली एक दिन ये गिरा, लेट्स से ये 10वें दिन गिरा, 10 days आई वॉज एबल टू होल्ड इट वेरी टाइट, तो 10th day दिस फॉल्स, 10वें दिन ये गिरा, 10th day आई विल फील बैड कि मेरी ये चीज चली गई, गुम गई, टूट गई, व्हाटएवर, 10th day। क्वेश्चन इज 10 दिन कैसे बीते?
0: टेंशन में।
1: क्यों टेंशन में?
0: क्योंकि पकड़ के रखो, ध्यान रखो, संभाल के रखो, और फिक्र है कि टूटे ना, गिरे ना, खत्म ना हो जाए।
1: तो मतलब 10 दिन भी उसको इंजॉय करने की बजाय
0: हाथ से छूटे ना,
1: फियर, ये फियर है, हाथ से छूटे ना, स्ट्रेस है। अब अगर कोई आया और किसने इसकी तरफ देखा भी, तो मैंने उसको भी डांट देना है, कहीं मेरी चीज ही ना ले जाइए मेरे हाथ से। ये हमारा जीवन है, इस जीवन में हर चीज मिली थी यूज करने के लिए। आपने कहा एवरीथिंग इज फॉर मी, शरीर मिला यूज करने के लिए, रिश्ते मिले इंजॉय करने के लिए, रिलेशनशिप्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए, लेकिन सब कुछ जो मिला,
0: सिर्फ एक चीज आप भूल गए, पैसे मिले
1: यूज करने के लिए
0: रखे हैं उसको,
1: इसको कुछ ना हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ ना हो जाए तो
0: रोज पूजा भी करते लोग, मेरे फैक्ट्री में आग ना लग जाए, ना खत्म ना हो जाए, लॉस ना हो जाए,
1: केयर एंड कंसर्न बट नॉट वरी। अगर ऐसे पकड़ा तो आपने कहा 10 दिन भी टेंशन में बीते। सपोज ये शरीर

0: अब इनको मुझे निभाना है, करना है, लेकिन अटेंशन फिर आय पर आ जाएगा। तो जस्ट सिट बैक 2 मिनट्स एंड ट्राई राइट नाउ, अभी देखते हैं अपने आप को कि एक एक चीज, क्योंकि हर एक ने अलग अलग चीजें अक्वायर की है जीवन में, लेकिन एक एक चीज को देखते हुए अपने आप को चेक करते हैं इस जीवन की यात्रा में। एक एक चीज जो अक्वायर की है उसको देखते हैं। सबसे पहले शरीर मिला, जस्ट सिट बैक एंड लुक एट योर बॉडी, फील दिस बॉडी इज माइन, मेरा शरीर, मैं इसको चलाने वाली शक्ति, मैं इसको यूज करने वाली एनर्जी, ये शरीर मैंने पहना हुआ है, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, आई द बींग, आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी। फील द डिफरेंस, इस हाथ को, आंखों को मैं यूज करते हूं। रिश्ते मेरे हैं, परिवार मेरा है, पोजीशन मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं, ये सब कुछ जो मेरा है आज है, कल नहीं, मैं कौन हूं इनको यूज करने वाला। लेट मी फील द आई, लेट मी लुक एट द आई, लेट मी अंडरस्टैंड दैट आई। ओम शांति,
1: ओम शांति, थैंक यू सो मच,
0: ओम शांति।
2: This body is mine, but we are living with the consciousness that this body is I. We like beauty and perfection, which is our true nature. So, we started looking for beauty and perfection in the body. This sometimes caused I, the soul, to feel inferior, imperfect, rejected, and I, the soul, shifted from true beauty and perfection. When the body gets diseased, we believe that I have this disease. I, the soul, do not have the illness, and neither does I, the soul, ever die. The body dies. I, the soul, am eternal and imperishable. Believing that we are this body made us live in the fear of death. The body is our instrument which we use. We see through the eyes, speak through the mouth. Eyes and mouth are the instrument through which I, the soul, choose what to do. We get attached to everything we acquire. Where there is attachment, there will be fear of losing. Even though we know that eventually we will lose all that we have, including our body, we spend our life holding on to it with stress, hoping we never lose our body, family, position, or property.
0: If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा में भारत का एक अलग दृश्य दिखाई देता है। कहीं पहाड़ी इलाके हैं तो कहीं रेतीले मैदान, कहीं बर्फीले क्षेत्र हैं तो कहीं गर्म हवाएं। हर ओर चढ़ा कला संस्कृति का अनोखा रंग रोज भारत को सजाकर एक नया रूप देता है। आइए हम आपको भारत के उस राज्य की तरफ ले चलें, जहाँ के संगीत, बोली, व्यंजन सब में एक मिठास है। स्वागत है आपका गुजरात में।

गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, पाकिस्तान से लगी है। प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुजरात भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर राजस्थान, दक्षिण पूर्वी सीमा पर मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है। गुजरात नाम गुर्जरत्रा से आया है। गुर्जरों का साम्राज्य 6वीं से 12वीं सदी तक गुर्जरत्रा या गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। गुर्जर एक समुदाय है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों का संबंध सूर्यवंश या रघुवंश से बताया है। कुछ विद्वान इन्हें मध्य एशिया से आए आर्य भी बताते हैं। गुर्जरों की भूमि के रूप में गुजरात को जाना जाता है। इस प्रकार गुर्जर राष्ट्र से विकृत होते होते उसका नामांतरण गुजरात के रूप में हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से गुजरात की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ की गाथाएं प्रचलित हैं तथा यहाँ का गौरव बहुत ऊंचा है। कहा जाता है कि ईसवी सन पूर्व 2500 वर्ष पहले पंजाब से हड़प्पा वासियों ने

कच्छ के रण पार कर नर्मदा की उपत्यका में मौजूदा गुजरात की नींव डाली थी। गुजरात ईस्वी सन पूर्व 3 शताब्दी में मौर्य साम्राज्य में शामिल था। जूनागढ़ के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। 5 शताब्दी में हूणों के आक्रमण के बाद उत्तराखंड से गुर्जरों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। गुजरात पर 4-5 शताब्दी के दौरान गुप्त वंश का शासन रहा। 9 शताब्दी में यहाँ सोलंकी वंश का शासन रहा। 10 शताब्दी में मूल राज सोलंकी ने आधुनिक गुजरात की स्थापना की। गुजरातवासी वाणिज्य व्यापार में कुशल होते हैं। विदेशों में बसे असंख्य गुजरातवासियों ने अपने व्यापार कौशल से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी ख्याति अर्जित की है। महात्मा गांधी का जन्म प्रदेश गुजरात द्रुत गति से औद्योगिक विकास कर रहा है। गुजरात का इतिहास ईस्वी सन पूर्व लगभग 2000 साल पुराना है। यह भी मान्यता है कि श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर जा बसे थे, जो द्वारका अर्थात प्रवेश द्वार कहलाया। बाद के वर्षों में मौर्य, गुप्त, प्रतिहार तथा अन्य अनेक राजवंशों ने इस प्रदेश पर शासन किया। चालुक्य, सोलंकी राजाओं का शासन काल गुजरात के लिए प्रगति और समृद्धि का युग था। मोहम्मद गजनवी की लूटपाट के बाद भी चालुक्य राजाओं ने यहाँ के लोगों की समृद्धि और भलाई का पूरा ध्यान रखा। इस गौरवपूर्ण काल के पश्चात गुजरात को मुसलमानों, मराठों और ब्रिटिश शासन के दौरान बुरे दिनों का सामना करना पड़ा। आजादी से पहले आज का गुजरात मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित था, एक ब्रिटिश क्षेत्र और दूसरा देसी रियासतें। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र लोथल था, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल सूत कोतड़ा भी इसी प्रदेश में था। आधुनिक खुदाई से सिंधु सभ्यता से संबंधित एक प्रमुख स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया है, जो इसी प्रदेश में था। गुजरात पर क्रमशः मौर्य, गुप्त, प्रतिहार तथा उनके परवर्ती राजवंशों ने शासन किया, किंतु गुजरात में प्रगति तथा समृद्धि चालुक्य राजाओं के समय में हुई। इसीलिए इस काल को गुजरात के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है।

सेनापति भट्टाकर द्वारा वल्लभी ने 5वीं शताब्दी के अंतिम चरण में एक नए राजवंश की नींव रखी गई, जिसे मैत्रक राजवंश के नाम से जाना जाता है। 475 ईसा में मैत्रकों के सरदार भट्टाकर की नियुक्ति वहां के सेनापति के पद पर हुई थी। भट्टाकर तथा उसके पुत्र दोनों ने अपने साथ सेनापति की पदवी का ही इस्तेमाल किया। मैत्रकों के तीसरे राजा द्रोण सिंह द्वारा सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण की गई। मैत्रकों का प्रथम तिथि युक्त अभिलेख गुप्त संवत 206 यानी कि 526 ईसा को ध्रुव सेन प्रथम का प्राप्त हुआ। मैत्रक शासक ध्रुव सेन द्वितीय की शादी हर्षवर्धन की पुत्री के साथ हुई थी। ध्रुव सेन द्वितीय के समय ही ह्वेन स्वांग गुजरात आया था। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी राज्य के संस्थापक गुर्जर जाति के नेता वनराज को माना जाता है, जिसने 765 ईसा में इस वंश की नींव डाली। हालांकि सोलंकी वंश का प्रथम शासक मूल राज को माना जाता है। भीमदेव प्रथम के काल में मोहम्मद गजनवी तथा भीम द्वितीय के काल मोहम्मद गौरी का आक्रमण अनहिलवाड़ को झेलना पड़ा। सोलंकी राजवंश के बाद दक्षिण गुजरात के बघेलों के शासन की स्थापना हुई, जिसकी नींव लवण प्रसाद बघेल द्वारा डाली गई। 13वीं सदी के अंत में यह प्रदेश अलाउद्दीन खिजली के अधिकार में चला गया। कुछ समय बाद गुजरात के सुल्तान स्वतंत्र हो गए। इन्हीं में से अहमद शाह प्रथम ने 15वीं सदी के पूर्वार्ध में अहमदाबाद की स्थापना की। महमूद बघेरा के समय में गुजरात बहुत समृद्ध हुआ, लेकिन अंत में 16वीं सदी में अकबर ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। वर्ष 1800

अंग्रेजों ने सूरत पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने तक वे ही गुजरात पर राज्य करते रहे। गुजरात का भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इस प्रदेश ने राष्ट्र को महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता दिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली गुजरात का ही एक गांव पोरबंदर है। कुवांशी गुजरात के मोरबी शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। कुवांशी गांव में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पदरी गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। पदरी से हड़प्पाई नगर, हड़प्पा पूर्व व विकसित हड़प्पा काल के दो सांस्कृतिक चरणों को स्पष्ट करता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गुजरात का योगदान अमूल्य है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गुजरात के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया है, जिसमें से प्रमुख है कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी, अश्विनी कुमार दत्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीवराज मेहता, हंसा मेहता, गणेश वासुदेव मावलंकर, विठल दास झवेर भाई पटेल, महादेव देसाई, मनी भाई देसाई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनको ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। साबरमती आश्रम से उनका अटूट रिश्ता था। इस आश्रम से महात्मा गांधी आजीवन जुड़े रहे, इसीलिए उन्हें साबरमती का संत की उपाधि भी मिली है।

और महान व्यक्तित्व जिनका अमिट योगदान भारतवर्ष आज भी याद करता है। वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने के कारण सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। वास्तव में वे आधुनिक भारत के शिल्पी थे। उनके कठोर व्यक्तित्व में बिस्मार्क जैसी संगठन कुशलता, कौटिल्य जैसी राजनीति सत्ता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। जिस अदम्य उत्साह, असीम शक्ति से उन्होंने नवजात गणराज्य के प्रारंभिक कठिनाइयों का समाधान किया, उसके कारण विश्व के राजनीतिक मानचित्र में उन्होंने अमिट स्थान बना लिया। कितनी ही कुर्बानियां और अटल निश्चय के कारण आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।

भारत के स्वतंत्र होने के समय तक गुजरात मुंबई राज्य का अंग था। अलग गुजरात का जन्म 1 मई 1960 को हुआ। चलिए अब थोड़ा जानते हैं गुजरात के भूगोल को। गुजरात को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला सौराष्ट्र प्रायद्वीप, जो मूलतः एक पहाड़ी क्षेत्र है, बीच बीच में मध्यम ऊंचाई के पर्वत हैं। दूसरा कच्छ, जो पूर्वोत्तर में उजाड़ और चट्टानी है। विख्यात कच्छ का रण इसी क्षेत्र में है।

तीसरा गुजरात का मैदान जो कच्छ के रण और अरावली की पहाड़ियों से लेकर दमन गंगा तक फैला है। गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गिरनार पहाड़ियों में स्थित गोरखनाथ की चोटी है जो 1117 मीटर ऊंची है। गुजरात की जलवायु उष्ण प्रदेशीय और मानसूनी है। वर्षा की कमी के कारण इस प्रदेश में रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में पूर्व की ओर उत्तरी गुजरात में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर होती है। इसके दक्षिण की ओर मध्य गुजरात में मिट्टी कुछ अधिक उपजाऊ है तथा जलवायु भी अपेक्षाकृत आर्द्र है। वर्षा 75 सेंटीमीटर तक होती है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, सरस्वती, माही, भादर, बनास और विश्वामित्री इस प्रदेश की सुपरिचित नदियां हैं। सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा नदी पर स्थित यह बांध 800 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़े बांध परियोजनाएं हैं, किंतु इनका हर बार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के

बसाव प्रणाली को देखा जा सकता है, जबकि उत्तर और पूर्व के बाह्य क्षेत्रों में बिखरी हुई छोटी छोटी बस्तियां हैं, जो शुष्क पर्वतीय या वनाच्छादित क्षेत्र हैं। आदिवासी जनसंख्या इन्हीं सीमांत अनुत्पादक क्षेत्रों में केंद्रित है। शिक्षा हर जीवन, हर नगर, हर प्रदेश और देश का मूल आधार है। जानते हैं थोड़ा गुजरात में शिक्षा व्यवस्था के बारे में। गुजरात में 500 या इससे ज्यादा जनसंख्या वाले लगभग सभी गांवों में 7 से 11 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक पाठशालाएं खोली जा चुकी हैं। आदिवासी बच्चों को कला और शिल्प की शिक्षा देने के लिए विशेष विद्यालय चलाए जाते हैं। यहाँ अनेक माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों के साथ साथ 9 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थान हैं। अभियांत्रिकी महाविद्यालयों और तकनीकी विद्यालयों द्वारा तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। शोध संस्थानों में अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, सेठ भोलाभाई जयसिंह भाई इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और द सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च और द सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च, बड़ोदरा में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट तथा भावनगर में सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल है। गुजराती और हिंदी राज्य की अधिकृत भाषाएं हैं। दोनों में गुजराती का ज्यादा व्यापक इस्तेमाल होता है, जो संस्कृत के अलावा प्राचीन भारतीय मूल भाषा प्राकृत और 10वीं शताब्दी के बीच उत्तरी और पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा से व्युत्पन्न एक भारतीय आर्य भाषा है। समुद्र मार्ग से गुजरात के विदेशों से संपर्क ने फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी शब्दों से इसका परिचय करवाया। गुजराती में महात्मा गांधी की विलक्षण रचनाएं अपनी सादगी और ऊर्जस्विता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन रचनाओं ने आधुनिक गुजराती गद्य पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। गुजरात में राजभाषा गुजराती भाषा के अतिरिक्त हिंदी, मराठी और अंग्रेजी का प्रचलन है। गुजराती भाषा नवीन भारतीय आर्य भाषाओं के दक्षिण पश्चिमी समूह से संबंधित है। इतालवी विद्वान टेसी तोरी ने प्राचीन गुजराती को प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी भी कहा, क्योंकि उनके काल में इस भाषा का उपयोग इस क्षेत्र में भी होता था, जिसे अब राजस्थान राज्य कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में मशहूर है। रंग बिरंगे परिधान, नाचते झूमते त्योहार और स्वादिष्ट व्यंजन गुजरात की शान है। गुजरात की अधिकांश लोक संस्कृति, लोकगीत हिंदू धार्मिक पुराण में वर्णित श्री कृष्ण से जुड़ी किंवदंतियों से प्रतिबिंबित होती है। कृष्ण के सम्मान में किया जाने वाला रास नृत्य और रास लीला प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा के रूप में अब भी प्रचलित है। यह नृत्य देवी दुर्गा के नवरात्र पर्व में किया जाता है।

लोक नाट्य भवे भी अभी अस्तित्व में है। गुजरात में शैववाद के साथ साथ वैष्णववाद भी लंबे समय से फलता फूलता रहा है, जिनसे भक्ति मत का उद्भव हुआ। प्रमुख संतों, कवियों और संगीतज्ञों में 15वीं सदी में पदों के रचयिता नरसिंह मेहता, अपने महल को त्यागने वाली 16वीं सदी की राजपूत राजकुमारी, भजनों के रचनाकार मीराबाई, 18वीं सदी के कवि और लेखक प्रेमानंद और भक्ति मत को लोकप्रिय बनाने वाले गीतकार दयाराम शामिल हैं। भारत में अन्य जगहों की तुलना में अहिंसा और शाकाहार की विशिष्टता वाले जैन धर्म ने गुजरात में गहरी जड़ें जमाई। जरथुस्त्र के अनुयायी पारसी 17वीं सदी के बाद किसी समय फारस से भागकर सबसे पहले गुजरात के तट पर ही बसे थे। गुजरात की भूमि ने ही जन्म दिया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को, जो आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी थे। छूट का उन्होंने जोरदार खंडन किया। दूसरे धर्म वालों के लिए हिंदू धर्म के द्वार खोले, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न किए। मिथ्या आडंबर और असमानता के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। अपने मत के प्रचार के लिए स्वामी जी 1863 से 1875 तक देश का भ्रमण करते रहे। 1875 में आपने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और देखते ही देखते देश भर में इसकी शाखाएं खुल गई। गुजरात की संस्कृति में मुख्यतः शीशे का काम तथा गरबा एवं रास नृत्य पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रदेश का सर्व प्रमुख लोक नृत्य गरबा तथा डांडिया है। गरबा नृत्य में स्त्रियां सिर पर छिद्रयुक्त पात्र लेकर नृत्य करती हैं, जिसके भीतर दीप जलता है। डांडिया में अक्सर पुरुष भाग लेते हैं, कभी कभी स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। प्रदेश के रहन सहन और पहनावे पर राजस्थान का काफी प्रभाव देखा जा सकता है। प्रदेश का भवई लोक नाट्य काफी लोकप्रिय है। स्थापत्य के शिल्प की दृष्टि से प्रदेश काफी समृद्ध है। इस दृष्टि से रुद्र महालय, सिद्धपुर, मातृमूर्ति पावागढ़, शिव गौरव गलतेश्वर, द्वारिकानाथ का मंदिर, शत्रुंजय पालिताना के जैन मंदिर, सीधे सैयद मस्जिद की जालियां, पाटन की काष्ठ कला इत्यादि काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी में जो स्थान सरदास का है, गुजराती में वही स्थान नरसिंह मेहता का है।

भारत के पश्चिमी भाग में बसा समृद्धशाली राज्य गुजरात अपने त्योहारों और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भाद्रपद्र यानी कि अगस्त सितंबर मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के दिन तरणेतर गांव में भगवान शिव की स्तुति में तरणेतर मेला लगता है। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी से विवाह के उपलक्ष्य में चैत्र यानी कि मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष की नवमी को पोरबंदर के पास माधवपुर में माधवराय मेला लगता है। उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में हर वर्ष माँ अम्बा को समर्पित अम्बाजी मेला आयोजित किया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक मेला द्वारका और डाकोर में श्री कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी के अवसर पर बड़े हर्षोल्लास से आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में मकर संक्रांति, नवरात्र, डांगी दरबार, श्यामलाजी मेले तथा भावनाथ मेले का भी आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर मनाया जाने वाला पतंग उत्सव अपनी रंग बिरंगी छवि के कारण गुजरात राज्य में अत्यंत लोकप्रिय है और भारत ही नहीं विदेशों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। जनवरी माह के मध्य में 14 जनवरी को उत्तरायण पर्व आता है। भगवान भास्कर उत्तरायण को प्रयाण करते हैं। वसंत ऋतु का आगमन होता है। किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि फसल पककर तैयार हो जाती है। कटाई का समय आ जाता है। नव धाने से बने सुस्वादु मिष्ठान सभी को उत्सव का आनंद देते हैं। गुजरात में इस पर्व को मनाने का निराला रंग है। गुजरात वासी रंग बिरंगी पतंगों से आसमान भर देते हैं। ये रंग विविधता में एकता, आनंद, उत्साह और परस्पर स्नेह सौहार्द के प्रतीक हैं। यह एक ऐसा रंगीन उत्सव है जहां बच्चे बूढ़े, धनी निर्धन, स्वदेशी विदेशी सभी भेदभाव भूलकर अनंत आकाश में एकता के रंग भर देते हैं।

गुजरात में कला का भी अति महत्व है। यहाँ की वास्तुकला शैली अपनी पूर्णता और अलंकारिता के लिए विख्यात है, जो सोमनाथ, द्वारका, मोधेरा, थान, धुमली, गिरनार जैसे मंदिरों और स्मारकों में संरक्षित है। मुस्लिम शासन के दौरान एक अलग ही तरीके की भारतीय इस्लामी शैली विकसित हुई। गुजरात अपनी कला व शिल्प की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। इनमें जामनगर की बांधनी, पाटन का उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र पटोला, इधर के खिलौने, पालनपुर का इत्र, कोमोदर का हस्तशिल्प।

का काम और अहमदाबाद व सूरत के लघु मंदिरों का काष्ठ शिल्प तथा पौराणिक मूर्तियाँ शामिल हैं। राज्य के सर्वाधिक स्थायी और प्रभावशाली सांस्कृतिक संस्थानों में महाजन के रूप में प्रसिद्ध व्यापार और कला शिल्प संघ है। अक्सर जाति विशेष में अंतर्गठित और स्वायत्त इन संघों ने अतीत कई विवादों को सुलझाया है और लोकहित के माध्यम की भूमिका निभाते हुए कला व संस्कृति को प्रोत्साहन दिया है। गुजरात राज्य में की जाने वाली वास्तुशिल्पीय नक्काशी कम से कम 15वीं शताब्दी से गुजरात भारत में लकड़ी की नक्काशी का मुख्य केंद्र रहा है। निर्माण सामग्री के रूप में जिस समय पत्थर का इस्तेमाल अधिक सुविधाजनक और विश्वसनीय था, इस समय भी गुजरात के लोगों ने मंदिरों के मंडप तथा आवासीय भवनों के अग्रभागों, द्वारों, स्तंभों, जरोखों, दीवार गिरों और जालीदार खिड़कियों के निर्माण में बेझिझक लकड़ी का प्रयोग जारी रखा। मुगल काल 1556-1707 के दौरान गुजरात की लकड़ी नक्काशी में देशी एवं मुगल शैलियों का सुंदर आयोजन दिखाई देता है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 17वीं सदी के जैन काष्ठ मंडपों पर जैन पौराणिक कथाएं एवं समकालीन जीवन के दृश्य तथा काल्पनिक बेल बूटे, पशु पक्षी एवं ज्यामितीय आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। आकृति मूर्तिकला अत्यंत जीवंत एवं लयात्मक है। लकड़ी पर गाढ़े लाल रोगन का प्रयोग आम था। 19वीं सदी के कई भव्य काष्ठ पुरोभाग संरक्षित हैं, लेकिन उनका अलंकरण पहले की निर्मितियों जैसा ललित और गत्यात्मक नहीं है। इतना कुछ है गुजरात की हवाओं में जानने को और साथ साथ है कई आकर्षक पर्यटन स्थल। यहाँ द्वारका, सोमनाथ, पालीताना के निकट शत्रुंजय पहाड़ी, पावागढ़, अंबाजी, भद्रेश्वर, शामलाजी, तरंगा और गिरनार जैसे धार्मिक स्थलों के अलावा महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर तथा पुरातत्व और वास्तुकला की दृष्टि से उल्लेखनीय पाटन, सिद्धपुर, घुरनली, दभोई, बाड़नगर, मोढ़ेरा, लोथल और अहमदाबाद जैसे स्थान भी हैं। अहमदपुर मांडती, चारवाड़ उभरात और तीथल के सुंदर समुद्री तट, सतपुड़ा पर्वतीय स्थल, गिर वनों के शेरों का अभयारण्य और कच्छ में जंगली गधों का अभयारण्य भी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। घूमते फिरते गुजरात की सीमाओं से लौटने का समय हो चला है। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं गुजरात में जन्मी हिंदी फिल्मों के एक महान निर्माता निर्देशक महबूब खान की फिल्म सन ऑफ इंडिया के एक गीत के साथ, जो देश प्रेम का एक अनोखा वर्णन है। क्योंकि ये गाना एक बाल कलाकार पर प्रदर्शित है, तो खास हमारे नन्हे श्रोताओं के लिए पेश है

ना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। देने बाय देने बाय।

धरती पे पापे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम।

का नजर भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, टंगे पाए थम।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति एमपीसी की चर्चा का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम ज्ञान की कुछ बातें ज्ञान के बीजों से छुड़ा कर लाई हूँ। आज हम चर्चा करते हैं नारी के भिन्न भिन्न स्वरूप। तो आज का हमारा विषय है नारी के भिन्न भिन्न रूप। जैसे कि हम सभी जानते हैं आदिकालीन में नारी जो थी उनको देवी स्वरूप में दिखाया गया है। वह पवित्रता सुख शांति समृद्धि से भरपूर है, लेकिन उससे संपन्न होते हुए भी अनासक्त और इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में है। हर प्रकार से बाहरी तथा आंतरिक सुंदरता से सुसज्जित संतुष्ट सुरक्षित और निश्चिंत है। उस समय की सुंदरता का आधार जो है आत्मिक स्थिति और आत्मिक सशक्तिकरण है। वहाँ हर आत्मा संपूर्ण पवित्र देवभाव से मुक्त तथा अपने मूल स्वरूप की स्मृति में

सकती है और वे भी योग बल से प्राप्त होने के कारण कंचन समान पवित्र होती है। इस काल में नारी और नर को यह समान भाव से दिखा गया है। इसी काल चक्र का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। नारी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप श्री लक्ष्मी, श्री राधा, श्री सीता आदि देवियों के रूप में आज भी दुनिया में याद किया जाता है। आदिकालीन नारी के स्वरूपों की पूजा होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मध्यकालीन की जो नारी थी, हाँ इनका क्या स्वरूप है। इस समय नारी जो है अपने जीवन के मूल सत्य को भूलने लगती है और देवभान का जो है संस्कार इमर्ज हो जाता है, यानी कि मूल जो उनकी बातें हैं, यानी कि आत्मा को वो भूलने लगती है और देह के जो संस्कार है वो इमर्ज होने लगते हैं। फलस्वरूप उसकी आंतरिक जो शक्तियाँ छिन्न होने लगती है। एक तरफ जहाँ आदि काल में नारी को पूज्य माना जाता था, मध्य काल में उसे भोग की वस्तु समझा जाने लगा। नारी के प्रति लोगों की सोच, दृष्टि, प्रीति बदलने लगी। अनेक रूढ़िवादी प्रथाएं बनी जिन्होंने नारी को बहुत ही कमजोर बना दिया। उसका जो है स्वाभिमान नीचे गिरने लगा। उसे सत्य बोलने भी डर लगने लगा। हर समय अपनी सुरक्षा की चिंता रहने लगी और वह स्वयं को पुरुषों से कम समझने लगी और स्वयं को वो पुरुषों पर निर्भर समझने लगी। परंतु यह भी सत्य है कि नारी कोई शरीर का नाम नहीं है, नारी मानव शक्ति। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है नारी के भिन्न भिन्न स्वरूप। समाज को इतनी विकट परिस्थितियों में भी नारी ने उसकी आंतरिक शक्तियों को लोप नहीं होने दिया है। समय समय पर नारियां जो है नारियों के द्वारा अनेक चमत्कारी चरित्र दिखाए गए हैं। आत्मविश्वास की धनी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की कूटनीति के खिलाफ जमकर लोहा लिया, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टिके। हंसते हंसते वीरगति की प्राप्त किया। ऐसे ही वीरता की धनी रानी दुर्गावती ने दो बार शत्रु की विशाल सेना को धूल चटा दी। रानी कर्णावती को उसकी वीरता के कारण चित्तौड़ की क्वीन कहा जाता है। ऐसी अनेक वीरांगनाओं से इतिहास भरा हुआ है जिन्होंने नारी के अंदर के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष किया है। राजमाता जीजाबाई ने अनेक विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी छत्रपति शिवाजी जैसे वीर पुत्र को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया। मदर टेरेसा का हृदय दया और करुणा से भरा था। आपने अपना सारा जीवन गरीबों को खाना खिलाते तथा बेघर लोगों की मदद में लगा दिया। कोढ़ और प्लेग से पीड़ित लोगों की निस्वार्थ सेवा की। समाज कल्याण की भावना से भरपूर सावित्री बाई फुले ने आजीवन महिला शिक्षा का प्रचार किया। इन सभी ने अपने अंदर छिपे देश प्रेम, समाज सुधार, करुणा, दया जैसे भावों को प्रत्यक्ष किया और समाज के सामने उदाहरण मुक्त बनी। रानी पद्मावती चित्तौड़ की महारानी थी जिसकी सुंदरता पर मोहित होकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को मारकर पद्मावती को जबरदस्ती अपना बनाना चाहा, लेकिन रानी पद्मावती अनेक नारियों के साथ जलते हवन कुंड में स्वाहा हो गई, अर्थात जौहर किया। अपने सतीत्व की रक्षा की पर पुरुष की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। धर्म की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों का त्याग कर दे, इससे बड़ा त्याग क्या होगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है नारी के भिन्न भिन्न रूप। तो आज हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की बहुत बड़ी अनुगामी मीराबाई को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपनी अगाध भक्ति से भगवान को भी वश में कर लिया, अपने स्नेह और भावना के बंधन में बांध लिया, बिना कुछ सोचे पल में झूठी दुनिया और झूठे देह के नातों से बुद्धि निकाल परमात्मा में मन लगाया और भगवान की मदद के अनेक अनुभव किए। नारी के अंदर छिपे ईश्वर प्रेम, दृढ़ विश्वास और त्याग भावना जैसे गुणों को अपने जीवन से उन्होंने प्रत्यक्ष किया। नारी का आज की आधुनिक रूप है, जिसे वर्तमान समय नारी का जो बाह्य रूप है उससे सशक्त बनी है, काफी हद तक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी समझा है। उसने अनेक क्षेत्रों में जो उपलब्धियां प्राप्त की है वाकई तारीफ के काबिल है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, सानिया नेहवाल ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला, श्रीमती प्रतिभा दाई पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति और वर्तमान समय भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो जीवन के अनेक संघर्षों के बाद 2022 में इस मुकाम पर पहुंची। देश विदेश की ऐसी अनेक नारियां हमारे सामने है।

उन्हें नारी की शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष किया है। नारी अगर ठान ले तो वह क्या नहीं कर सकती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ठीक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है नारी के भिन्न भिन्न रूप। आज हम देखते हैं कि यह भी सत्य है कि समाज में एक बहुत बड़े नारी वर्ग को अपने मूल सत्य का ज्ञान नहीं है, अपनी आंतरिक शक्तियों के स्रोत परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है। यह वर्ग अपने को दैहिक सत्ता समझ देह अभिमान के प्रति इनकी मूर्ति में लगा है, अपना अनमोल समय शक्ति संकल्प को झूठ की प्राप्ति में व्यर्थ गवा रहा है। अपने सत्य आत्मिक स्वरूप से बेखबर नारी अपने को बाह्य रूप से आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। अतः जरूरत है कि आज नारी के स्वाभिमान को जगाया जाए, उसके मूल रूप आदर्श रूप और उच्च स्वरूप का उसे बोध कराया जाए, ताकि वह परमात्मा के जो भी उनके संबंध है परमात्मा से बुद्धि जोड़कर अपने महान लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अपने आदिकालीन पूज्य जो उनके स्वरूप है उसको प्राप्त कर सके। निसंदेह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य कर रहा है। यहाँ की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नारी के अंदर की स्वाभिमान को जगाना, उनमें श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करना और उसे आंतरिक रूप से सशक्त करना है। यहाँ दी जाने वाली शिक्षा के द्वारा अलग अलग स्वमानों का अभ्यास कराया जाता है, जिससे सोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत होता है। राजयोग के अभ्यास द्वारा जो नारी के मूल सत्य है उसे परिचित कराया जाता है। नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारियों ने कायम की है। लाखों भाई बहने समानता के भाव को लेकर खुद को सशक्त बनाने के लिए यहाँ निरंतर राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: خوابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खाबों के सफर में आज के इस सफर को बहुत ही यादगार बनाएंगे और पुराने 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज आपको सुनाने वाले हैं आज के इस एपिसोड में भी. और अक्षर है पी. जी हाँ, पिछले एपिसोड में भी हमने पी अक्षर वाले कुछ गाने सुने थे, आज भी हम लोग सुनने वाले हैं. तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए मुस्कुरा के जिए. जितने भी समय आपके पास हैं, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है बहुत सारे सपने संजोए रखता है और फिर उसे पूरा करने के बाद सोचता है कि मैं निश्चिंत होकर बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन जीऊंगा, लेकिन वो समय आने के पहले ही जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं, बहुत सारी सिचुएशन बदल जाते हैं और फिर व्यक्ति उन चीजों को नहीं पाता जिसके लिए वो सपने संजोए रखा है. इवन मैं अपने करीबी हमारे चाचा जी थे जो हमेशा हम उनको कहते थे कि भाई चाचा जी आप बॉम्बे रहने हैं, अपने गांव में सब प्रॉपर्टी आप खरीद के रख रहे हो, लेकिन वहां जब जाएंगे तब तक वो चीजें वैसे के वैसे आपको मिले, उससे अच्छा तो आप यहीं पर कुछ खरीद के रखिए ताकि आपके बच्चे आप यहाँ पर उसका लाभ ले सकते हैं. तो चाचा हमेशा कहा करते थे कि भाई नहीं, मुझे अपने रिटायरमेंट के बाद गांव जाके ही गांव में ही खेती करना है और आराम से जीवन गुजारना है. ये चीजें जो है हमने उनके सामने ही, उन्होंने सब कुछ जो है गांव में खरीदा, बहुत पैसा लगाया वहां पर और फिर अपने चाचा और गांव में रहने वाले लोगों पर विश्वास किया. और जब तक वो यहाँ थे बॉम्बे, तो जब तक वो रिटायर नहीं हुए थे तब तक तो उनसे पैसे लेते थे वो लोग गांव वाले, इनको कुछ रिटर्न में नहीं मिलता था और ना ही ये अपेक्षा करते थे कि मैं जब जाऊंगा तो मैं अपना कर लूंगा, अभी उन लोग को करना है तो वो करें, और उनको हेल्प भी करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था उनकी ये हेल्पिंग नेचर देखकर. लेकिन हुआ ऐसे कि रिटायरमेंट के पहले ही उनको एक बीमारी ने घेर कर लिया, कैंसर, और फिर वो चल बसे और फिर सपने वहीं पर वहीं रह गए. फिर जो बच्चे थे उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ कि गांव जाके वो सब चीजें फिर से समेटना, तो वो एक बहुत बड़ा मुश्किल वाला दौर से वो आज गुजर रहे हैं. लेकिन कहने का भाव ये था कि जब हम लोग सपने संजोए रखते हैं तो कुछ ऐसी सपने रखे जो हम लोग सामने से पूरा कर सके, खुद भी अनुभव करें और दूसरों को भी कराए. तो आइए जीवन के इस दौर में बहुत सारी बातें और भी आपसे करेंगे और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विभा जी जुड़े हुए हैं. तो विभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: थैंक यू सनी, जैसा कि आपने कहा मुस्कुराते रहो, मैं मुस्कुराते हुए आपको नमस्कार करती हूँ और ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार.
1: बहुत बहुत स्वागत है, वार्म वेलकम ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में. और मैं चाहूंगा कि आज आप जो पी अक्षर वाले गाने 50s एंड 60s के सुनाने वाले हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत में पहला गाना कौन सा आप सुनाते?
2: ये मैं मिक्स गाने लेके आई हूँ, उसमें सुकून है, प्यार है, शरारत है, अर्ज भी है, दुहाई भी है, तो ये आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है सुनने के लिए, तैयार रहें. और सबसे पहला गाना है मेरे पास है प्रीतम दर्स दिखाओ तुम बिन रूह रैन बिताई अब घर आओ.
1: अच्छा अच्छा,
2: बड़ा सूदिंग और सुकून देने वाला गाना है और ये
1: जी.

0: नृत्य करते हुए वीणा के साथ गाया होगा ना, बहुत ही सूदिंग रिलैक्सिंग, आपको बहुत मजा आएगा।
1: क्या बात है,
0: के बोल बहुत ही अच्छे हैं, सुनते हैं।
1: जी जी, बहुत ही प्यारा संगीत आपने शुरुआती कार्यक्रम की शुरुआत में आपने याद कराया है। और ये फिल्म आई थी चाचा जिंदाबाद, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले, मन्ना डे, इन सभी पर पिक्चराइज किया गया था। तो आइए इस फिल्म का ये गाना जो आपने अभी याद कराया है, उस गाने को सुनते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और गाने का जो भाव था वो आप समझ ही गए होंगे। बड़े प्यार से इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण जी ने, लता मंगेशकर और मन्ना डे ने इस गाने को गाया था। मदन मोहन का खूबसूरत संगीत से सजा ये फिल्म थी चाचा जिंदाबाद। तो आइए इस फिल्म के गाने को सुनकर कहीं न कहीं हमें जो है एक प्रेम का भाव जो है ईश्वर के प्रति, और ईश्वर से हम कामना क्या करते हैं कि जब भक्ति बहुत अच्छी तरह से करते हैं, उनके साथ हमारा प्रीत जुड़ जाती है, तो बस एक साक्षात्कार की कामना मन में रहती है। इसलिए भाव उभरते हैं कि हे प्रीतमा, तुम मुझे दृश्य दिखाओ, तुम अपना रूप दिखाओ। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना अभिभा जी आपने याद कराया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और कौन सा एक गीत आप सुनाने वाले हैं अभी?
2: अगला गाना मेरे पास है, पुकारो मुझे नाम लेके पुकारो।
1: अच्छा।
2: मुझे तुमसे अपनी खबर मिल गई, जैसे कि पिछला गाना था उसमें हम प्रीतम से जुड़ने की, भगवान से जुड़ने की बात है, और यहाँ अपने प्रीतम से के साथ मिलने की बात है। गाने के बोल में प्यार है, अपनापन है, बंद जाने का संदेश है, कल्पना भी है, सपने भी है, और इसमें तो बोल बड़े जबरदस्त है। इसमें एक लाइन है, तुम्हारी हथेली से मिलती है मेरी ये अधूरी लकीरें। ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंजॉय।
1: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। ये एक फिल्म आई थी 1960 और 65 के बीच में, भूल न जाना। जी हाँ, ये फिल्म का नाम था और इसके गाने जो है वो भी अच्छे थे, लेकिन जो गाना आपने याद कराया है वो सबसे अच्छा है। तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी हम लोग सुनेंगे, जिसे गुलजार साहब ने लिखा है, मुकेश जी ने गाया है, और दानसिंह जी उस समय संगीतकार हुआ करते थे, तो उन्होंने इस गीत के लिए संगीत दिया था, भूल न जाना। इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना अभी आप सबके लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, भूल न जाना इस एल्बम से। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलूंगा। और हमारे विवा जी ने बहुत ही अच्छे कलेक्शन अपने पास संजोए रखे हैं, उनका कलेक्शन से हम लोग गाने सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आ जाती है और हम कभी कभी मुश्किलों के साथ जुड़ जाते हैं, कई बार हमारा गिरना होता है और गिरकर कहीं संभलने में देरी लगती है और कभी कभी जो है हम संभलना ही नहीं चाहते क्योंकि गिरने का डर अंदर इतना बैठ जाता है कि फिर लगता है कि वापस उठते ही गिर जाऊंगा मैं, तो ऐसे में तकलीफ बहुत होती है। लेकिन इसके लिए एक शायर ने कहा है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है। बिल्कुल इसी तरह गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। विभा जी बहुत बहुत स्वागत है, अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
1: ये जैसे आप मस्ती भरे शेर सुना रहे हैं, ये मस्ती वाला ये गाना है मेरे पास।
0: अच्छा।
1: पुकारता चला गली गली बहार की, इसमें शरारत हो रही है अपने महबूब के साथ और एक प्यार की झलक पाने को तरसते हुए विश्वजीत आशा पारिक से गुजारिश कर रहे हैं कि एक झलक प्यार की दे दो मुझे। रही ये लगन दिले दवा, असर भी हो रहेगा एक हंसी।
0: क्या बात है, अब बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। आशा पारेख, विश्वजीत और मुमताज, प्राण और राजेंद्र नाथ पर पिक्चराइज किया गया था। ये फिल्म मेरे सनम का है, 1965 में रिलीज हुई थी। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कहानी को बताया गया है और शादी की बातें यहाँ पर चलती हैं और फिर ऐसी कुछ रहस्यमय बातें जो है बाद में सामने आ जाती हैं। तो उनकी शादी भी एक मुश्किल का दौर से गुजरती है, बाद में फिर हैप्पी एंडिंग बताया गया है। तो चलिए कहानी को हम लोग नहीं सुनाएंगे, अब सीधे मैं ले चलता हूँ इस गीत की तरफ। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, रेडियो पुनेरी आवाज में आप खाबों का सफर इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को सुन रहे हैं और विभा जी के पास बहुत ही प्यारे कलेक्शंस हैं ओल्ड मेलोडीज का, जो हमने अभी सुना। जी हाँ, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी साहब का गाया, ओपी नैयर का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गीत था मेरे सनम का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विभा जी, अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
2: अगला गाना सनी जो मेरे पास है, ये मेरे ख्याल से हर किसी ने अपने टाइम पे एक बार तो ये गाना जरूर गाया होगा। प्यार किया तो करना क्या, जब प्यार किया तो प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। इस गाने के जैसे कि बोलों में ही लग रहा है, इस गाने में बगावत है। मधुबाला का इसमें जो नृत्य है, डांस है, इतनी खूबसूरती से दर्शाया गया है इस फिल्म में कि पूरे शीशे हैं चारों तरफ, बहुत ही खूबसूरत इसका सेट बना था। और इस गाने में बगावत है और अपनी मोहब्बत पर नाज भी है और मोहब्बत एक्सप्लेन किया है इस गाने में। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना, जब प्यार किया तो
1: जी। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, मुगले आजम इस एल्बम का, जो एक सम्राट पर फिल्म बनी थी, जहाँ एक सम्राट जो है और वो एक सुंदर वैश्या से प्यार कर बैठता है और कहानी यहाँ पर बड़ा जो है इम्तिहान लेता है उनका प्यार का, और आखिरी तक वो प्यार जो है सफल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजाओं के क्या कहते हैं उनकी शान और आन की बात आ जाती है और वहाँ पर युद्ध भी होता है। बात प्यार करने वालों की जिंदगी और जहाँ पर आन शान और बान की बात होती है, प्यार कुर्बान हो जाता है राजा महाराजाओं की इस दुनिया में, तो वो चीज यहाँ पर मुगले आजम में बताई गई है। तो आइए, ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी और उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में ये रिलीज हुई थी, बाद में ये कुछ समय के बाद फिर से री रिलीज किया गया था कलर में, ईस्टमैन कलर में इसको डिजाइन करके। तो मधुबाला, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे और सुल्ताना पर पिक्चराइज किया गया था। तो आशा करता हूँ आपने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो जरूर इस मूवी को एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है और आशा करूंगा कि आप लोग देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, और देख लिया है तो जरूर मेरी बात को आप समझ ही रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस गीत की तरफ। थैंक यू विभा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने हमें याद कराया है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: द रेडियो फोनेरी आवाज, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना एंड मुझे लगता है कि आप इस गाने के साथ साथ गुनगुना जरूर रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस गाने का जो पहली लाइन है वो सबको याद हो जाता है, प्यार किया तो डरना क्या।
1: और इसका म्यूजिक भी इतना सुरीली है, अपने आप ही झूमने को मन कर रहा
0: है। हाँ, झूमते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। मुझे लगता है कि आप जरूर इसके साथ जुड़ गया होंगे। तो चलिए आपको एक और गाने की तरफ मैं ले चलूंगा, यानी विभा जी हमारे साथ हैं जो कलेक्शन उनके पास है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जब व्यक्ति के जीवन में काफी जो है उतार चढ़ाव आता है, जो संघर्ष आता है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको रुकना तो नहीं है लेकिन चलना ही पड़ता है। जीवन में जो है एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें कहते हैं जो डर गया सो मर गया। तो चलते चलते हमें जो है कई बार डर तो लगता है, क्योंकि जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर हमें अंधेरा नजर आता है और व्यक्ति अंधेरे से घबराता है। चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति हो लेकिन अंधेरे से सबको डर लगता है, क्योंकि अंधेरे में चलना मुश्किल हो जाता है। तो जीवन के इस अज्ञानता का अंधेरा जो है वो व्यक्ति को और ज्यादा दुखी करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जीवन में चलते चलते रुक गए तो फिर जीवन का जो मंजिल है उसे बहुत दूर हम देखेंगे या फिर पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है, चलता रहूंगा पथ पर। हम सब इस संसार में राही हैं, इसलिए चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसी अगर भाव को लेकर आप चलेंगे तो हो सकता है कि आप जीवन के मुश्किलों को आसानी से पार कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। और एक बात तो मैं शेयर करना चाहूंगी सनी आपसे
0: जी
1: और अपने श्रोताओं से कि ये प्यार के गाने जब मैं सुन रही थी तो प्रिय अक्षर से, उसमें ज्यादातर प्यार मोहब्बत के गाने थे। और प्यार के भी कितने रूप है, इसमें बगावत है, अपनापन है, मोटिवेशन है, संदेश है। और पी अक्षर पे बहुत ही सुंदर सुंदर गाने मुझे हुए। और ये जो अगला गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगी, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूँ ना करूँ। इसमें जैसे प्यार के लिए इजाजत मांगी जा रही है इसमें, और साथ में कहा जा रहा है, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूँ कि ना करूँ। बहुत सुंदर गाना है।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। और कई बार व्यक्ति जो है प्यार को समझने की कोशिश करता है लेकिन उसके बस में ये चीजें नहीं होता कि मैं समझ पाऊँ उस चीजों को। फिर ऐसे कई सिचुएशन पे वो अर्जी भी डालता है कि क्या किया जाए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है, सोने की चिड़िया 1958 में एक फिल्म आई थी, इस फिल्म का ये गीत है। तो सीधे गाने की तरफ मैं ले चलूंगा। बहुत ही खूबसूरत मूवी बनी थी उस समय की और इसमें जो है सिंपल सी कहानी बताई गई थी। सोने की चिड़िया, आप सभी जानते हैं भारत देश को भी सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ पर बलराज सहानी, नूतन और चंदा पर यह पिक्चराइज किया गया था। शहीद ललित साहब ने इसे डायरेक्ट किया था। तलत महमूद साहब भी इसमें जो है अपने म्यूजिक को दिया था और गाने भी गाए थे। तो आइए इस खूबसूरत गाने का लुत्फ उठाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। आप सुना है रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में। बहुत ही सुरीन गाना आपने सुना, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी। आशा भोसले, तलत महमूद साहब का गाया हुआ, साहिल उजानवी साहब का लिखा, ओपी नैयर का संगीत से सजा ये गीत आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं जीवन के कई रूप है लेकिन फिर भी इसमें लक्ष्य लेकर चलना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग बिना लक्ष्य के ही रास्ता तय करने की कोशिश करते हैं, फिर थक जल्दी जाते हैं, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं है, चल रहे हो तो फिर आपको खुशी कम होगी। लक्ष्य है अगर आप चल रहे हो, और जितना आप लक्ष्य के नजदीक जाएंगे खुशी धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए जरूरी है जीवन में लक्ष्य लेके चलिए, अंधेरे में यूं ही न चलिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास हमारे श्रोताओं के लिए?
1: अगले श्रोताओं को ये मैं बताना चाहती हूँ कि प्यार होता क्या है। ये इस गाने के जरिए हमारे श्रोताओं को भी पता चलेगा और आप खुद भी बहुत एंजॉय करोगे। दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ये गाना बहुत खूबसूरत है, संदेश के साथ है ये गाना। राजेश खन्ना पियानो बजाते हुए इसको गा रहे हैं, और सभी बंधनों को छोड़ के जो हम नजायज, जैसे ही बंधन, कई बार हमारी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि हमें और कुछ सोचता ही नहीं है, हम प्यार या नजाकत की ओर देख ही नहीं पाते। तो इस गीत के जरिए राजेश खन्ना मोटिवेट कर रहे हैं साधना जी को, जो कि विटर है इस मूवी में, और गाने के बोल में बहुत अच्छे हैं। जीने और प्यार करने की चाह है, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है।
0: क्या बात, चलिए कटी पतंग इस एल्बम का ये गाना आपने याद कराया है। बहुत ही खूबसूरत गाना है, सूदिंग गाना है। कई बार मैंने इस गाने को सुना है और जब भी सुनते हैं उतना ही रिफ्रेशमेंट आपको इस गाने से मिलता है।

शक्ति सामंत साहब का ये डायरेक्शन में फिल्म बनी थी और उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और विजेंद्र गौर और गुलशन नंदा ने इस फिल्म को लिखा था। राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, नाजिर हुसैन, इन लोगों ने इस फिल्म में काम किया है। राहुल देव बर्मन का संगीत से सजा ये अगला जो गाना आपको सुनाने वाले हैं हम लोग, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। और धीरे धीरे हम लोग अपनी मंजिल के आखिरी मोड़ पे पहुंच चुके हैं। आशा करता हूं हमारे विभा जी के पास एक आखिरी गाना भी होगा।
1: जी जी बिल्कुल है, और हम आखिरी ये गाना, आज के एपिसोड का आखिरी गाना ये सुनेंगे। तो इसमें जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, प्यार मोहब्बत के गाने हैं इस एपिसोड में सारे। और इसमें जब जब प्यार होता है तो महबूब को अपनी महबूबा से सिर्फ उनको कान उनको आंखें देखना चाहती हैं और कान सुनना चाहते हैं। और इस गाने की कोई भी, जैसे आप सुनेंगे तो आपको आपके दिल को छुएंगे, पुकारो मुझे फिर पुकारो, मेरे दिल के आईने में जुल्फे आज सवार। ये फरीदा जलालो शत्रुघ्न पे फिल्माया गया गाना, बहुत कम आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन ये बड़ा बहुत ही रोमांटिक गाना है। और दो प्रेमी जो प्रेम में बंधे हुए हैं, अपनी मोहब्बत में गुम हैं और सपनों में खो गए हैं, एक दूसरे से जीवन भर का साथ मांग रहे हैं, और सितारों से नीचे से वो कह रहे हैं, जाओ कहीं जाके छुप जाओ आज सितारे।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। ये एक फिल्म आई थी बुनियाद, बहुत ही ओल्ड मूवी है 1970s का, जिसमें खास राकेश रोशन, शत्रुघ्न सिन्हा, योगिता बाली, फरीदा जलाल, प्राण, बिंदु, जानकी दास, इन पर पिक्चराइज किया गया था। और किशोरदा और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा है। आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा है बुनियाद इस फिल्म के लिए। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया है इजाजत जाने का। और इसी के साथ विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर। बहुत ही खूबसूरत गाने आपने सुनाए, बहुत सारी दुआएं आपको। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सनी, आपका भी और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी प्यार के रंग में रंगे होंगे और प्यार को बहुत ही प्यार के साथ गाया होगा। आपको भी और सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार। चलिए साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। और जाते जाते दो लाइनें आप सबके लिए, कहते हैं जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदरों पर भी पत्थरों के फूल बना देते हैं।

तो इसी के साथ मैं और विपिन चाहेंगे आपसे इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरस, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेक।

विवेकानंद के बचपन की कथाओं में उनका साहस, स्वाभिमान, तर्कपूर्ण मस्तिष्क और बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। बचपन के गुणों को देखकर भावी मंगलमय जीवन का भी एक सुंदर पूर्वाभास पाना संभव होता है। कम से कम नरेंद्रनाथ के संबंध में ये बात निसंकोच कही जा सकती है। नरेंद्र की सुगठित सुंदर देह थी, दोनों नेत्र बड़े बड़े और उज्जवल थे, गौर वर्ण, अंग प्रत्यंग लावण्य मंडित और मुख मंडल पर प्रतिभा की दीप्ति, देखते ही प्यार करने की इच्छा होती।

बचपन में नरेंद्र को अपने साथियों के साथ शिव का ध्यान करने का खेल बहुत पसंद था। उनके साथी भी उनके साथ बदन पर राख मलकर आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाते थे। एक दिन सब बच्चे ऐसा ही खेल रहे थे, अचानक एक बच्चे ने आंख खोलकर देखा कि सामने एक काला नाग फन फैलाए हुए है। उस बच्चे के मुंह से चीख निकल गई।

0: पर नरेंद्र का ध्यान नहीं टूटा, वो वहीं बैठा रहा। बच्चों की चीख पुकार सुन बड़े बुजुर्ग दौड़े आए। उन लोगों ने आकर अत्यंत भयावह दृश्य देखा। आंखें मूंद कर बालक बैठा है और उसके सामने विषैला सांप भयंकर फन फैलाए डोल रहा है। देखकर प्राण सूख गए, सांसें थम गईं। आवाज करने पर सांप बालक को डस सकता था। इस भय से निरुपाय हो सभी चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो सांप स्वयं ही कहीं चला गया। ढूंढने पर भी वो सांप नहीं मिला। माता बेटे से लिपट गई और कहने लगी,
1: बेटा बेटा बिले, तू ठीक तो है ना? हाँ, तेरे दोस्तों ने तुझे इतना जगाया, तू उनके साथ भागा क्यों नहीं? बोल बोल, तू भागा क्यों नहीं?
2: क्या हुआ माँ, तुम सब लोग यहाँ क्यों भीड़ लगाए खड़े हो? तुम लोग रो क्यों रहे हो? ए ए ए निताई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ?
1: बिले, तुझे क्या सचमुच होश नहीं था? अरे इतना बड़ा सांप तेरे सामने फुफकार रहा था और तू आंखें मूंद कर बैठा था, बोल।
2: सांप कहाँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला।
1: हे भगवान, हे शिव शंकर, आज तुमने मेरी बेटे की रक्षा की है भगवान, ऐसे ही कृपा बनाए रखना देव।

0: नरेंद्र बचपन से ही अपने हम उम्र साथियों के साथ नई नई जगह जाने के लिए तैयार रहते थे। चाहे वो मकर संक्रांति के दिन गंगा किनारे जाकर दीप जलाकर पानी में बहा देने की बात हो या कोई मेला देखने जाना हो, दूसरों की मदद के लिए बालक नरेन हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन जब वे सिर्फ 6 साल के थे, अपने दल बल के साथ चैत्र संक्रांति में होने वाले शिवजी का मेला, जिसे गाजन का मेला कहते हैं, देखने गए थे। लौटने में शाम हो गई थी। नरेन मेले से खरीदी हुई शिवजी की मूर्ति हाथ में लिए जल्दी जल्दी घर वापस आ रहे थे। कुछ साथी पीछे रह गए थे। अचानक पीछे शोरगुल सुनकर नरेन ने पीछे मुड़कर देखा। उसका एक दोस्त हक्का बक्का सा सड़क के बीचों बीच खड़ा है और एक बग्घी तेजी से उसकी तरफ बड़ी चली आ रही है। कोचवान घोड़े का रास पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है, पर घोड़ा है कि बड़ा ही चला आ रहा है।
1: बच्चा हट जा रहे, हट जा
2: हट जा, देख नहीं रहा, घोड़ा बेकाबू हो गया है, हटो हटो सब, हट जाओ
1: यहाँ से। अरे
2: भैया ये तो गया, अरे भैया हट जाओ, अरे भैया हट जाओ, अरे भैया हट जाओ, अरे भैया हट जाओ।
0: सब चिल्ला रहे थे पर कोई आगे बढ़कर उस बच्चे को बचाने नहीं आ रहा था। नरेन ने देखा, झट हाथ में धरी मूर्ति को किनारे पर रखा और बीच सड़क पर कूदकर अपने साथी को एक झटके से किनारे खींच लिया। बग्घी तेजी से निकल गई। भीड़ अवाक होकर देखती रही।
3: क्या कर रहा था बीच सड़क में? मरना था क्या? अब रो क्यों रहा है? वो घोड़ा तो गया। चल अब घर चल, ले ले मेरा हाथ पकड़। अरे अरे रुक तो जरा, मेरी मूर्ति तो उठा लूं। अब चल।
4: शाबाश बेटे, तुमने तो उसकी जान बचा ली, ना जाने क्या हो जाता आज।
5: वाह बहुत बहादुर हो, किसके बेटे हो भाई?
3: विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ, अब खड़ा क्यों है, चल ना।
0: घर आकर नरेन ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ सांस रोककर सारी घटना सुनती रही, फिर बार बार भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद

0: देती रहीं।
1: हे भगवान, हे शिव शंकर, तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया। भगवान बिले, आज कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था तुझे अंदाजा भी है? तुम दोनों को वो घोड़ा कुचल भी सकता था बेटा।
2: माँ, मैंने अपने दोस्त को बचाकर क्या कोई गलती की?
1: ओह मेरे वीर पुत्र, नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, पर माँ का दिल है ना, हमेशा डर लगा रहता है। बेटा, तुमने तो सच्चे इंसान का काम किया है, हमेशा ऐसे ही इंसान बने रहना। तुम्हें मालूम नहीं बेटा, उस बच्चे की माँ आज तुम्हें कितना आशीर्वाद दे रही होंगी। कितना आशीर्वाद आज मिला है तुझे। ओह बेटा, बेटा, तेरा राजा बेटा, राजा बेटा मेरा।

0: नरेंद्र के साहस और तत्परता के कई किस्से हैं। एक बार जब वे 7-8 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ नाव से चांदपाल घाट से मटिया बुर्ज स्थित लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का चिड़ियाघर देखने गए। लौटते समय एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसने नाव में उल्टी कर दी। इससे नाराज होकर मल्लाहों ने उस लड़के को नाव साफ करने को कहा। लड़के ने किसी दूसरे से नाव साफ करवा लेने की बात कही, दुगना भाड़ा देने का वादा भी किया, पर मल्लाहों ने जिद नहीं छोड़ी, गाली गलौज करने लगे और किनारे पर आकर कहा,
1: कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले नाव साफ करो फिर किनारे लगाएंगे, किसी को उतरने भी नहीं दूंगा।
2: बात झगड़ा और मारपीट में बदलने की नौबत आ गई। घाट के दूसरे मल्लाहों को भी इन मल्लाहों का साथ देते देख लड़के घबरा गए। नरेन उन सभी से उम्र में छोटा था, पर वो छलांग लगाकर किनारे पर आ गया और बचने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसने दो गोरे अफसरों को उधर आते देखा। नरेन बिना घबराए उनकी तरफ दौड़ा और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा,
3: कम कम कम, सेव सेव बोट, फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, सेव सेव सेव।
2: गोरू ने परिस्थिति भांप ली और इस सुदर्शन बालक को स्नेह पूर्वक अंग्रेजी में कहा,
1: ओके ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर।
2: गोरों का हाथ पकड़कर नाव की ओर ले चले। गोरों को देखकर ही मल्लाह डर गए और बिना कुछ कहे नाव किनारे लगा दी। बच्चे उतर गए। गोरों ने प्रसन्न होकर नरेन को प्यार से कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जाना चाहा, पर नरेन उसने मना कर दिया और कहा,
1: ओके ओके ओके किड, नाइस टू मीट यू, यू आर सच अ ब्रेव बॉय।
3: थैंक यू, लेट मदर, वेट वेट, गोइंग गोइंग गोइंग,
1: बाय बाय,
3: थैंक यू।
2: और साथियों के साथ घर लौट आए।
0: एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगी। नरेंद्र जब 12 साल के थे, तब इंग्लैंड के भावी राजा प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में सम्राट सप्तम एडवर्ड कहलाए, भारत दर्शन के लिए आए थे। उसी समय सिरापिस नाम का एक विराट जंगी जहाज कलकत्ते के बंदरगाह में आ रुका। नरेंद्र और उनके साथियों ने तय किया कि वे उस जहाज को देखने जाएंगे, पर उसे तो यूं ही नहीं देखा जा सकता। चौरंगी क्षेत्र में एक साहब अफसर के दफ्तर से अनुमति पत्र निकलवाना होगा, तभी जहाज में चढ़ा जा सकेगा।
2: नरेंद्र दलबल समेत चौरंगी पहुँचे, दफ्तर ढूंढ निकाला। सामने ही एक विशाल काय मूछ वाला दरबान बैठा था। उसने बच्चों की टोली से पूछा,
4: यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है, क्या चाहिए, चलो हटो यहाँ से, साहब लोगों के आने जाने का रास्ता है ये, हट जाओ वहाँ से।
3: दरबान जी, हमें अंदर जाने दो ना, हमें साहब से जहाज देखने की पर्ची भी तो निकलवाना है।
4: कह दिया ना नहीं, अभी साहब नहीं मिल सकते, काम कर रहे हैं, जाओ निकल जाओ यहाँ से, बाद में आना।
3: बाद में मिलकर क्या करूँगा, जहाज तो कल चला जाएगा।
4: तो हम क्या करें, जाएगा तो जाने दो, तुम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, कह दिया ना, चलो चलो जाओ, सभी जाओ यहाँ से।
3: और लोग भी तो जा रहे हैं, हमें ही क्यों रोक रहे हो।
4: बहस मत करो, बच्चे हो बच्चे की तरह रहो, नहीं जाना है तुम्हें, बस।
0: नरेंद्र आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने देखा लोग दो मंजिल के एक कमरे में जा रहे हैं और पर्ची लेकर वापस आ रहे हैं। वह समझ गया साहब दो मंजिल के कमरे में बैठे हैं। उसने और भी देखा, उस कमरे तक जाने के लिए मकान के पीछे से लोहे की घुमावदार एक सीढ़ी भी है। उसने साथियों से कहा,
3: चलो चलो चलो सब, दरबान जी मना कर रहे हैं तो चले जाओ।
4: बस
3: तुम लोग कुछ दूर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया।
2: दूसरे बच्चे दूर जाकर खड़े हो गए। नरेंद्र चुपचाप पीछे वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और आवेदकों के दल में सम्मिलित होकर पंक्ति में लग गया और बारी आने पर साहब के कमरे में घुस गया। साहब माथा झुकाए आवेदनों पर दस्तखत करते जा रहे थे। नरेंद्र ने आवेदन साहब के सामने रखा, हस्ताक्षर हो गया। वो चुपचाप सामने की सीढ़ी से नीचे उतर आया और दरबान के सामने आवेदन फहरा कर कहा,
3: ये देखो मिल गई ना अनुमति, बड़े आए थे रोकने वाले।
4: ए छोकरा, तुम कैसे ऊपर आ गया बताओ।
3: हम जादू जानता है।
2: सब बच्चे हंसते हुए दरबान को मुंह चिढ़ाते हुए जहाज देखने चले जाते हैं।
0: नरेंद्रनाथ के सोने की क्रिया भी अद्भुत थी। दूसरों की तरह सिर तकिए पर रखते ही वे सो नहीं जाते थे, उन्हें पेट के बल सोने की आदत थी। आंख मूंदते ही वे अपनी भौहों के बीच एक अपूर्व ज्योति बिंदु देखा करते थे। यह बिंदु धीरे धीरे बढ़ता और क्रमशः अंडे का आकार धारण कर लेता और अचानक फटकर रंग बिरंगे तारों की तरह बिखर जाता और चारों दिशाओं को आलोकित कर बालक को ज्योति सागर में डुबो देता था। उस आलोक सागर में डूबते डूबते वे सो जाते।
2: हर रात ऐसा ही होता था। वो सोचते थे कि शायद हर आदमी को नींद ऐसे ही आती है, इसीलिए इस अति साधारण दैनिक घटना का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था। बहुत दिनों बाद बड़े होने पर एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा था,
3: क्यों भाई सोने से पहले क्या तुम्हें एक ज्योति दिखाई देती है?
5: नहीं तो।
3: मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ। बिस्तर पर लेटते ही सो मत जाना, कुछ देर आंख मूंद कर ध्यान करना, तुम्हें भी दिखाई देगी।
2: उस मित्र को ज्योति दिखी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, पर बाद में सन 1882 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इस ज्योति दर्शन की बात सुनकर कहा था,
6: जो लोग ध्यान सिद्ध होते हैं वे ही इस प्रकार की ज्योति देख पाते हैं।

बचपन से ही नरेंद्र अपने हम उम्र साथियों के साथ तरह तरह के खेल और दूसरे बाल सुलभ क्रियाकलापों में जुटे रहते। हमेशा वे ही इन सभी आयोजनों के नेता होते। उनका

0: सत्व गुण बचपन से ही देखा गया था। उनसे उम्र में बड़े बच्चे भी उन्हें निर्विवाद नेता मान लेते थे। वे अपने दल के साथ कभी घूमने जाते, कभी खाना पकाने का खेल खेलते, कभी घर के आंगन में ही नाटकों का मंचन करते। ज्यादातर रामायण या महाभारत के प्रसंगों का खुद ही नाट्य रूपांतर करते और साथियों के साथ मिलकर मंचन करते।
1: हनुमान जी के प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय लगते थे। वे अक्सर लंका दहन, गंधमार्दन पर्वत कंधे पर ले आना, अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात आदि प्रसंगों का मंचन किया करते थे। और शायद यह बताने की जरूरत नहीं कि वे खुद हनुमान की भूमिका में होते थे। एक लंबी सी पूंछ लगाकर हनुमान जी की नकल करते हुए वे उछलते कूदते रहते थे।
2: अरे दुष्ट रावण, तेरी ये हिम्मत, तूने श्री राम की पत्नी सीता मैया का हरण किया। ठहर, तुझे मजा चखाता हूँ। तुझे अपनी सोने की लंका पर बहुत गर्व है ना? ले, अब बचा ले इसे। आज मैं तेरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। देखूं कौन रोकता है मुझे।
3: अरे आ रहा है इसने तो ऊपर
4: बच्चे जाएगा कहाँ?
3: पहले ही जा पाएगा, पकड़ो उसे। वो देखो कूद कर उधर चला गया।
5: हाय हाय, सबको जला दिया उसने।
2: आओ पकड़ो मुझे। क्यों रावण महाराज, कैसा लग रहा है?
6: मेघनाथ कहाँ है? कुंभकर्ण को बुलाओ। सब वीर योद्धा बनकर सो रहे हैं। अरे कोई तो मेरी लंका को बचाओ, बचाओ, बचाओ।
2: ये रही तेरी जलती हुई पूंछ, रख ले इसे। मैं तो अपनी पूंछ लेके ये चला।
1: और भी कई प्रकार के खेल थे। उन दिनों कलकत्ते में गैस बत्ती आई थी, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं। अंग्रेजों ने सोडा लेमोनेट बनाना भी शुरू किया था। नरेन को लेमोनेट पीना बहुत अच्छा लगता था, सो उन्होंने घर के आंगन में ही गैस और सोडा लेमन का कारखाना बनाने का मन बना लिया था। फिर क्या था, पूरी सेना इकट्ठी हो गई। कलपुर्जे नुमा कबाड़ इकट्ठा करके कारखाना खुल गया। पुराने जस्ते के नल, मिट्टी की हांडी और घास फूस के साथ गैस घर का निर्माण हुआ। घास फूस के जलते ही धुआं होता और नल से होकर ऊपर उठता। नरेन कमर पर हाथ रखकर कुछ दूर खड़े होकर गंभीर दृष्टि से सब कुछ देखते और अपनी आविष्कार की सफलता पर आत्मतृप्त होते। दूसरे बच्चे भी ताली बजा बजा कर आनंदित होते और नरेंद्र को शाबाशी देते।
7: अरे नरेन, ये तो सचमुच का कारखाना बन गया। अरे पर सोडा लेमोनेट कैसे बनेगा?
2: जरा चुप तो रहो, मुझे सोचने दो। इस हांडी में पानी लाओ, इसे गैस के पाइप से बांधो।
7: क्यों नरेन, ये बाजार वाले लेमोनेट जैसा ही होगा ना, मीठा मीठा।
2: होगा तो वैसे ही। अरे अरे, गैस कम क्यों निकल रही है? और आग दो, आग दो, घास डालो और अब फूको, फूंक लगाओ। अरे जोर से लगाओ, जोर से, और जोर से लगाओ।
1: वाह रे नरेन, धन्य है तुम्हारी कल्पना शक्ति।
0: एक बार नरेंद्र ने सर्कस देखने के बाद घर पर ही ट्रेपेज बनाने की ठानी। ट्रेपेज का खेल उन्हें बहुत पसंद आया था। कैसे खिलाड़ी हवा में झूलते हैं, छलांग लगाकर दूसरे झूले को पकड़ लेते हैं। बस सोचने भर की देर थी। साथियों को बुलाकर कहीं से रस्सी ले आए और बगीचे के पेड़ पर ट्रेपेज का झूला बांधने लगे। जितना काम नहीं हो रहा था उससे ज्यादा हंगामा मच रहा था। देखते देखते बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बच्चों की हरकतें देख लोग मजा ले रहे थे, पर कोई मदद करने नहीं आ रहा था। बच्चे परेशान हो रहे थे। वे ट्रेपेज

0: बांध नहीं पा रहे थे। इतने में नरेंद्र की नजर एक अंग्रेज पर पड़ी। वह हट्टा कट्टा जवान था, शायद किसी जहाज में नाविक का काम करता होगा, क्योंकि वह वैसे ही पोशाक पहने हुए था। नरेंद्र उनके पास जाकर बोला,
1: सेलर।
2: यस सर।
1: हेल्प।
2: ओके।
3: वो अंग्रेज ऊपर चढ़कर झूला टांगने में मदद करने लगा। अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे जमीन पे आ गिरा।
2: ओह माय गॉड।
3: वो बेहोश हो गया था, उसके सिर से खून बह रहा था। सब लोग थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए, फिर सब ने एक साथ बोलना शुरू किया।
4: अरे इसका तो सिर फट गया।
5: मर तो नहीं गया?
4: क्या पता, हिलडुल भी तो नहीं रहा।
5: तो अब क्या होगा?
4: होगा क्या, पुलिस आएगी और इन बच्चों को पकड़कर ले जाएगी।
5: ए पुलिस, अरे भागो भैया, पुलिस की झंझट में कौन पड़ेगा।
4: हाँ हाँ, तुम सच बोलते हो, चलो चलो भागते हैं।
5: भागो, भागो, भागो, भागो।
0: देखते ही देखते सब भाग गए। बच्चे रोने लगे। नरेन आगे आया।
6: ए ए, कोई पानी लाओ, तुम मेरी मदद करो, मैं अपनी धोती फाड़ कर पट्टी बना देता हूँ। जरा इनका सर पकड़ तो लो, मैं पट्टी बांध देता हूँ।
3: बच्चों ने मिलकर उनका घाव धोकर पट्टी बांधी, मुंह पर पानी का छींटा दिया। थोड़ी देर में उस अंग्रेज को होश आ गया। कुछ देर तक आराम करके वह उठ बैठा। नरेन उसे पास वाले कमरे में ले गए, घर के बड़ों को बुलाया और डॉक्टर ने आकर उसकी मरहम पट्टी की। नरेंद्र ने परिवार वालों से मांग कर उसे कुछ पैसे भी दिए। वह धन्यवाद देकर चला गया।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बींग।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। वाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी है? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे देंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो, रेडियो पुणेरी आवाज म्हणजे आपल्या मनातल्या भावभावना सर्व श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं एक प्रभावी असं माध्यम। अखेर शब्दांचा या शो मध्ये आपण भरभरून लिहिता आणि आपले श्रोते सुद्धा याचा खूप आनंद घेतात। खूप सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया शो नंतर येतात की कविता सुंदर होत्या, चारोळ्या सुंदर होत्या, विश्लेषणाबद्दल काही प्रतिक्रिया येतात। तर त्या अनुषंगाने श्रोते हो आपण आपल्या आजच्या शो मधल्या पुढच्या एका कवितेकडे वळूया, ज्यामध्ये श्री श्रीकांत पाटील सर लिहित आहेत राजधानी रायगड इथून। श्री श्रीकांत पाटील सरांनी राजधानी रायगड इथून लिहिलंय की दिला अनमोल मनुष्य देह हेच परब्रह्माचे उपकार, दिला अनमोल मनुष्य देह हेच परब्रह्माचे उपकार, त्याच्याच कृपेने येत असे, त्याच्याच कृपेने येत असे संघर्षमय जीवनाचा आकार। वा, आईची अतूट माया आणि वडिलांचा पाठीवरचा हात, आईची अतूट माया आणि वडिलांचा पाठीवरचा हात, जन्मदात्याच्या आशीर्वादाने करू अनेक संकटांवर मात, जन्मदात्यांच्या आशीर्वादाने करू अनेक संकटांवर मात। तर खराय की खूप सुंदर असं शब्दांकन करताना सरांनी लिहिलंय की आपला मानव जन्म, आपला मनुष्य देह जो अनमोल आहे, हेच परब्रह्माचे एक उपकार आहे आणि त्यांच्या कृपेनंच आपल्या जीवनाला आकार येतात।

0: सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: दोस्तों, दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ काम में बहुत व्यस्त रहते हैं और हम हमारे चुने हुए काम को इतने दिल से करते हैं कि उस काम के जरिए हमारा बड़ा ही नाम भी होता है, यश भी होता है, लेकिन एक पहचान भी बनती है। कई बार कुछ कर्तव्य, कुछ एक्शंस, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, केयर या पालना देना, किसी की संभाल करना, इस पे हमारा ध्यान इतना कभी नहीं जाता। घर में जब माँ किसी का ध्यान रखती है तो ऐसा समझा जाता है तो उनका काम है, लेकिन अगर वो ध्यान न रखे तो सोचिए हमारा क्या होगा। ठीक ऐसे ही हम उन्हें माँ तो नहीं कहते हैं, हम उन्हें सिस्टर्स कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नर्सों की, जो हर अस्पताल में अपनी सेवाएं माँ की तरह नहीं बट एक बहन की तरह कर रही होती हैं। कई बार हेल्थ और चिकित्सा, जब ये शब्द हमारे सामने आता है तो हम डॉक्टर्स, मरीज, इन तक तो हमारी बात पहुंचती है, हमारे ध्यान में डॉक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट नर्सों का क्या? मेल नर्स, फीमेल नर्स, दोनों ही दिन रात अपनी अथक सेवा से डॉक्टर के दिए हुए प्रेस्क्रिप्शन पे एक मरीज को ठीक करते हैं। ये एक ऐसी सेवा है जो वो अपने परिवार वालों के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वैश्विक परिवार के लिए कर रहे हैं। कोई भी हो उनके सामने, वो उनकी सेवा करते रहते हैं। आज यशस्वी भारत कार्यक्रम के हमारे एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ही सेवाधारी से मिलवाना चाहते हैं जो बहुत दूर नहीं, मेरे और आपके बहुत नजदीक है। दोस्तों, मैं आपका और हमारा परिचय डीके रूपा उपाध्याय जी से करना चाहता हूँ। डीके रूपा जी, जिनको हम रूपा दीदी के नाम से भी जानते हैं, माउंट अबू में ग्लोबल अस्पताल में नर्सिंग के मुख्य हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट के वो देखभाल करते हैं। लगभग 30 साल पहले उन्होंने नर्सिंग में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया और 1991 से वो ग्लोबल अस्पताल से जुड़ी हुई है। उनकी अथक और निस्वार्थ सेवा की वजह से भारत सरकार ने उन्हें 2018 में फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार से सम्मानित किया। उनको तो बहुत सारे पुरस्कार और बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हुए हैं, मैं जिनका भी नाम लेता चाहूंगा आपको लगेगा

0: अरे वाह, लेकिन हम बातचीत के दौरान इन बातों को समझेंगे जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं रूपा जी का। रूपा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था और मुझे लगा कि अच्छा, ये भी होता है, ये क्या होता है। फिर मैंने गूगल में सर्च किया और मुझे कितना सब कुछ जानने को मिला। कई बार इतनी अच्छी चीजें हो रही होती है हमारे आसपास में, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता है। ऐसे में जब आपको इतने सम्मानों से नवाजा जाता है तो आपको कैसा फील होता है कि मुझे या मेरे प्रोफेशन को एक परिचय मिला है, एक रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन लोग इसको इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो वो उस कॉन्ट्रेडिक्शन को, उस विरोधाभास को कैसे डील करते हैं?
1: ओम शांति। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये कोई अवार्ड हमें मिले उस भावना से नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक सेवा भावना है कि हमारी कम्युनिटी को, समाज को हमें कुछ देना है, हम समाज की ऐसी कोई सेवा करें। उस उद्देश्य से मैं इन नर्सिंग प्रोफेशन में आई हुई थी और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि सेवा करना। कोई बीमार होता था तो उनको खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, उनकी सेवा करना, बहुत ऐसे शौक था। और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि जब मैं 12th पास किया, फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसे कुछ अपने समाज के लिए करना चाहिए, तो सामने आया नर्सिंग प्रोफेशन। तो फिर मैंने नर्सिंग ज्वाइन की। और नर्सिंग प्रोफेशन तो वैसे मैंने नर्सिंग की पढ़ाई मुंबई से की हुई है, और जब वहीं मैं जॉब कर रही थी, लेकिन उस समय ऐसे लगा कि मेट्रो सिटीज में, मुंबई में तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन ऐसे जाकर, हम दूर जाकर गरीब और ट्राइबल एरिया में ऐसे कुछ लोगों की सेवा करें कि जहां कोई साधन या वो सेवाएं उपलब्ध नहीं है उनके लिए, तो ऐसे लोगों की सेवा करने की बहुत इच्छा थी। तो उस हिसाब से फिर माउंट आबू में जब हॉस्पिटल का प्लान आया, तो फिर मैं माउंट आबू में गवर्नमेंट जॉब छोड़कर 1991 में आ गई हूँ, और तब से यहाँ सेवा कर रही हूँ ग्लोबल हॉस्पिटल में। और शुरुआत मेरी यहाँ हुई एज अ स्टाफ नर्स, जैसे हम होते हैं तो स्टाफ नर्स के हिसाब से शुरू किया, और फिर धीरे धीरे लगा कि नर्सिंग प्रोफेशन डे बाय डे बहुत एडवांस होते जा रहा है। जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है, तो वैसे नर्सिंग प्रोफेशन भी एडवांस होते जा रहा है, तो मुझे भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए नॉलेज के थ्रू। तो इसलिए मैं फिर नर्सिंग के हिसाब से अपने आप को, नर्सिंग और हॉस्पिटल को किस बातों की जरूरत है, ग्लोबल हॉस्पिटल जो माउंट आबू में है, तो उसको किस बातों की जरूरत है, उस हिसाब से मैंने अपने आप को नर्सिंग प्रोफेशन में अपडेट करते गई हूँ। जब 1991 में हमारा ही हॉस्पिटल ओपन हुआ था, तो ये फेजेस में हुआ था। फर्स्ट फेज में सिर्फ ओपीडी एरिया थे और इंडोर पेशेंट्स के लिए 8 बेड थे हमारे पास, और मेरे ख्याल से मिनिमम हम 4 नर्सिंग स्टाफ, हम सिर्फ 4 थे। और ऐसे हमने यहाँ शुरू किया है। फिर धीरे धीरे सेकेंड फेज में इंडोर हमारे वार्ड्स बने, ऑपरेशन थिएटर बना, आईसीयू बना, फिर ऐसे फिर नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, ऐसे होते होते आज इस पोस्ट पे फिर धीरे धीरे आई। और शुरुआत में फिर ऑपरेशन थिएटर जब हमारे ओपन हुए, हमारे पास यहाँ 4 मेजर ऑपरेशन थिएटर जो है, तो उसके लिए फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। और हमारे जो ये है डायरेक्टर जो है डॉक्टर प्रताप बिड्डा जी, उनका भी हमें हर बात के लिए मुझे बहुत सहयोग मिला कि किस प्रकार से। वो हमेशा कहते थे कि नहीं, हमें अपडेट करना है, हॉस्पिटल को आगे बढ़ाना है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको उसी तरह से फैसिलिटीज मिले, उसी प्रकार से उनकी केयर हो जो हमारी मेट्रो सिटीज में, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में होती है, वो केयर हमारे हॉस्पिटल में हम दे। न सिर्फ हम प्रोफेशन वे में दे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उसमें ऐड कर उनको हम वो केयर दें। तो किस प्रकार से हम यहाँ केयर देते हैं। और जब हमने हॉस्पिटल में हमारे आसपास के जो विलेजेस है, 20 विलेजेस को एडॉप्ट किया है, और जब उस विलेजेस से जो लोग आते हैं पेशेंट बनकर, और वो जब एकदम अच्छे बनकर जाते हैं, तो उसका जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो बहुत दिल को सुकून देता है।

0: आपके इस फर्स्ट आंसर में मुझे बहुत सारा सवाल मिल रहा है जो मैं पूछना चाहूंगा। जो सबसे पहला सवाल मेरे ध्यान में आता है वो ये कि जब चिकित्सा की बात आती है तो सबसे पहले लोग जो है उनके जहन में भी और उनके बच्चों के जहन में भी आता है कि हमें डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है। ये सवाल बहुत, मतलब मैं समझता हूँ
1: कम लोगों को आता है,
0: लोग सोचते भी नहीं है इतना। ऐसा क्यों? ये तो पहला सवाल है कि क्यों लोगों का ध्यान नर्स बनने की तरफ नहीं।
1: शुरुआत के दिनों में जब मैंने नर्सिंग की है, 1986 को मैंने नर्सिंग की थी, उस समय हम देख रहे थे कि नर्सिंग प्रोफेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि करियर वैसे नर्सिंग प्रोफेशन काफी ही हुआ है, एडवांस होते गया है। पहले नर्स माना जस्ट एक पेशेंट की केयर करना ही नर्सिंग का काम होता था। अभी ऐसे नहीं है, अभी नर्सिंग में भी काफी सारी डिग्रीज आ गई है। जैसे पहले सिर्फ रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स होते थे, अभी बीएससी नर्सिंग आया है जो टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग माना डिग्री कोर्सेज शुरू हो गए हैं कि आप नर्सिंग में मास्टर की डिग्री ले सकते हैं, अलग अलग विषयों पर है, जैसे पीडियाट्रिक नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, जनरल नर्सिंग जैसे होता है उस प्रकार से। और नर्सेस का जो सिर्फ केयर गिवर का रोल था वो चेंज होकर अभी काफी, जैसे नर्स इज एडवाइजर करके होती है, नर्स एक टीचर के रूप में आ जाती है से हम कह सकते हैं, नर्स एक लॉयर के रूप में भी आज ये हो रही है कि हम जो हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेशेंट को कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं तो कैसे उन्हें अपने आप को बीमारियों से अपना प्रिवेंशन करना है। तो हमने देखा कि नर्सिंग में अभी बहुत बड़ा फ्यूचर है और इसीलिए एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि नर्सिंग का जो डिमांड है और ऑल ओवर द वर्ल्ड नर्सिंग प्रोफेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। और पहले तो सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन में फीमेल्स ही होती थी, आपको मेल नाम मात्र दिखाई देते थे, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि जितने फीमेल्स हैं उसके ही उतने ही इक्वालिटी में आपको मेल ब्रदर्स भी दिखाई देंगे। तो एज अ करियर के हिसाब से नर्सिंग का बहुत इम्पोर्टेंस आया हुआ है। मैंने जैसे कहा कि मुझे बचपन से ही सेवा करने की आदत थी, तो एक संस्कार मेरा था ही था। और उसके बाद जब मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड में थी, तो मैं तो महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करती हूँ, तो हमें एक लेसन आता था बाबा आमटे जी का। तो बाबा आमटे जी के लेसन शायद वो बहुत बड़े समाज सुधारक होकर गए हैं, अभी उनके बेटे हैं। तो जब उनका वो लेसन पढ़ती थी तो मुझे उस समय आया कि नहीं, मुझे ऐसे कुछ बनना है। जैसे मैं बचपन में थी तो मैं कहती हूँ कि बचपन में हम सोचते हैं कि बड़े होकर हम क्या बनेंगे। तो नेचुरली मेरे फादर एयरपोर्ट कॉलोनी में रहते थे, हम लोग एयरपोर्ट में थे, तो हमें ऐसे ही लगता था कि मैं एयरहोस्टेस बनूं। लेकिन जैसे सेवेंथ स्टैंडर्ड में ये लेसन आया और मेरा पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया और मुझे लगा कि मुझे तो ऐसी सेवा करनी है कि जिन समाज ने लेप्रसी वाले पेशेंट्स को बाहर कर दिया था उनकी संभाल बाबा आमटे जी ने की थी और एट प्रेजेंट उनका बेटा प्रकाश आम्बेडकर और पूरी फैमिली उनकी कर रही है चंद्रपुर एम्स में, तो ऐसे कुछ मुझे भी सेवा करनी थी। और उस इसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने जब उनसे हमने ये किया था तो उन्होंने कहा था कि उनको नर्सेस की जरूरत थी, तो मैंने नर्सिंग में मैं आ गई। लेकिन लक्ष्य जीवन का था कि मुझे समाज की सेवा करनी है, जो व्यक्ति बीमार होता है उनकी सेवा करनी है, इस लक्ष्य से ही मैंने नर्सिंग की हुई है
0: जी। तो रूपा जी, जैसे मुझे लगता है एक चैप्टर कक्षा सातवीं की किताब का आपके जीवन के किताब की रूपरेखा ही चेंज कर दी उसने। ऐसे मुझे लगता है कितने ही महान आत्माएं होंगे जिनके जीवन के वृत्तांतों को अगर हमारे बच्चों को पढ़ने दिया जाए तो उनका जीवन भी एक बहुत महान दिशा की तरफ बढ़ सकता है। और स्पेशली विद दिस प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग, छोटे बच्चों को अगर इसमें इंटरेस्ट देना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर डॉक्टर तो सब जानते हैं, बच्चे खेलते भी डॉक्टर डॉक्टर खेलते भी है, वो एक छोटा सा कुछ कान लगा लेंगे बना करके, दे विल यू नॉट ट्राई टू, बट डॉक्टर डॉक्टर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, या ज्यादा नहीं कहूंगा, इक्वली इम्पोर्टेंट जो है केयर गिवर्स का भी हाथ होता है किसी के वापस से ठीक होने में, हेल्दी होने में। तो लोगों के अंदर इन जनरल, लेकिन स्पेशली बच्चों के अंदर, कैसे हम इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए ज्यादा जागरूकता, ज्यादा सम्मान ला सकते हैं, इसके लिए आपका क्या विचार है?
1: मुझे ऐसे लगता है जैसे 10th या 12th स्टैंडर्ड में जब बच्चे होते हैं तो उनको करियर गाइडेंस में ये बताया जाए कि नर्सिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसे प्रोफेशन है कि जिसमें आपको दुआएं, ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा मिलती है। अगर आप दिल से सेवा करते हैं तो जो हमें दुआएं मिलती है वो और किसी प्रोफेशन में आपको इजीली नहीं मिलती है जो मेडिकल प्रोफेशन में मिलती है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर्स अगर बनना चाहते हैं तो नेचुरली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए हर प्रकार से। तो लेकिन नर्सिंग ऐसे ये बीच का ये आ जाता है कि जिसमें आप आपकी जो पेशेंट की सेवा करने की इच्छा है, अपने समाज की सेवा करने की इच्छा है, वो आप पूरी कर सकते हैं। तो अगर हम उनको करियर गाइडेंस देते हैं तो इजीली बच्चे इस प्रोफेशन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हम अभी देख रहे हैं कि हमारा जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल का नर्सिंग स्कूल भी है और नर्सिंग कॉलेज भी है। स्कूल में जो 3 इयर्स का डिप्लोमा दिया जाता है जिसमें हम लोग GNM कहते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी करके, और एक होता है 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है BSc नर्सिंग। तो हम जाकर स्कूल्स में हम बताते हैं कि आप कैसे इस प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन को। और मैंने देखा है कि अभी हमारे पास इतने सारे मना आ रहे हैं कि उनकी बहुत दिल है कि हम नर्स बनकर सेवा करें, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर्स आते हैं और जस्ट हाफ एन आवर में राउंड लेकर वो चले जाते हैं, नर्सेस को ही ये होता है। एक नर्स ही होती है जो 24/365 पेशेंट के साथ होती है कंटिन्यूशन में, भले शिफ्ट वाइज हमारी ड्यूटीज होती है लेकिन नर्स होती है। तो मैंने देखा और आजकल डॉक्टर से भी ज्यादा दुआएं पेशेंट हमें देकर जाते हैं, नर्सेस को देकर जाते हुए हमने देखा कि पेशेंट्स खुद कहते हैं कि नहीं नहीं सिस्टर्स आप थे इसलिए हम ये हो गए, डॉक्टर्स तो आए और गए। तो मैं देख रही कि वो ये होता है। और जब एकदम क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको आप उस समय जो और उनकी सेवा कर वो पेशेंट जब अच्छा होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जाता है तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है ना शंतनु भाई, आप कहो कि कितनी भी सैलरी आप लो लेकिन वो सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता है, जो दुआएं मिलती है, और वो मैं तो समझती हूँ कि वो दुआओं से ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। और मैं भी अभी अपने जीवन को देखती हूँ, अगर पीछे मुड़कर जब देखती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जो भी पेशेंट्स की हमने सेवा की है उनसे हमें जो दुआएं प्राप्त हुई है वो दुआओं ने हमारे जीवन में इतने सुंदर रंग फैलाए हुए हैं। तो बहुत आनंद आता है जब हम पेशेंट की केयर करते और पेशेंट अच्छा होकर जाता है। अभी ग्लोबल हॉस्पिटल में बता कि हमारे पास एक स्माइल ट्रेन कर प्रोजेक्ट है जिसमें क्लेफ पैलेट और क्लेफ लिप के बच्चे होते हैं कि जन्मजात ये उनके ओट नहीं होते, यहाँ से कटे हुए होते हैं, अंदर का तालू पैलेट नहीं होता है, तो खाने पीने बच्चा नहीं ये कर सकता है। और जब उनकी सर्जरी होती है और बच्चा इतना सुंदर से मुस्कुराता है तो बहुत अच्छा, और माता पिता को जो एक एंग्जायटी होती है ऐसे बच्चे को देखकर, और फिर जब अच्छा हो जाता है तो इतनी सारी दुआएं वो लोग देकर जाते हैं। और मुझे याद है कि एकदम स्टार्टिंग में आई थिंक 1999 और 2000 में ऐसी एक बच्ची का हमने क्लेफ पैलेट की सर्जरी की हुई थी और 4 इयर्स बैक उसने हमारे नर्सिंग स्कूल में एडमिशन फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एडमिशन लिया था और वो नर्स बनी हुई है। तो जब ये बातें आप देखते हैं तो कितनी अंदर से जो हमें खुशी मिलती है उस खुशी का ये नहीं है। और फिर सेकेंड, अभी जैसे लास्ट 3 इयर्स में हमारे कोविड पैंडेमिक चला, कोविड पैंडेमिक में आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट्स के रिलेटिव्स पेशेंट्स के पास नहीं होते थे। ऐसे

0: पेशेंट की जो सेवा की गई है, पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया गया है, उनकी पूरी केयर की गई है, तो हमने देखा कितने सारे हमारे पेशेंट अच्छे होकर गए हैं। और हमारे जो लोकल माउंट आबू के ही जो मार्केट के पेशेंट जब मिलते हैं हमें मार्केट में, कई बार तो कहते हैं कि अरे सिस्टर आप उस समय थे, उन्होंने आपकी इतनी हमारी सेवा की, हम अच्छे हो गए, देखो आज कितने अच्छे हैं, और वापस बार बार हमें थैंक्स देते हैं, तो उसका भी एक अपना ही आनंद है इन बातों का।
1: जी, मैं तो आपकी बातों को सुनते सुनते सोच रहा था कि क्या ही हो अगर हम ऐसा इमेजिन करें एक हॉस्पिटल जहां केवल डॉक्टर्स हैं और मरीज हैं और नर्सेस नहीं है। इट विल बिकम लाइक अ मैड हाउस, मतलब उसको संभाल पाना किसी के लिए भी बस में नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हो हॉस्पिटल का। बगैर अच्छे नर्सिंग स्टाफ के उस हॉस्पिटल का सक्सेस रेट बहुत कम होगा।
0: इसलिए कहते हैं नर्सेस आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल, नर्सेस है तो ही हॉस्पिटल हो सकता है, और वो भी प्रॉपर केयर देने वाले, ऐसे नहीं कि दिल से हम जब सेवा करते हैं पेशेंट्स के।
1: नर्सेस आर द बैकबोन ऑफ एनी हॉस्पिटल। क्या ये नर्सिंग की जो भावना है या जो ये स्किल है या कला है, ये आमतौर पे हर एक में हो सकता है या केवल पढ़ाई से ही वो हमारे अंदर डेवलप होता है?
0: पढ़ाई से भी डेवलप होता है, और जैसे जैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलता जाता है तो वैसे वो स्किल आपके डेवलप होते जाते हैं। और आजकल नर्सिंग प्रोफेशन में क्लिनिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए भी हमारी बहुत सारी जैसे क्लिनिकल स्किल लैब है, जिसमें हम उनको मैनेजमेंट पर पढ़ाते हैं, जो भी पेशेंट्स के ऊपर हम केयर करते हैं। तो मैंने देखा कि उस जमाने की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है, तो ये स्किल हम डेवलप कर सकते हैं पढ़ाई के थ्रू, और कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
1: ग्लोबल हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर सेवा भावना है, मैं बहुत सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन समटाइम्स आई माइट फील कि मैं कर नहीं सकता इतने अच्छे से, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि हम उस प्रोफेशन को चूज करें, लेकिन भावना है दिल में कुछ करने की। तो अगर वो काइंडनेस है हार्ट में लेकिन वो स्किल्स की कमी है, तो मैं समझता हूँ कोई अच्छा नर्सिंग कॉलेज अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो दे विल बी इक्विप्ड, राइट?
0: या श्योर। और आजकल
1: आप जो नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं उसमें क्या क्या ऐसे हैं प्रावधान जो कि बच्चों को पता भी चलना चाहिए और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथी को भी पता चले कि नर्सिंग कॉलेज माउंट आबू ग्लोबल अस्पताल का जो है उसमें क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है और कोई भी इस प्रोफेशन को चूज कर सके?
0: जैसे मैंने कहा कि सिर्फ पढ़ाई हम जब कराते हैं तो सिर्फ पढ़ाई तो होती है, थियरी नॉलेज तो हम देते हैं, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल हम उनको स्किल लैब हम बनाई हुई है, जिसमें ऑल सारे मॉडल्स रखे हुए हैं, जैसे एनाटॉमी का है, फिजियोलॉजी का है, नर्सिंग मैनेजमेंट होती है, जिस पर जो नर्सिंग में हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, पहले हम वो मैनेजमेंट पर उनको सिखाते हैं कि किस प्रकार से पेशेंट की बैक केयर करनी है, कैसे पेशेंट को उठाकर बिठाना है, तो हर प्रोसीजर वो मैनेजमेंट पर उनको सिखाया जाता है। और जिसके कारण फिर पेशेंट माना जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, जब क्लिनिकल एरियाज में वो आ जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा गेन होता है कि पेशेंट के साथ, और क्लिनिकल एरियाज में भी हम लोग उनको बेड साइड टीचिंग कराते हैं। कई बार कैसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे मना कोई पेशेंट का मना ही है कैंसर का है, लेकिन ट्रैकोस्टोमी की हुई है यहाँ, तो ट्रैकोस्टोमी केयर हमें कैसे करनी है, तो प्रैक्टिकली भी हम उनको सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। और हमारे नर्सिंग स्कूल के जो भी है फैकल्टीज है उस स्टूडेंट्स के साथ आते हैं, प्लस क्लिनिकल एरिया में हमारे वार्ड के सुपरवाइजर्स है, हमारे नर्सिंग एजुकेटर्स है, वो सारा सिखाते हैं, तो स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब स्किल लैब में उनको सिमुलेशन करवाया जाता है हर बात के लिए। जैसे मान लो कोई पेशेंट हो या चलते हुए कोई अगर अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया बेहोश होकर, तो उसको कैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है, जिसकी भी ट्रेनिंग हम देते हैं। और ये बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग हम सिर्फ न कि हमारे स्टूडेंट्स को ही देते हैं, लेकिन कॉमन जो लेमैन है उनको भी हम ये ट्रेनिंग

0: देते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट की, कि कैसे चलते फिरते अगर कोई बेहोश होता है तो कैसे आपको CPR करना है, किस प्रकार से करना है, तो उसके हमारे पास स्किल लैब में सारे मैनिक्विंस है, तो उनके ऊपर हम उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हर प्रोसीजर्स के लिए होती है। तो जब स्टूडेंट्स हमारे साथ क्लिनिकल एरियाज में आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस गेन होता है। सबसे पहले तो हम हमारे स्टूडेंट्स को IV कैनुलेशन, कभी क्योंकि कोई भी पेशेंट जब बीमार होता है तो सबसे पहले उनको IV फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, तो वो IV कैनुलेशन कैसे लगाना है, किस प्रकार से होता है, उसकी उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए हमारे पास नीचे हमारे नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेज में भी लैब्स बनी हुई है, स्किल लैब, प्लस हमारे क्लिनिकल एरियाज में भी स्किल लैब बनी हुई है जिसमें हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन कराकर दिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तो जिसके कारण मुझे लगता है कि उस वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और स्किल अपने आप डेवलप हो जाता है उनमें, स्टूडेंट्स में भी।
1: तो जहाँ कॉन्फिडेंस की बात आती है, मुझे आप पूछना है आपसे आपका पहला केस, जब आप फर्स्ट टाइम आफ्टर स्टडी हॉस्पिटल में एंटर किए और आपको बोला गया कि भाई दिस इज द पेशेंट जिसका आपको ख्याल रखना है, क्या वो बहुत डिफिकल्ट केस था या कैसा था आपका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस विद योर फर्स्ट पेशेंट?
0: मेरा फर्स्ट पेशेंट जो बना माउंट अबू आने की मैं बात कर रही हूँ, कि जैसे एक जो पेशेंट आया था विलेज से आया हुआ था और जिसका हीमोग्लोबिन था 2 ग्राम सिर्फ, जो नॉर्मल 2 ग्राम जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल मेल पेशेंट्स में होना चाहिए वो होता है 14 के ऊपर होना चाहिए, जो उसका 2 ग्राम, और ये विलेज के पेशेंट चलकर आया हुआ था और वो बिल्कुल एडमिट होने के लिए रेडी नहीं था। वो कह रहा था कि नहीं, मुझे एक बना इनकी लैंग्वेज में कह रहा था कि एक बाटला चढ़ा दो मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि जब विलेज के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो ना वो फिजिकली बीमार होते हैं लेकिन फाइनेंशियली भी उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में काफी लेट पहुंचते हैं। और ये जब पेशेंट हमारे पास आया उसको काफी हमने काउंसलिंग करवाई कि भैया तुम्हें एडमिट होना कितना जरूरी है, जब आप एडमिट हो जाओगे आपको फिर हम जांच करवाओगे, आपको ब्लड हमें खून देना पड़ेगा, खून की जांच होगी, क्योंकि आपको कभी भी अगर 2 हीमोग्लोबिन में तो आप ये नहीं हो सकते हैं। पेशेंट के वाइफ को बहुत समझाया और करीबन 2 घंटे हमें लगे उस पेशेंट का काउंसलिंग करने के लिए, और जाकर फिर वो पेशेंट एग्री हो गया कि हाँ चलो भाई मैं ये हो जाता हूँ, एडमिट हो जाता हूँ। हमने कहा आप एडमिट हो जाओ, आपकी सारी जिम्मेवारी हम लेंगे। ऐसे करके जब वो एडमिट हो गया उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, और फिर 8 डेज के बाद हमारा पेशेंट अच्छा हो गया, नियर बाय उसका हीमोग्लोबिन 8-10 के आसपास आया, थोड़ा अच्छा हुआ। न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस उनको बताया कि क्या खाना चाहिए, जो भी अवेलेबल है उसमें से आप क्या डाइट अपना ले सकते हैं, कि जरूरी नहीं है आपको बड़ी अच्छी अच्छी ड्राई फ्रूट्स ही खानी है, लेकिन जैसे ग्राउंड नट्स और जैगरी खाकर आप कैसे अपने आप को ये करा सकते हैं, और जो भी आपके खेती में जो अवेलेबल है वो आपको खाना है, तो न्यूट्रिशन का भी डाइट दिया। और साथ साथ उनको हमने ये भी किया, मेडिटेशन भी सिखाया, कैसे इम्पावर अपने आप को करना है। तो हमने देखा कि 8 डेज के बाद बहुत सेटिस्फाई होकर वो पेशेंट गया और बहुत दुआएं देकर गया। तो वो फर्स्ट केस मेरा 1991 का है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी से याद है।
1: ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुड़ मूंगफली खिलाना तो एक बात है, लेकिन आपने गुड विशेस भी उनको दिया हाँ। भी सिखाया है। हाउ डू यू थिंक देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन मेडिटेशन एंड नर्सिंग जो आप कर रहे हैं, जो लोगों की देखभाल करना है, उसमें मेडिटेशन क्या रोल प्ले करता है? क्या आपको भी मेडिटेशन करने से मदद मिल रही है और या पेशेंट को भी करना जरूरी है? कैसे आप उसको समझाएंगे हमारे श्रोताओं को?
0: नहीं, दोनों बातें, नर्सेस को तो करना जरूरी है मेडिटेशन, क्योंकि कई बार इतना वर्कलोड माना स्ट्रेस होता है नर्सेस को, कि नर्सेस का माना जैसे आप देखोगे तो शॉर्टेज ऑफ नर्सेस हमेशा हर हॉस्पिटल में आप देखते हैं, और वर्कलोड ज्यादा है तो कई बार नर्सेस हमारी स्ट्रेस पे होती है, और हम देखते हैं इतना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे

0: इनर पावर्स डेवलप हो जाती है। तो जिस काम के लिए हमें 15 मिनट या आधा घंटा लगने वाला होता है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो काम हमारा 10 मिनट में पूरा हो जाता है। तो हमने देखा कि मेडिटेशन से बहुत हमें फायदा होता है। और पेशेंट को जब हम मेडिटेशन सिखाते हैं कि जिसमें हम यही कहते हैं कि अपने आप के लिए कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसके माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी आती है। और मैं अगर ये हुआ, मैं घर का हेड हूँ, मुझे ही कुछ हो गया, मैं ही मर गया, तो कैसे होगा, क्या हो, कैसे होगा, क्या होगा, तो वो सारी चिंताएं उनको काफी इन बातों का स्ट्रेस होता है। और जब हम मेडिटेशन उनको सिखाते हैं तो उनको उससे हमने देखा काफी रिलीफ मिलता है। ऐसे तो पहले हम मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों बातों का हम लोग बैलेंस रखकर पेशेंट को यहाँ हीलिंग में बहुत हेल्प हो जाती है। और मेडिटेशन अगर नर्सेस भी करती है तो नेचुरली नर्सेस के ऊपर वो स्ट्रेस उनके फेस पर नहीं दिखाया जाता है। वी स्माइल वो पेशेंट को अटेंड करती है। ऐसे नहीं है कि अरे बाप रे अभी तो इतना सारा काम पड़ा है क्या करूं, नर्स की टेंशन में आ जाएगी तो वो कैसे करेगी। तो हम हमारे नर्सेस को भी यही सिखाते हैं, ऑलवेज वेलकम पेशेंट विद अ स्माइल, आपके स्माइल से ही वो ये हो जाएगा। और जस्ट लिसन टू पेशेंट। आजकल के इसमें क्या हो रहा है कि लिसनिंग बहुत लोग काम करते हैं, लिसनिंग करना पसंद नहीं करते, सिर्फ बोलना है। लेकिन जब हमने देखा पेशेंट से ज्यादा हम देखते पेशेंट के रिलेटिव जो होते हैं, उनकी जब बात हम सुनते हैं तो आधी बीमारी हम देखते हैं कि वही उनकी कम हो जाती। उनको ये तो लगता है कि बाबा हाँ सिस्टर ने मेरी बात सुनी है। पेशेंट कई बार इतना ही नहीं करता, लेकिन रिलेटिव्स को जब हम प्यार से समझाते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, तो काफी उसमें हमने देखा है कि हीलिंग में बहुत अच्छा ये हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव्स की भी पॉजिटिव थिंकिंग होना शुरू हो जाती है। रिलेटिव्स को भी हम के पॉजिटिव रहो, कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, वो भी हम उनको सिखाते हैं मेडिटेशन में। तो हमने देखा कि पेशेंट्स के हीलिंग में काफी हेल्प हो जाती है।
1: ये आपने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पहलू बताया कि मेडिटेशन से नर्सेज जो है वो स्ट्रेस फ्री और मोर स्माइलिंग होकर के सेवा करती हैं, और साथ ही साथ पेशेंट्स पे भी उनका ध्यान ज्यादा सहज जाता है। लेकिन जो पेशेंट्स के साथ उनके परिवार वाले आते हैं, उनकी बात जो है वो मेरे जहन में एकदम से नहीं आई थी, लेकिन हाँ मुझे अभी रियलाइज होता है कि जितना परेशान खुद मरीज होता है उसके आस पड़ोस वाले इससे ज्यादा परेशान होते हैं। कई बार क्या होता है उसे ये नहीं बताया करके कि भाई कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा, दे ऑल्सो स्टार्ट पैनिकिंग। उनको बहुत पैनिक होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, और ऐसे में उनको संभालना एक और जिम्मेवारी होती है जो नर्सेस के ऊपर बगैर रिटर्न आ ही जाती है, क्योंकि नर्सेस को ही उनसे डील करना होता है। वही पेशेंट के परिवार वाले बार बार पेशेंट से मिलने आते हैं। तो आई थिंक दिट्स अ वेरी वैल्यूएबल पॉइंट कि नर्सेस का काम केवल मरीज तक सीमित नहीं रहता बट उनके परिवार वालों तक भी जाता है, इसलिए उनका मानसिक संतुलन, उनका भावनात्मक दृढ़ता, ये सब बहुत आवश्यक पहलू हैं किसी सफल नर्स के पीछे। आपके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जस्ट केवल एक नर्स नहीं बट रूपा दीदी बनाते हैं?
0: सिर्फ ऐसे ये नहीं है, कई बार जैसे मुझे एक बार ऐसे में काफी बिजी थी और एक बहन मुझे मिली जो सर्जरी करने के लिए थोड़ा कंफ्यूज माइंड में थी कि सर्जरी मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उसकी बातें सुन ली और उसको एक्सप्लेन किया कि सर्जरी करना कितना इम्पोर्टेंस है आपके लिए, जरूरी है इस समय, थोड़ा एक्सप्लेन किया अपने आप को। हालांकि अंदर से उस समय मुझे हो रहा था कि अरे भाई मेरा वो काम रुका पड़ा है, लेकिन इस बहन को मैं समझा रही थी। लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो रही थी तो उसने मुझे स्पेशल मैसेज दिया कि मेरे को मिलने के लिए आप आओ, और मैं जब मिलने के लिए गई तो उसने मुझे बहुत थैंक दिया और कहा कि अगर आप उस दिन मुझे नहीं समझाते थे तो मैं ऑपरेशन नहीं करने वाली थी। और तब से फिर मैंने एक अपने आप को एक किया कि नहीं, हम मुझे पेशेंट्स की बातें भी सुनकर लेनी है और पेशेंट्स रिलेटिव्स को भी ये करना है। तब से मैंने अपने आप में ये लिसनिंग वाला जो मैंने पॉइंट सुनाया कि हमें लिसनिंग करना बहुत जरूरी है, तो वो मैंने देखा कि हमारे अगर लिसनिंग से, हमारे कहने से अगर किसी का ये होता है

0: अपने नॉलेज को भी, प्रोफेशनल नॉलेज को भी हमें अपडेट करते रहना चाहिए। और इसका मैं एक इंसिडेंस आपको सुनाना चाहती हूँ। 2016 में आपको पता है कि माउंट अबू हमारा हिल स्टेशन पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है। तो 2016 में एक ऐसे ही वर्कशॉप का ये आया कि हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन रेस्क्यू, ये कराकर इस विषय पर वर्कशॉप होने वाला था। और ये वर्कशॉप ओली उत्तराखंड में ITBP के जवान, इंडो तिब्बतियन बोर्ड पुलिस के जवान, उनके साथ ये होने वाला था। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे ये वर्कशॉप में जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए क्योंकि हम माउंट अबू पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, और कई बार यहाँ मास कैजुअलिटीज आती है कि वैलीज में कई बार बसेस गिर जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो कैसे उस समय विक्टिम्स को हमें बचाना चाहिए, तो उसके लिए मैं और मेरे साथ एक बहन थी, हमारी हॉस्पिटल की नर्स बहन शोभा शर्मा करके, तो उसके साथ हम दोनों ये ट्रेनिंग के लिए वहां गए। और वो अभी जैसे ट्रेनिंग के लिए 1 वीक है, तो हमें मैसेज आया कि इस ट्रेनिंग का जो ये है ड्रेस कोड है, दैट इज अ ब्लैक ट्रैक सूट है, क्योंकि नेचुरली उत्तराखंड औली में होने वाला था ये ट्रेनिंग। तो मैंने फिर वहां ये कहा कि हमारा जैसे ये ड्रेस है, तो मैंने कहा कि सर हमारा तो ये वाइट ड्रेस है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन का ये वाइट ड्रेस है, तो मैं अपने ड्रेस में रहूंगी और प्लस मैं अपना ये करूंगी कि थियोरी नॉलेज में अटेंड करूंगी, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं नहीं अटेंड करूंगी ऐसे कराकर। और वहां हमारा एक, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी और वहाँ मेडिटेशन का एक उनका ये हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था कि हम जैसे मेडिटेशन करते हैं तो कैसे हमारी इनर पावर्स डेवलप होती है और कैसे हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। तो हमारा एक सेशन चल रहा था, प्रैक्टिकल सेशन की रैपलिंग का, कि कैसे रस्सी के सहारे आपको उतरना है नीचे, पहाड़ से नीचे उतरना है। तो ऐसे ही एक जवान ने कहा जब चल रहा था, तो कि मैडम आप कहते हैं कि मेडिटेशन से आप, आपकी इनर पावर्स डेवलप हो होती है, तो आप ये रैपलिंग नहीं कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, आप परमिशन लेकर दीजिए, मैं रैपलिंग करूंगी, क्यों नहीं, मुझे इस ड्रेस पे परमिशन दीजिए। और मैंने साड़ी पे रैपलिंग किया और वो मेरा एक ये बन गया कि साड़ी पे रैपलिंग करने वाली, मना अनजाने में भी तो ये हो गया कि जस्ट एक हिम्मत दिखाई और कर दिया। और फिर नहीं,
1: लेकिन आपने जो अभी हमारे श्रोता साथियों को बताया नहीं, वो ये कि आप आपने केवल कोर्स ही पूरा नहीं किया, लेकिन आप हाई एटीट्यूड मेडिकल रेस्क्यू ऑपरेशंस में भारत की पहली महिला मेडिकल नर्स हैं। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि माउंट आबू में आप हमारे साथ रहते हैं और आप भारत की वो पहली महिला नर्स है जो हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करते हैं। इट्स सच अ बिग ऑनर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट।
0: सिर्फ एक ही है कि मुझे अपना नॉलेज अपडेट रखना है अपने प्रोफेशन के प्रति, वही एक बात। तो इसलिए मैं हमेशा हमारे स्टाफ को भी, नर्सेस को भी, स्टूडेंट्स को यही कहती है कि हमेशा विलिंगनेस टू लर्न होना चाहिए। ऐसे नहीं हमें अच्छा जॉब मिल गया अभी हम सेटल हो गए, नहीं, हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए इस बात को। और इसी कारण मैं फर्स्ट नर्स बनी हूँ, और ये तो परमात्मा की, सुप्रीम सर्जन की ही कमाल है कि उसने ये सारा कार्य करवा लिया।
1: सुप्रीम सर्जन को भी एक बहुत स्वीट नर्स की आवश्यकता होगी।
0: वो तो है। और अभी भी माउंट आबू में मॉनिटरिंग के लिए जो आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए हम यहाँ स्पेशल बेसिक लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो उनको भी लगता है अरे वाह, ब्रह्मा कुमारी ये नर्स बैन होकर और ये हाई एल्टीट्यूड का इसने ट्रेनिंग किया हुआ है, तो ये कमाल ही, जस्ट एक मैजिक।
1: मुझे लगता है आपका जो ये एक्सपीरियंस है हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू मिशन में सपोर्ट देने का, इसको सुनते हुए कितने ही ऐसे हमारे श्रोता साथी होंगे जो कि नर्सिंग प्रोफेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होंगे। इनडायरेक्टली मतलब उनके दोस्त या उनके भाई बहन आदि सुन होंगे जो नर्सिंग प्रोफेशन में होंगे। हो सकता है आपकी स्टोरी से वो इंस्पायर होकर के उन्हें प्रेरणा दे या वो खुद प्रेरणा ले कि मुझे भी इस तरीके का कोई कोर्स करना है। ऐसे जगहों पे, स्पेशली माउंटेनियस या लैंडलॉक्ड एरियाज में, लोगों को सच में बहुत आवश्यकता होती है प्राइमरी हेल्थ केयर की और प्रॉपर नर्सिंग की। और ऐसे में अगर कोई सामने आता है तो वो उनके लिए तो फरिश्ता ही होता है।
0: और ये वो बहुत

0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का एंड दैट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ मेरे मना इस नर्सिंग प्रोफेशन में वो जैसे ट्रेनिंग मेरे टर्निंग पॉइंट रही है. जैसे सेवेंथ स्टैंडर्ड में जो टर्निंग पॉइंट था उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट रहा जैसे कि हम लोग जैसे इस सिक्स सिग्मा कर जो गया है उनके साथ ये एक एनजीओ है उनके साथ मैं जुड़ी थी. तो जैसे केदारनाथ है बद्रीनाथ है तो यहाँ हमारी मेडिकल टीम जाती है और वहाँ फ्री सर्विसेज हम भक्त लोगों को मेडिकल सर्विसेज देते हैं. तो ऐसे दो बार वहाँ केदारनाथ में भी फ्री मेडिकल सर्विसेज दी और जिसके कारण फिर ये रहा कि अपने जो प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी थे उनके थ्रू हमें सिल्वर मेडल दिया गया था. हमारी टीम को सभी को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था. तो हाई एल्टीट्यूड में सेवा करने का अपना अलग ही मजा है और ग्लोबल हॉस्पिटल में तो हम इस प्रकार से इतनी सारी सेवाएं यहाँ चलती है. मैंने कहा ना जैसे 20 विलेजेस आसपास के एडॉप्ट किए हैं तो उस विलेजेस से जो लोग आते हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स वहाँ चलते हैं जैसे न्यूट्रिशनल प्रोजेक्ट है फिर वुमेन्स के लिए एम्पावर करने के लिए उनको कैसे ये करना है मेनस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर उनको ये करना है. डेली हमारी एम्बुलेंस जाती है वहाँ उनको हेल्थ एजुकेशन के साथ उनकी स्क्रीनिंग भी होती है. अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है. तो इस प्रकार से यहाँ सेवाएं चल रही है माउंट आबू हॉस्पिटल.
1: रूपा जी मैं आपसे एक सवाल यहाँ इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि जैसे आपने बताया कि कई ऐसे पहलू होते हैं हेल्थ से जो कि बहुत जेंडर स्पेसिफिक होते हैं जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन हुआ या देर आर सर्टेन अदर इश्यूज जो कि बहुत जेंडर स्पेसिफिक होते हैं. लेकिन जब एक नर्स की तरह आप जाते हैं तो क्या कभी आपको या आपके स्टूडेंट्स को या आपके साथ काम करने वाले नर्सों को इस प्रकार की सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जहां पर जेंडर डिफ्यूजन है. मान लीजिए कोई मेल है और उसको कोई फीमेल नर्स सपोर्ट कर रही है या कोई फीमेल पेशेंट है उनको कोई मेल नर्स सपोर्ट कर रहे हैं और वो जेंडर वाली बात आ जाती है वो आप कैसे डील करते हैं?
0: शुरुआत में हमें इस बात की काफी प्रॉब्लम्स आती थी यहाँ लेकिन जैसे अभी तो हम देखते हैं और पेशेंट्स भी हम देखते हैं कि अगर फीमेल है क्योंकि यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो लोग काफी ये होते हैं कि उनको मेल नर्सेस वगैरह टच नहीं कर सकते हैं. तो हमने तो कॉम्बिनेशन रखा हुआ है हमारे पास कुछ मेल नर्सेस भी है तो फीमेल जिनको फीमेल की ये होती है तो हमारी फीमेल नर्सेस ये होती है. क्योंकि जैसे यहाँ जैन मुनि का दिलवाड़ा टेम्पल है तो जैन मुनि जो होते हैं वो फीमेल्स को ये नहीं कराते हैं तो हम देखते हैं तो हमारे उस समय मेल नर्सेस अटेंड करते हैं और फीमेल के लिए फीमेल पे करती है. लेकिन एट प्रेजेंट मैं देख रही हूँ कि ये इतनी हमें प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है. मेल और फीमेल इकट्ठा ये होती है इवन फीमेल्स भी हमारे मेल नर्सेस को बहुत अच्छे प्यार से ये कराती उनसे ट्रीटमेंट करा कर लेती है. हाँ जहाँ जैसे इंजेक्शन का ये है या ड्रेसिंग का ये होता है तो उस समय हम फीमेल ही प्रोवाइड करते हैं. वो हमने हमारी एक पॉलिसी बनाकर रखी है हॉस्पिटल की. तो अभी ये बातों
1: के ऐसे में मान लीजिए एक रेगुलर जो नर्सिंग के एक्सपीरियंस्ड हैं और आप जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से भी आते हैं क्या आपको लगता है ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है जब आप अपना सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लोग आपको एक अलग तरीके के नजर से देखते हैं क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है?
0: हाँ बहुत उनको अच्छा लगता है स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होने के कारण ना कि वो लोग कहते हैं कि आप आकर हमें मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग ग्राउंड्स पर मैं जाती हूँ. तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के कारण बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एक हमारी भावना जो होती है कि दिल की जो भावना शुभ भावना होती है कि हमारे पेशेंट जल्दी अच्छे हो जाए उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो नेचुरली वो गुड विशेष उनको टच हो जाती है. तो बहुत रिस्पेक्ट की भावना से एज ए नर्स और रिस्पेक्ट की भावना से भी देखते हैं. और कई बार अगर हम उनको दिखाई नहीं दिए तीन चार बार अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट है वो ज्यादा दिन रह रहा है हॉस्पिटल में उसको रुकना पड़ रहा है तो वो हमें कहेगा अरे सिस्टर आप कहाँ थे तीन चार दिन आए नहीं है. हमारे नर्सिंग स्टाफ को भी इस प्रकार कहते थे अरे सिस्टर कल आप कहाँ थे आए नहीं है अगर छुट्टी होती है. तो इस प्रकार से तो अच्छा लगता है हमारा एक रिस्पेक्ट की भावना आजकल काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है एज अ स्पेशल के हिसाब से.
2: मैं तो खो ही गया उसमें और मुझे समय का पता भी नहीं चला लेकिन हम दोबारा आपसे जुड़ना चाहेंगे और हम दोबारा आपसे कई सारे सवालों के साथ रूबरू

करना चाहेंगे। बहुत कुछ है जानने को दोस्तों, शेयर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। एक और एपिसोड में यशस्वी भारत के हम मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आरजे शांतनु को, रखिए ध्यान अपना, अपने परिवार वालों का, और हाँ देश का भी। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 90.4 FM रेडियो।

उनके प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

0: के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: ओ टूना
3: क्या रे,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए,

0: डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए लेकिन वो एक नए तरह से जाए। तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेक।

विवेकानंद के बचपन की कथाओं में उनका साहस, स्वाभिमान, तर्कपूर्ण मस्तिष्क और बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। बचपन के गुणों को देखकर भावी मंगलमय जीवन का भी एक सुंदर पूर्वाभास पाना संभव होता है। कम से कम नरेंद्रनाथ के संबंध में ये बात निसंकोच कही जा सकती है। नरेंद्र की सुगठित सुंदर देह थी, दोनों नेत्र बड़े बड़े और उज्जवल थे, गौर वर्ण, अंग प्रत्यंग लावण्य मंडित और मुख मंडल पर प्रतिभा की दीप्ति, देखते ही प्यार करने की इच्छा होती।

0: बचपन में नरेंद्र को अपने साथियों के साथ शिव का ध्यान करने का खेल बहुत पसंद था। उनके साथी भी उनके साथ बदन पर राख मलकर आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाते थे। एक दिन सब बच्चे ऐसा ही खेल रहे थे, अचानक एक बच्चे ने आंख खोलकर देखा कि सामने एक काला नाग फन फैलाए हुए है। उस बच्चे के मुंह से चीख निकल गई।
1: सांप, वो देखो, सांप, वहाँ भागो, भागो, भागो, सांप, सांप, भागो, भागो, भागो, भागो।
2: पर नरेंद्र का ध्यान नहीं टूटा, वो वहीं बैठा रहा। बच्चों की चीख पुकार सुन बड़े बुजुर्ग दौड़े आए। उन लोगों ने आकर अत्यंत भयावह दृश्य देखा। आंखें मूंद कर बालक बैठा है और उसके सामने विषैला सांप भयंकर फन फैलाए डोल रहा है। देखकर प्राण सूख गए, सांसें थम गईं। आवाज करने पर सांप बालक को डस सकता था। इस भय से निरुपाय हो सभी चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो सांप स्वयं ही कहीं चला गया। ढूंढने पर भी वो सांप नहीं मिला। माता बेटे से लिपट गई और कहने लगी,
3: बेटा बेटा बिले, तू ठीक तो है ना? हाँ, तेरे दोस्तों ने तुझे इतना जगाया, तू उनके साथ भागा क्यों नहीं? बोल बोल, तू भागा क्यों नहीं?
4: क्या हुआ माँ, तुम सब लोग यहाँ क्यों भीड़ लगाए खड़े हो? तुम लोग रो क्यों रहे हो? ए ए ए नेताई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ?
3: बिल्ले, तुझे क्या सचमुच होश नहीं था? हाँ, अरे इतना बड़ा सांप तेरे सामने फूंक

0: आ रहा था और तू आंखें मूंद कर बैठा था। बोल
1: सांप कहाँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला।
0: हे भगवान, हे शिव शंकर, आज तुमने मेरी बेटे की रक्षा की है भगवान। ऐसे ही कृपा बनाए रघुनाथ देव।

0: नरेंद्र बचपन से ही अपने हम उम्र साथियों के साथ नई नई जगह जाने के लिए तैयार रहते थे। चाहे वो मकर संक्रांति के दिन गंगा किनारे जाकर दीप जलाकर पानी में बहा देने की बात हो या कोई मेला देखने जाना हो। दूसरों की मदद के लिए बालक नरेंद्र हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन जब वे सिर्फ 6 साल के थे, अपने दल बल के साथ चैत्र संक्रांति में होने वाले शिवजी का मेला, जिसे गाजन का मेला कहते हैं, देखने गए थे। लौटने में शाम हो गई थी। नरेंद्र मेले से खरीदी हुई शिवजी की मूर्ति हाथ में लिए जल्दी जल्दी घर वापस आ रहे थे। कुछ साथी पीछे रह गए थे। अचानक पीछे शोरगुल सुनकर नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा, उसका एक दोस्त हक्का बक्का सा सड़क के बीचों बीच खड़ा है और एक बग्घी तेजी से उसकी तरफ बड़ी चली आ रही है। कोचवान घोड़े का रास पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है, पर घोड़ा है कि बड़ा ही चला आ रहा है।
1: ए बच्चा, ए हट जा रे, ओ हट जा, हट जा, हट जा, और देख रही यहाँ घोड़ा बेकाब हो गया है, हटो हटो सब, हट जाओ यहाँ से।
2: अरे गया, ये तो गया, अरे गया,
0: सब चिल्ला रहे थे, पर कोई आगे बढ़कर उस बच्चे को बचाने नहीं आ रहा था। नरेंद्र ने देखा, झट हाथ में धरी मूर्ति को किनारे पर रखा और बीच सड़क पर कूदकर अपने साथी को एक झटके से किनारे खींच लिया। बग्घी तेजी से निकल गई। भीड़ अवाक होकर देखती रही।
3: क्या कर रहा था बीच सड़क में? मरना था क्या? अब रो क्यों रहा है? वो घोड़ा तो गया। चल अब घर चल। ले ले मेरा हाथ पकड़। अरे अरे रुक तो जरा, मेरी मूर्ति तो उठा लूं। अब चल।
4: शाबाश बेटे, तुमने तो उसकी जान बचा ली, न जाने क्या हो जाता आज।
5: वाह, बहुत बहादुर हो, किसके बेटे हो भाई?
3: विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ, अब खड़ा क्यों है? चल ना।
0: घर आकर नरेंद्र ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ सांस रोककर सारी घटना सुनती रही, फिर बार बार भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देती रही।
6: हे भगवान, हे शिव शंकर, तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया भगवान। बिले, आज कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था, तुझे अंदाजा भी है? तुम दोनों को वो घोड़ा कुचल भी सकता था बेटा।
3: माँ, मैंने अपने दोस्त को बचाकर क्या कोई गलती की?
6: ओह मेरे वीर पुत्र, नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, पर माँ का दिल है ना, हमेशा डर लगा रहता है। बेटा, तुमने तो सच्चे इंसान का काम किया है, हमेशा ऐसे ही इंसान बने रहना। तुम्हें मालूम नहीं बेटा, उस बच्चे की माँ आज तुम्हें कितना आशीर्वाद दे रही होंगी। कितना आशीर्वाद आज मिला है तुझे। ओ बेटा, बेटा मेरा, राजा बेटा, राजा बेटा मेरा।

0: नरेंद्र के साहस और तत्परता के कई किस्से हैं। एक बार जब वे 7-8 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ नाव से चांदपाल घाट से मटिया बुर्ज स्थित लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का चिड़ियाघर देखने गए। लौटते समय एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसने नाव में उल्टी कर दी। इससे नाराज होकर मल्लाहों ने उस लड़के को नाव साफ करने को कहा। लड़के ने किसी दूसरे से नाव साफ करवा लेने की बात कही, दुगना भाड़ा देने का वादा भी किया, पर मल्लाहों ने जिद नहीं छोड़ी, गाली गलौज करने लगे और किनारे पर आकर कहा,
1: कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले नाव साफ करो फिर किनारे लगाएंगे, किसी को उतरने भी नहीं दूंगा।
2: बात झगड़ा और मारपीट में बदलने की नौबत आ गई। घाट के दूसरे मल्लाहों को भी इन मल्लाहों का साथ देते देख लड़के घबरा गए। नरेन उन सभी से उम्र में छोटा था, पर वो छलांग लगाकर किनारे पर आ गया और बचने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसने दो गोरे अफसरों को उधर आते देखा। नरेन बिना घबराए उनकी तरफ दौड़ा और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा,
3: कम कम कम, सेव सेव बोट, फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, सेव सेव सेव।
2: गोरों ने परिस्थिति भांप ली और इस सुदर्शन बालक को स्नेह पूर्वक अंग्रेजी में कहा,
1: ओके ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर।
2: गोरों का हाथ पकड़कर नाव की ओर ले चले। गोरों को देखकर ही मल्लाह डर गए और बिना कुछ कहे नाव किनारे लगा दी। बच्चे उतर गए। गोरों ने प्रसन्न होकर नरेन को प्यार से कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जाना चाहा, पर नरेन उसने मना कर दिया और कहा,
1: ओके ओके ओके किड, नाइस टू मीट यू, यू आर सच अ ब्रेव बॉय।
3: थैंक यू थैंक यू, लेट मदर, वेट वेट, गोइंग गोइंग गोइंग,
1: बाय बाय,
3: थैंक यू।
2: और साथियों के साथ घर लौट आए।
0: एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगी। नरेंद्र जब 12 साल के थे, तब इंग्लैंड के भावी राजा प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में सम्राट सप्तम एडवर्ड कहलाए, भारत दर्शन के लिए आए थे। उसी समय सिरापिस नाम का एक विराट जंगी जहाज कलकत्ते के बंदरगाह में आ रुका। नरेंद्र और उनके साथियों ने तय किया कि वे उस जहाज को देखने जाएंगे, पर उसे तो यूं ही नहीं देखा जा सकता। चौरंगी क्षेत्र में एक साहब अफसर के दफ्तर से अनुमति पत्र निकलवाना होगा, तभी जहाज में चढ़ा जा सकेगा।
2: नरेंद्र दलबल समेत चौरंगी पहुँचे, दफ्तर ढूंढ निकाला। सामने ही एक विशाल काय मूछ वाला दरबान बैठा था। उसने बच्चों की टोली से पूछा,
4: यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है, क्या चाहिए, चलो हटो यहाँ से, साहब लोगों के आने जाने का रास्ता है ये, हट जाओ वहां से।
3: दरबान जी, हमें अंदर जाने दो ना, हमें साहब से जहाज देखने की पर्ची भी तो निकलवाना है।
4: कह दिया ना नहीं, अभी साहब नहीं मिल सकते, काम कर रहे हैं, जाओ निकल जाओ यहाँ से, बाद में आना।
3: बाद में मिलकर क्या करूँगा, जहाज तो कल चला जाएगा।
4: तो हम क्या करें, जाएगा तो जाने दो, तुम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, कह दिया ना, चलो चलो जाओ, सभी जाओ यहाँ से।
3: और लोग भी तो जा रहे हैं, हमें ही क्यों रोक रहे हो।
4: बहस मत करो, बच्चे हो बच्चे की तरह रहो, नहीं जाना है तुम्हें, बस।
0: नरेंद्र आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने देखा लोग दो मंजिल के एक कमरे में जा रहे हैं और पर्ची लेकर वापस आ रहे हैं। वह समझ गया साहब दो मंजिल के कमरे में बैठे हैं। उसने और भी देखा, उस कमरे तक जाने के लिए मकान के पीछे से लोहे की घुमावदार एक सीढ़ी भी है। उसने साथ

0: से कहा,
1: चलो चलो चलो सब, दरबान जी मना कर रहे हैं तो चले जाओ।
2: बस
1: तुम लोग कुछ दूर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया।
2: दूसरे बच्चे दूर जाकर खड़े हो गए। नरेंद्र चुपचाप पीछे वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और आवेदकों के दल में सम्मिलित होकर पंक्ति में लग गया और बारी आने पर साहब के कमरे में घुस गया। साहब माथा झुकाए आवेदनों पर दस्तखत करते जा रहे थे। नरेंद्र ने आवेदन साहब के सामने रखा, हस्ताक्षर हो गया। वो चुपचाप सामने की सीढ़ी से नीचे उतर आया और दरबान के सामने आवेदन फहरा कर कहा,
1: ये देखो मिल गई ना अनुमति, बड़े आए थे रोकने वाले।
3: ए छोकरा, तुम कैसे ऊपर आ गया बताओ?
1: हम जादू जानता है।
2: सब बच्चे हंसते हुए दरबान को मुंह चिढ़ाते हुए जहाज देखने चले जाते हैं।
0: नरेंद्र नाथ के सोने की क्रिया भी अद्भुत थी। दूसरों की तरह सिर तकिए पर रखते ही वे सो नहीं जाते थे, उन्हें पेट के बल सोने की आदत थी। आंख मूंदते ही वे अपने भौहों के बीच एक अपूर्व ज्योति बिंदु देखा करते थे। यह बिंदु धीरे धीरे बढ़ता और क्रमशः अंडे का आकार धारण कर लेता और अचानक फटकर रंग बिरंगे तारों की तरह बिखर जाता और चारों दिशाओं को आलोकित कर बालक को ज्योति सागर में डुबो देता था। उस आलोक सागर में डूबते डूबते वे सो जाते।
2: हर रात ऐसा ही होता था। वो सोचते थे कि शायद हर आदमी को नींद ऐसे ही आती है, इसीलिए इस अति साधारण दैनिक घटना का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था। बहुत दिनों बाद बड़े होने पर एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा था,
1: क्यों भाई, सोने से पहले क्या तुम्हें एक ज्योति दिखाई देती है?
4: नहीं तो?
1: मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ। बिस्तर पर लेटते ही सो मत जाना, कुछ देर आंख मूंद कर ध्यान करना, तुम्हें भी दिखाई देगी।
2: उस मित्र को ज्योति दिखी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, पर बाद में सन 1882 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इस ज्योति दर्शन की बात सुनकर कहा था,
5: जो लोग ध्यान सिद्ध होते हैं वे ही इस प्रकार की ज्योति देख पाते हैं।

0: बचपन से ही नरेंद्र अपने हम उम्र साथियों के साथ तरह तरह के खेल और दूसरे बाल सुलभ क्रियाकलापों में जुटे रहते। हमेशा वे ही इन सभी आयोजनों के नेता होते। उनका नेतृत्व गुण बचपन से ही देखा गया था। उनसे उम्र में बड़े बच्चे भी उन्हें निर्विवाद नेता मान लेते थे। वे अपने दल के साथ कभी घूमने जाते, कभी खाना पकाने का खेल खेलते, कभी घर के आंगन में ही नाटकों का मंचन करते। ज्यादातर रामायण या महाभारत के प्रसंगों का खुद ही नाट्य रूपांतर करते और साथियों के साथ मिलकर मंचन करते।
1: हनुमान जी के प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय लगते थे। वे अक्सर लंका दहन, गंधमार्दन पर्वत कंधे पर ले आना, अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात आदि प्रसंगों का मंचन किया करते थे। और शायद यह बताने की जरूरत नहीं कि वे खुद हनुमान की भूमिका में होते थे। एक लंबी सी पूंछ लगाकर हनुमान जी की नकल करते हुए वे उछलते कूदते रहते थे।
2: अरे दुष्ट रावण, तेरी ये हिम्मत, तूने श्री राम की पत्नी सीता मैया का हरण किया। ठहर, तुझे मजा चखाता हूँ। तुझे अपनी सोने की लंका पर बहुत गर्व है ना? ले, अब बचा ले इसे। आज मैं तेरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। देखू कौन रोकता है मुझे।
3: अरे
4: वो
5: देखो कूदकर उधर चला गया।
6: हाय हाय, सबको जला दिया उसने।
2: आओ पकड़ो मुझे। क्यों रावण महाराज, कैसा लग रहा है?
5: मेघनाथ कहाँ है? कुंभकर्ण को बुलाओ। सब वीर योद्धा घर क्या सो रहे हैं? अरे कोई तो मेरी लंका को बचाओ, बचाओ, बचाओ।
2: ये रही तेरी जलती हुई पूंछ, रख ले इसे। मैं तो अपनी पूंछ लेके ये चला।
1: और भी कई प्रकार के खेल थे। उन दिनों कलकत्ते में गैस बत्ती आई थी, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं। अंग्रेजों ने सोडा लेमोनेट बनाना भी शुरू किया था। नरेंद्र को लेमोनेट पीना बहुत अच्छा लगता था, सो उन्होंने घर के आंगन में ही गैस और सोडा लेमन का कारखाना बनाने का मन बना लिया था। फिर क्या था, पूरी सेना इकट्ठी हो गई। कलपुर्जे नुमा कबाड़ इकट्ठा करके कारखाना खुल गया। पुराने जस्ते के नल, मिट्टी की हांडी और घास फूस के साथ गैस घर का निर्माण हुआ। घास फूस के चलते ही धुआं होता और नल से होकर ऊपर उठता। नरेंद्र कमर पर हाथ रखकर कुछ दूर खड़े होकर गंभीर दृष्टि से सब कुछ देखते और अपनी आविष्कार की सफलता पर आत्मतृप्त होते। दूसरे बच्चे भी ताली बजा बजा कर आनंदित होते और नरेंद्र को शाबाशी देते।
7: अरे नरेन, ये तो सचमुच का कारखाना बन गया। अरे पर सोडा लेमोनेट कैसे बनेगा?
2: जरा चुप तो रहो, मुझे सोचने दो। इस हांडी में पानी लाओ, इसे गैस के पाइप से बांधो।
7: क्यों नरेन, ये बाजार वाले लेमोनेट जैसा ही होगा ना, मीठा मीठा।
2: होगा तो वैसे ही। अरे अरे, गैस कम क्यों निकल रही है? और आग दो, आग दो, घास डालो और अब फूको, फूंक लगाओ। अरे जोर से लगाओ, जोर से, और जोर से लगाओ।
1: वाह रे नरेंद्र, धन्य है तुम्हारी कल्पना शक्ति।
0: एक बार नरेंद्र ने सर्कस देखने के बाद घर पर ही ट्रेपेज बनाने की ठानी। ट्रेपेज का खेल उन्हें बहुत पसंद आया था। कैसे खिलाड़ी हवा में झूलते हैं, छलांग लगाकर दूसरे झूले को पकड़ लेते हैं। बस सोचने भर की देर थी। साथियों को बुलाकर कहीं से रस्सी ले आए और बगीचे के पेड़ पर ट्रेपेज का झूला बांधने लगे। जितना काम नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा हंगामा मच रहा था। देखते देखते बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बच्चों की हरकतें देख लोग मजा ले रहे थे, पर कोई मदद करने नहीं आ रहा था। बच्चे परेशान हो रहे थे, वे ट्रैपेज बांध नहीं पा रहे थे। इतने में नरेंद्र की नजर एक अंग्रेज पर पड़ी। वह हट्टा कट्टा जवान था, शायद किसी जहाज में नाविक का काम करता होगा, क्योंकि वह वैसी ही पोशाक पहने हुए था। नरेंद्र उनके पास जाकर बोला,
2: सेलर।
3: यस सर।
2: हेल्प।
3: ओके।
1: वो अंग्रेज ऊपर चढ़कर झूला टांगने में मदद करने लगा। अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे जमीन पे आ गिरा।
3: ओह माय गॉड।
1: वो बेहोश हो गया था, उसके सिर से खून बह रहा था। सब लोग थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए, फिर सब ने एक साथ बोलना शुरू किया।
6: अरे इसका तो सिर फट गया।
5: मर तो नहीं गया?
6: क्या पता, हिलडुल भी तो नहीं रहा।
5: तो अब क्या होगा?
6: होगा क्या, पुलिस आएगी और इन बच्चों को पकड़कर ले जाएगी।
5: ए पुलिस, अरे भागो भैया, पुलिस की झंझट में कौन पड़ेगा।
6: हाँ हाँ, तुम सच बोलते हो, चलो चलो भागते हैं। भागो, भागो, भागो, भागो।

0: देखते ही देखते सब भाग गए। बच्चे रोने लगे। नरेन आगे आया।
1: ए ए, कोई पानी लाओ। तुम मेरी मदद करो। मैं अपनी धोती फाड़कर पट्टी बना देता हूँ। जरा इनका सर पकड़ तो लो, मैं पट्टी बांध देता हूँ।
2: बच्चों ने मिलकर उनका घाव धोकर पट्टी बांधी, मुंह पर पानी का छींटा दिया। थोड़ी देर में उस अंग्रेज को होश आ गया। कुछ देर तक आराम करके वह उठ बैठा। नरेन उसे पास वाले कमरे में ले गए, घर के बड़ों को बुलाया और डॉक्टर ने आकर उसकी मरहम पट्टी की। नरेंद्र ने परिवार वालों से मांग कर उसे कुछ पैसे भी दिए। वह धन्यवाद देकर चला गया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: ओम शांति अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी अभी तक तो हम बहुत सी चीजों को मैनेज कर रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, लाइफ को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, अपने प्रोफेशन को मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब खुद के ऊपर नजर गई तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा और अपनी सही पहचान करते हुए क्या वो सिचुएशंस हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, इस पर कई सारी बातें हम कर चुके हैं। आज भी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर पिछली कड़ी को हम देखें सिस्टर शिवानी, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए थे कि जब सिचुएशन आ जाती है तो एक छोटा सा रिकैप लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई एक्चुअली वी नीड टू मैनेज सेल्फ।
1: वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम के परिस्थितियां बहुत सारी हैं हमारे सामने जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ही चीज है जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज माई रिस्पॉन्स। सो वी शिफ्टेड द फोकस के सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय क्यों ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो सिचुएशन अपने आप संयम में आ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ एक बातों के बारे में हमने विचार किया। एक था साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम उलझन कहते हैं ना, बहुत उलझन है क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हम एक मिनट निकाल के भी स्टेप आउट करें कि जो ड्रामा चल रहा है उसको यहां से न देखने की बजाय एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें हर एक एक्टर का रोल बहुत क्लियर दिखाई देगा और सिचुएशन जैसी है वैसे दिखाई देगी। और फिर जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वही प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो साक्षी दृष्टा वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन मुझे नहीं कंट्रोल कर रही है, मेरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन जब हम उसमें उलझे हुए थे कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। सो जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत केओस हो रहा है, लेट्स से ऑफिस में होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट पे हो, आज शाम को सबमिट करना है, डेडलाइन इज देयर एंड यू हैव टू सी द एनवायरमेंट ऑफ द ऑफिस, इट इज लाइक केओस, एवरीवन इज शाउटिंग एट ईच अदर एंड जल्दी करो, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे
0: ब्लेमिंग,
1: ऐसे वातावरण में वो प्रोजेक्ट खत्म होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है, क्योंकि द होल एनर्जी फ्लो इज वेरी नेगेटिव। लेकिन अगर हो तो जाएगा पूरा, लेकिन एक्सपीरियंस क्या रहा सारा दिन का या वो एक महीने का जब आप वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, स्पेशली इवेंट्स ऑर्गेनाइज हम करते हैं। अब रोल ही है इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इवेंट कुड बी एज स्मॉल एज कि आपके घर पे आज एक डिनर है, आपके घर पे आज एक बर्थडे पार्टी है, दैट्स ऑल्सो एन इवेंट। और उस इवेंट में आप देखो पूरा परिवार कैसे केओटिक सा हो जाता
0: है, और उसके बाद जैसे ही सारे मेहमान जाते हैं आप ऐसे थक जाते हैं, बिकॉज इट इज लाइक इतना टायरिंग पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है।
1: तो ऐसे जैसे ये छोटी छोटी सिचुएशंस है, इनमें आप एक बार स्टेप आउट करके देखो। मॉर्निंग में आप देखो, जब आप घर पे, हमने लास्ट टाइम भी बात की कि मॉर्निंग का सीन कैसा होता है घर पे, अब इस मॉर्निंग के सीन में सपोज आज हमारे घर जो बहन आती है सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो आज नहीं आई, तो पूरा सीन कैसा हो जाता है।

0: एवरीवन इज लाइक, अब एक है कि आप शोर मचाते रहो एक दूसरे पे चल, और एक है आप एक मिनट स्टॉप करो कि यू नो व्हाट एम आई डूइंग. घर साफ होता जा रहा है और अंदर क्लीनिंग द बर्तन, वे क्लीनिंग द हाउस एंड अंदर क्यों नहीं आई, ऐसे नहीं वैसे. इट्स अ सिचुएशन नॉट इन माई कंट्रोल, माई रिस्पॉन्स. तो अगर उस समय हम 10 सेकेंड भी अपने आप को स्टॉप करके कहें वॉट एम आई डूइंग एंड यू विल इमिजिएटली जस्ट स्लो डाउन, जस्ट हैव टू कम आउट ऑफ इट वन मिनट लाइक दैट. तो वन वॉज डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, द अदर वॉज फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन. कि हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आज जो अपने अंदर भर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भी हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है. तो लेट्स बी केयरफुल, जहां तक इन्फॉर्मेशन मीडिया से भी है, जहां तक इन्फॉर्मेशन चारों तरफ की, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा भरते जा रहे हैं. और उससे क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है ना यहाँ पे, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंज्यूम करने लगती हूँ बाहर से, तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर जो ऑलरेडी इतना भर गया है, इतना भर गया,
1: कोई कॉर्नर नहीं है जिस पर लिखे हैं.
0: तो उसमें फिर मेरा रिस्पांस फिर ऑटोमेटेड होने लगता है, क्योंकि मेरा रिस्पांस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है. और फिर इन्फॉर्मेशन भी कौन सी क्वालिटी की हम भर रहे हैं, तो जहां इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा दर्द वाली भरेंगे तो रिस्पांस फिर ज्यादा दर्द वाला हो जाएगा. तो इसलिए हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन भरे तो भले हम सुन पढ़ तो रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य ले. तो एटलीस्ट फर्स्ट लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव. और तीसरा हमने देखा कि जब भी हम ये जर्नी पर हैं कि यस दर्द मेरी क्रिएशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ, फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. लेकिन जब कभी ऐसी थोड़ी सी भी हार खा लें, रिएक्ट कर जाएं, एटलीस्ट देन स्टॉप एंड लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ. नहीं तो अगर एक बार, दो बार, चार बार ऐसे हार खाते गए तो लगेंगे नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम ही राइट था कि ये सब कुछ तो बाहर से ही आता. लेकिन अगर सपोज मैंने एक बार रिएक्ट किया, गुस्सा किया, नाउ लेट मी सिट बैक एंड यू नो रिकवर. जैसे कि एक इलनेस तो आ गई, लेकिन इलनेस का इलाज कर लें, उससे रिकवर हो जाए. क्योंकि हम उससे रिकवर नहीं होते तो एक के बाद एक बीमारी
1: फिर हमें इसके साथ जुड़ती जाते हैं.
0: तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार अगर बीमारी आपको कोई हो जाती है तो आपका अपना इलाज आपको पूरी तरह से करना चाहिए ना. शारीरिक बीमारी भी होती है, कहते हैं रेस्ट कर लो, अच्छी तरह से रेस्ट कर लो ताकि आप उस बीमारी से रिकवर हो जाओ. अगर आप बिना रिकवर हुए ही एक्टिविटी में आ गए तो वो बीमारी हो सकता है आपको फिर से दोबारा आ जाए. तो इसी तरह एक बार गुस्सा किया, उसमें से रिकवर नहीं किया तो 10 मिनट बाद फिर कुछ और हो जाएगा. और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे एंगर इज नेचुरल.
1: और इनफैक्ट नहीं, एक बार जब एंगर कर जब हो जाता है ना, जब अपने आप को रिस्ट्रेन किया उसके बावजूद भी हो गया और उसके ऊपर हमने काम नहीं किया उसी वक्त, तो उसके रिपरकशंस, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद ये देखा है जैसे शिवानी कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं.
0: बिकॉज वी सॉ कि फीलिंग क्या होती है, फिर मेरी गलती तो थी ना, फिर जस्टिफाई मतलब आपकी गलती थी. देन अगेन दैट यू नो, क्योंकि वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम इतना डीप रूटेड है कि अगर एक वो थॉट आ गई कि मेरी गलती नहीं थी, दूसरी थॉट आएगी आपकी गलती थी, तीसरी थॉट आएगी फिर चेंज किसको होना चाहिए, आपको. यू सी ना, अगेन वी फॉल बैक इन टू दैट ओल्ड थिंकिंग पैटर्न. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिएक्ट कर भी दिया किसी भी फॉर्म का रिएक्शन बाहर या अंदर, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स एंड सिट बैक विद योर सेल्फ. अगर आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपका कोई फैमिली मेंबर या आपके कोई फ्रेंड्स, अगर उनका मूड खराब हो गया, यू नो दे आर अपसेट एंड यू सी देम लाइक दैट कि दे आर अपसेट, दे आर इन पेन, तो आप क्या करते हो?
1: हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम उनके साथ बातें करने लगते.
0: नाउ सी इज इन दैट नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट भी हम टाइम निकालकर उनसे बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे. क्या बात करेंगे? हाउ आर यू? इट्स ओके, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, भूल जाओ, कोई बात नहीं. तो जबकि हम औरों के लिए ये टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि वो दर्द में है एंड उनका दर्द मुझे मैटर करता है, तो मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ बैठूंगी, तो मैं अपना काम छोड़ के अपने साथ क्यों नहीं बैठ सकती? अगर मैं दर्द में हूं, मैं दर्द में ही काम करते जाती हूं, अपने साथ क्यों नहीं 2 मिनट निकाल कर बैठ सकते?
1: That's right, true actually.
0: So the minute we go into pain, let's stop. अपने आप से बात करें, फिर उस सिचुएशन को पर्सपेक्टिव में देखें और रिकवर करें विद द पॉजिटिव थॉट, व्हाटएवर हैपेंड फाइन, आई एम अ पावरफुल सोल. अगेन यू नो वो

0: रखा, उससे शक्ति ली, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वो एक घंटे के बाद एक मिनट, ताकि वो ऑटोमेटिक अगर हमारी रूटीन में फिक्स हो जाए कि हम हर एक घंटे के बाद एक मिनट निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उस एक घंटे के अंदर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ था तो उस एक मिनट के अंदर
1: बिल्कुल, जैसे आप ये कह रहे हो, हम एक हर एक घंटे बाद, हर दो घंटे बाद घर फोन करते हैं, बच्चे ठीक है कि नहीं. सो अगेन यू नो, अपने हस्बैंड को फोन करते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, कि कितने सारे लोग ऐसे करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बोलें, अपने आप के साथ करें कि मैं ठीक हूं कि नहीं.
0: इट्स ओनली दैट, वो एक मिनट सिर्फ उसी के लिए है. और बजाय कि अब कई बार क्या होता है कि अगर हम वो एक मिनट निकालते हैं तो कई बार हम एक सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स में फिर चले जाते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मुझे दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, उसने ऐसा किया. नो, देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. हमें वो वन मिनट इसलिए नहीं निकाला है कि हम वो परिस्थिति का चिंतन करने वाले हैं उसमें बैठकर, उनको ऐसा उनको. सो इसलिए हम परिस्थिति का चिंतन ना करके तुरंत वो वन मिनट स्टार्ट ही करते हैं पॉजिटिव थॉट से, कि आई एम अ पावरफुल बींग, या आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ लवफुल बींग, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं जो शांति का सागर है, तो मैं आत्मा कैसी होंगी. तो क्या है, पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव अपने आप खत्म होगा.
1: जस्ट फिल्स यू द मोमेंट यू गिव दैट थॉट.
0: इसलिए वन मिनट में हम ये नहीं कहेंगे कि आप वन मिनट निकालकर हर टाइम उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो उस एक घंटे में
1: हम सोच रहे हैं.
0: हम वैसे भी सोच रहे थे. एग्जैक्टली. तो वो वन मिनट इसलिए निकलता है ताकि उस एक घंटे के अंदर जो ऑर्डिनरी वेस्ट, कभी थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स जो आ गई होंगी, तो ये वन मिनट में हम कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते. तो जितना भी थोड़ा सा वो एक घंटे के अंदर ऊपर नीचे हुआ होता है वो खत्म हो जाता है. भले हम अपने सभी भाई बहनों को ये बार बार कह रहे हैं, बट आई स्टिल फील नॉट मेनी आर ट्राइंग. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बात बहुत सिंपल लगती है कि एक घंटे में एक मिनट, ये कौन सी बड़ी बात है, बट ये एक घंटे में एक मिनट बहुत पावरफुल टूल है. अगर समवन जस्ट टेक्स इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट और इसको एक हफ्ते के लिए सिर्फ करे, एक हफ्ते के लिए आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दो जो हर एक घंटे के बाद बजेगा ही बजेगा, और वो तो बजेगा लेकिन आप स्टॉप करेंगे. आप
1: वो तो करेंगे
0: और आप पॉज करके वो क्रिएट करेंगे, लाइफ विल चेंज. दैट इज डेफिनेट,
1: वेरी ट्रू. और वो उसे एक घंटे के बाद जो एक मिनट है उसमें ये नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं सोचना कि क्या हुआ था.
0: वो कई बार क्योंकि दर्द इतनी डीप रूटेड है ना, और वो वैसे ही चल ही रहा था उस एक घंटे में, तो कई बार वो एक मिनट भी उस सिचुएशन के बारे में या उस व्यक्ति के चिंतन के बारे में ही एक, बिकॉज वन मिनट इज वेरी शॉर्ट. और आप एक घंटे के बाद हर टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते. आप ऑफिस में हैं, आप बार बार ये नहीं कर सकते आप पांच मिनट निकाल लो, दस मिनट. सो इसलिए इट्स वन मिनट. लेकिन अगर वो वन मिनट एक्यूरेटली आप करो, अब होता क्या है, सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा. लेकिन अगर मैंने वो वन मिनट 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा. फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11, तो somehow
1: स्टेट जो कुछ नहीं हो पाएगा.
0: फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है. हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना, डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है, 10 to 11 ये करना है. तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो, 9 to 10 क्या फील करना है. वॉट टू डू इज वन कॉलम, 9 to 10 वॉट टू डू एंड वॉट टू फील, 10 to 11 कैसा फील करना है,
1: पावरफुल, लवफुल.
0: एंड बेसिकली एवरीवन वांट्स टू फील हैप्पी. अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो वन यूनानिमस वर्ड इज खुशी चाहिए. तो हम और आप, इट्स अमेजिंग, आप यू आस्क एनीवन टुडे कितने दिन खुश रहना चाहेंगे, कहते 365 days. अच्छा, पूरे दिन में कितनी बार, कहेंगे हर मिनट. तो प्योर डिजायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं, और कर रहे हैं ऑपोजिट. क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ. तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया, 10 to 11 ये काम हो गया, तो सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया. और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई थी. लेट्स से आपका कल बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की स्टडी आपके लिए कंसर्न बनी हुई है एंड इट्स देयर ऑन योर माइंड, या आपके

0: से कि मैं सारा दिन का थका हारा आया हूं, वो कहते हैं कि मैं सारा दिन वेट करती रही, मैं सारा दिन घर पे बैठी रही, तो वो वहां टकराव जो है वो ओहो वेट।
1: तो पूरी इवनिंग जो है ना आपकी 7 to 10 या जितना भी टाइम आप घर पे हैं वो डिस्चार्ज स्थिति में है, फिर आप रात को सोए, चार्ज हुए, सुबह आप फ्रेश हैं, आप ऑफिस चले गए, फिर घर पे आए, फिर डिस्चार्ज है। तो बेसिकली मेजोरिटी लोगों के लिए आज जितना टाइम परिवार वालों के साथ है उस समय हमारी स्थिति कैसी है,
0: बहुत थकी हुई होती है, वेरी ट्रू।
1: सो द एनर्जी विच वी हैव टू एक्सचेंज विद फैमिली वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है। और फिर अगर मेरी आज इवनिंग अच्छी नहीं बीती या कुछ ना कुछ यू नो हर टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे ऑफिस पे पड़ेगा कि नहीं कल सुबह?
0: मैं ऑलरेडी थकी हुई होंगी, यू नो ऑलरेडी मेरा लड़ाई हो चुकी होगी क्योंकि मैं थकी हुई थी और थकी हुई होती है अगले दिन मॉर्निंग फिर मेरा ये।
1: आप किसी से भी आज पूछो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है तो ऑर्डर पता है क्या देंगे, वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। पहले मेरा काम, फिर परिवार, फिर मैं खुद। अब काम इतना ज्यादा टाइम ले रहा है आज कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम में चलेंगे, फैमिली को ही हम 2-3 घंटा दे पाते हैं तो वो थर्ड स्टेप तक हम पहुंचते नहीं,
0: अब तक हम सो जाते हैं।
1: इसलिए कहेंगे सेल्फ के लिए टाइम नहीं है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी ले रहे हैं। व्हाट इज द ऑर्डर, वर्क, फैमिली, सेल्फ, क्या ये राइट ऑर्डर है हमारा? तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो द ऑर्डर शुड बी सेल्फ, फैमिली, वर्क। सेल्फ हेल्दी होगा तो फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, फैमिली हेल्दी को छोड़कर आप ऑफिस जाएंगे तब जाकर आपका वहां कुछ मन लगेगा, आप ठीक से काम करेंगे। सेल्फ दर्द में है तो रिलेशनशिप्स घर पे थोड़े से ऊपर नीचे हुए, अब इस दर्द में इस परिवार को छोड़ के ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस पहुंच के मन कहां होता है? ये हुआ, ये हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट है, पता नहीं क्या। तो आर यू डूइंग जस्टिस टू वर्क ऑल्सो? तो अगर स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है आप परिवार के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते और काम के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते। हाँ बहुत सारे घंटे स्पेंड कर सकते हैं वहां
0: लेकिन आप तो बिल्कुल निकलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा।
1: एक्चुअली पहले वर्क को कर दिया, सेल्फ के ऊपर टाइम नहीं दिया तो उस वर्क में ज्यादा घंटे स्पेंड करने पड़ रहे हैं क्योंकि दर्द में आप काम करो और हेल्दी स्थिति में काम करो फर्क।
0: ऑफकोर्स आप इतने बोझिल, इतने हैवी, इतने थकान से भरे हुए होते हो। इनफैक्ट यहां से शिवानी एक और बात कि बार बार हम ये कहते हैं कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ,
1: काम परिवार के लिए कर रहा
0: हूँ। ये होता है, जब भी आपने ये कहा तो मेरे को बिल्कुल सामने ये याद आएगी कि वर्क को हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है लेकिन हमारी प्ली ये होती है
1: कि फैमिली के
0: लिए, मैं तुम्हारे लिए तो काम।
1: एब्सोल्युटली, लेकिन फैमिली को क्या चाहिए आपसे? फैमिली को सिर्फ धन नहीं चाहिए आपसे, चाहिए क्या आपसे? खुशी चाहिए, घर में प्यार चाहिए। आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वॉज नॉट राइट। एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना, नहीं, इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूं मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता। तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा, मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया, नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क एंड जितना काम मुझे करना है 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। हम काम कर रहे हैं, यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहां पर है?
0: वहां क्या चल रहा होगा?
1: अगर घर पे नहीं भी है ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया तो काम भी कर रहे हैं मन ऐसा क्यों, ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं। सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क? इवन काम के क्षेत्र में फुल कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहां पे स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा लेकिन हम कह रहे हैं नहीं हमारा सारा टाइम काम पे है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो राइट सेट करनी है। पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूं, देन एवरीथिंग विल बी मोर यू नो फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथ एंड आई विल एंजॉय एवरीथिंग आई एम डूइंग। नहीं तो मैं तीनों को एंजॉय नहीं कर रहा, तीनों जगह कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे।
0: और मजे की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए,
1: एक मिनट, एक घंटे के बाद एक मिनट। इट्स जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा।

0: वो सुनते में इतना इजी लगता है कि
1: समझ कर लिया.
0: हाँ, एंड मेजोरिटी बोलते हैं हाँ हम तो जरूर कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना पड़ता है. कई कॉरपोरेट हाउसेस में जब उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऑफिस में जैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड लिटिल लाइट म्यूजिक, नो मेडिटेशन म्यूजिक हर घंटे के बाद बजता है एक मिनट के लिए. रिमार्केबल रिजल्ट, पूरा एनवायरमेंट ऑफिस का ठीक हो जाता है. एंड क्योंकि लोगों को एक रेस्ट मिलता है, यू नो, इवन ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको वो एक मिनट में क्या क्रिएट करना है, पॉज, उनको वो भी नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ वो म्यूजिक बजता है एंड दे जस्ट स्टॉप एंड रेस्ट. वो रेस्ट भी बहुत काम कर जाता है.
1: आई नो, जिस भी चीज में है आप, इनफैक्ट अगर हम देखें
0: क्योंकि वो वन मिनट वो डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है
1: कि सब चीजों से एक मिनट का.
0: जैसे स्कूल में बच्चे हैं, आपका एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर होता है, टेक दैट वन मिनट. नहीं तो वो एक मिनट जो एक टीचर क्लास से बाहर जाएगी और दूसरी टीचर आएगी, अगर वो एक मिनट आप स्टेबल हो जाएंगे, आप पिछले सेशन को भी ठीक से ऑब्जॉर्व कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी होंगे. नहीं तो एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो एक एक टीचर आकर समवेयर हियर इट हैज नॉट गॉट ऑब्जॉर्व प्रॉपरली, और फिर घर जाके बहुत स्टडी करना पड़ता है फिर से. सो दैट वन मिनट जो बीच में मिलता है, इट्स वेरी वैल्यूएबल. इसको करके देख सकते हैं.
1: तो सिस्टर शिवानी, आज जो हमारे सामने बात आई कि एक मिनट का रेलिवेंस को हमने सोचा, और अभी तक हम ये कहते थे कि एक मिनट क्या है, आपको हम दूसरों के साथ कितना वक्त गुजार रहे होते हैं, तो वो एक मिनट जो मुझे एम्पावर करेगा. और उसमें भी बहुत जो सही बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्या सोचना है, इट्स ओनली कि हमें वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके अपने आप को एम्पावर करना है. और वो ट्राई करके देखें, बार बार हमारी कोशिश रहती है, हम कहें कि अनुभव से बड़ा जो है वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. मतलब जब तक हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे उससे गुजरते हैं. आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. तो चलिए एक बार फिर बॉल हमारे कोर्ट में है, हमें तय करना है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे लेकर जाना चाहते हैं. एंड लेट्स ट्राई इट आउट. मैंने तो अब तय कर लिया है कि मैं इस एपिसोड को खत्म करते ही जरूर अलार्म लगाऊंगी एक घंटे बाद. सिर्फ एक मिनट, एक मिनट. आप किसी भी जगह पे हो, आप अपने घर पे हो, हाउसवाइफ हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, और इनफैक्ट जहां हमें परिवर्तन आने लगेगा, आसपास का माहौल अपने आप परिवर्तित होगा. और उसमें भी हमें ये याद रखना है कि हमने थॉट क्या क्रिएट करना है. लेट्स ट्राई इट आउट. और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. आज आपसे हम यहीं विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि आप हमसे फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. सेल्फ मैनेजमेंट पर बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं, और आज हमने एक मिनट के रेलिवेंस को समझा है. प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, सेल्फ सबसे पहले, फैमिली उसके बाद, और उसके बाद वर्क, तो डेफिनेटली काम तो हमारा होगा ही. तो आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लुटा।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन।
2: अच्छा,
1: इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया, कभी राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, पैसे अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल धान के शेर सुनाओ। नोन मिर्च पर चौपाई चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली।
2: अच्छा,
1: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है।
2: अच्छा,
1: मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो।
3: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
4: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। नसों में गर्म खून हर जवान इनकलाब है, जो खींच ले जमीं पे आसमान इनकलाब है। दमन के ठोकरों से उठ के आंधियां जो बन गईं, वो दर्द और सितम की दास्तान इनकलाब है। ऐसी ही एक इनकलाबी आंधी का नाम था आजाद हिंद फौज। 5 जुलाई सन 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने इस फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने गरज कर कहा, दिल्ली चलो, और इस सेना का हर सिपाही आजादी के इस महासमर में कूद गया। 17 मार्च सन 1945 को अंग्रेजी सेना ने अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए आजाद हिंद फौज पर तगड़ा हमला बोल दिया। आजाद हिंद फौज की 3 कंपनियां उस क्षेत्र में तैनात थीं, जिसके नाम अ, ब और स थे। अ कंपनी के कमांडर लेफ्टिनेंट करतार सिंह थे और ये कंपनी नलेंग ग्राम के पास स्थित थी। ब कंपनी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह बिश्त कर रहे थे और ये कंपनी टॉकजन के उत्तर पूर्व में स्थित थी, और स कंपनी आपत्तिकाल के लिए सुरक्षित रखी गई थी। लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह बिश्त की ब कंपनी जिस क्षेत्र में रखी गई थी, वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वो क्षेत्र चौड़ा और सपाट था, जहां न तो शत्रु की दृष्टि से बचा जा सकता था और न ही उसकी अग्निवर्षा से। उस क्षेत्र के निकट ही एक उथला और सूखा नाला था, जिसके पास ही 3 सड़कों का संगम था। इस संगम मार्ग से 4-5 मील उत्तर पश्चिम दिशा में 1423 फीट ऊंची एक पहाड़ी थी और इस पहाड़ी पर अंग्रेजों का अधिकार था। यहां उन्होंने अपना तोपखाना जमा रखा था। ऐसी खतरनाक स्थिति पर ब कंपनी नियुक्त की गई थी, जो पहाड़ी पर स्थित अंग्रेजी तोपखाने की सीधी मार में थी। ब कंपनी की कमान लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह बिश्त के हाथों में थी। लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह बिश्त का प्रशिक्षण सिंगापुर के ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में हुआ था। वो बहुत ही बहादुर थे और अपनी कंपनी में बेहद लोकप्रिय। अपने सैनिकों से वो अक्सर कहा करते थे, भाइयों, देखना, मैं तो आप लोगों के साथ युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते ही मरूंगा। उस समय उनकी कंपनी के पास केवल 98 जवान थे, जिनके पास भारी या हल्की किसी भी प्रकार की मशीन गने नहीं थीं। उन लोगों के पास केवल राइफलें और कुछ टैंक विध्वंसक बम ही थे। अपने साथियों के लिए लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह का आदेश था कि शत्रु किसी भी तरह से हमारे क्षेत्र में प्रवेश न करने पाए, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े।

17 मार्च सन 1945 को प्रातःकाल से ही अंग्रेजी बम वर्षकों ने ब कंपनी पर भारी बम वर्षा प्रारंभ कर दी और ये कोशिश की कि खाइयों में दुबके हुए आजाद हिंद फौज के सारे सैनिक वहीं के वहीं मार दिए जाएं। घनघोर बम वर्षा के पश्चात अंग्रेजी तोपों ने अपने मुंह खोले और उन्होंने गोलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अपने तोपखाने का सहारा प्राप्त करके अंग्रेजी स्थल सेना बख्तरबंद गाड़ियों में भर भर कर तीनों सड़कों से आजाद हिंद फौज की ब कंपनी को घेरने के लिए बढ़ चली। सुबह 11 बजे तक अंग्रेजी तोपें आग बरसाती रहीं। 11:30 बजे बढ़ती हुई अंग्रेजी सेना दो भागों में विभक्त हो गई। उसके एक भाग ने आजाद हिंद फौज की अ कंपनी पर हमला किया और दूसरे भाग ने ब कंपनी पर। लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह की ब कंपनी की तरफ बढ़ने वाले अंग्रेजी दस्ते की बख्तरबंद गाड़ियों ने अपनी तोपों से खाइयों पर गोलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उसके बाद उन्होंने मशीन गनों से धुआंधार वर्षा की। उनका इरादा यही था कि खाइयों में से एक भी सैनिक जीवित बचकर न जा सके। आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने कोई भी हरकत नहीं की, वे खाइयों में ही छिपे रहे। तोप और मशीन गन से हमले के बाद शत्रु सेना के दैत्याकार टैंक इस इरादे से खाइयों की तरफ बढ़ चले कि यदि आजाद हिंद फौज के कुछ सैनिक अब भी बचे हों तो टैंकों द्वारा उन्हें वहीं दफना दिया जाए। बख्तरबंद गाड़ियां और दैत्याकार टैंक खाइयों के बिल्कुल निकट पहुंच गए और गोले बरसाने लगे। उन्हें इतने पास आया देखकर लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह के सिपाहियों ने दो टैंक विध्वंसक बम फेंके, पर वे फटे नहीं। ब कंपनी संकट में फंस गई थी। उनके पास ऐसी संचार व्यवस्था भी नहीं थी कि वे बटालियन के मुख्यालय पर संदेश भेज सकें। लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह ने अनुभव किया कि उनका और शत्रु का कोई भी मुकाबला है ही नहीं। उनके पास मात्र 98 जवान थे, जबकि शत्रु सेना के पास 600 जवान और टैंक तथा बख्तरबंद गाड़ियां अलग से। इसके अलावा अंग्रेजी सेना के पास आधुनिकतम शस्त्र भी थे। लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह को ये समझते देर नहीं लगी कि यदि कुछ क्षण और देर की गई तो ब कंपनी का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने हमला करो का आदेश दिया और भीम गर्जना के साथ वे सबसे पहले खाई के बाहर कूद पड़े और नेताजी की जय का गगनभेदी घोष करते हुए शत्रु सेना पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। उनके बाहर कूदते ही कंपनी के सभी सैनिक दुश्मन पर टूट पड़े। नेताजी की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से रणक्षेत्र गूंज उठा।

टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे छिपी हुई अंग्रेजी सेना पैदल पैदल आगे बढ़ रही थी। आजाद हिंद फौज के जवान उस पर टूट पड़े। कुछ लोगों ने बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला किया और उन गाड़ियों से अंग्रेजी सेना के सैनिक भी कूद कूद कर आजाद हिंद फौज के जवानों के साथ भिड़ गए। 2 घंटे तक आमने सामने की भयंकर लड़ाई चलती रही। लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह के फौजी हार मानने वाले नहीं थे, उनकी संख्या कम होती जा रही थी, पर जो जीवित थे वो काल के समान भिड़े हुए थे। आजाद हिंद फौज के 40 जवान अब तक शहीद हो चुके थे। अंग्रेजी फौज में मरने वालों की संख्या इससे दुगुनी रही होगी। जब शत्रु सेना ने देखा कि ये लोग तो मरने मारने पर ही उतारू हैं और हमारी फौज तेजी के साथ घटती जा रही है, तो उसने मैदान छोड़ना ही ठीक समझा। शत्रु सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और पैदल सैनिक सबके सब पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह भागती

शत्रु सेना को खदेड़ने के लिए अपने बचे खुचे जवानों को इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी शत्रु पक्ष की ओर से एक सनसनाती हुई गोली उनके माथे पर आकर लगी और जय हिंद का विजय घोष करते हुए वो वहीं शहीद हो गए। अपने सैनिकों से सच ही कहा था उन्होंने, देखना मैं आप लोगों के साथ लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में ही मरूंगा। एक ओर जहां उनके फौज के जवानों की लाशें पड़ी हुई थीं, वहीं उनके निकट उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। एक महान वीर शहीद हो चुका था, लेकिन युद्ध का मैदान उसकी सेना के हाथ रहा। लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह बिश्त ने नेताजी की इस बात को पूरा किया कि यदि देश को जिंदा रखना है तो व्यक्ति को मरना होगा। ऐसे अमर बलिदान की गाथाएं सदियां गाती हैं। बलि हुए किस तरह देश धर्म पर अपने, बालक जवान बूढ़े बहने और माताएं। बलिदान शब्द इतिहास स्वयं विस्तृत है, जिसमें संचित हैं इनकी गौरव गाथाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।
1: ये वतन का
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। When we have understood कि every thought that we create, just the other day, एक डॉक्टर ने हमें explain किया, एक psychiatrist है, तो उन्होंने कहा brain के अंदर 10,000 crore cells है, just the brain, okay? 10,000 crore cells, and फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells, और each cell is connected to at least 10,000 more cells in the body, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका effect कितना लंबा जाएगा। तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका brain पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि

खुशी से कट जाए हमारा भी सफर, हम पर भी जरा कर दो विनायक की नजर। खुशी से कट जाए हमारा भी सफर, खिसक जरा प्यारे नरक जरा प्यारे, खिसक जरा प्यारे नरक जरा प्यारे, जो किसी का

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। आपके हम हर बार बताते हैं कि इतने सारे ईमेल्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, और आज इसीलिए हमने तय किया है कि कुछ ऐसे सवाल जो बहुत से दर्शकों के होते हैं और बहुत सारा उसमें ही जवाब मिल सकता है, उन्हें हम चुने और अपने प्रोग्राम में शामिल करें और इन सवालों का जवाब साथ मिलकर तराशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे हम सफर हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। इतने सारे सवाल और इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सवाल होते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं हम कि मिलते जुलते सवाल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी वही है, मुश्किलें वही हैं, अड़चने वही हैं, स्ट्रेस इतना ही है, एंगर है, बाकी सारी और चीजें हैं। एक सवाल जो यहां पे इन्होंने भेजा है, मुंबई से आया है और विनय जी ने ये लिखा है, मेल भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मैरिड मैन और मैं अपनी वाइफ के साथ हूं, बहुत खुश हूं, लेकिन हर बार मुझे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पर बहुत शक करती है। मैं उन्हें इतनी बार समझाने के बाद भी

0: इस समय ये रिलेशनशिप में दर्द है, मुझे इस दर्द को हील करना है, क्योंकि सामने वाले के अंदर तो इस टाइम ताकत ही नहीं है।
1: दे डेफिनेटली बिकॉज ही सेज मैं हर्ट हो रहा हूँ। सो अगेन हमने बात ये की थी कि हर्ट कोई और नहीं कर सकता हमें, हम खुद करते हैं।
0: तो अगर कोई डाउट भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं सिंसियर हूं तो मुझे क्यों हर्ट होना चाहिए? मुझे हर्ट इस बात से होता है कि तुमने मुझे डाउट किया कैसे। यू सी दैट्स ईगो, दैट्स वेयर इट गेट्स हर्ट। बट इफ आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, आई विल सी इट्स ओके, एक्सेप्ट, इट्स अंडरस्टैंडेबल। और जितनी जल्दी हम उसको हील कर देंगे, उतनी जल्दी वो ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा। हमें लगता है इसने डाउट कर दिया तो इसका मतलब कोई ट्रस्ट
1: हो गया, वो लड़ाई होती है। बहुत सुंदर विनय जी यही कहना चाहेंगे कि प्यार अगर आप करते हैं सचमुच, इफ यू
0: रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए मेरे लिए।
1: अगर वो इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और यू रियली लव योर वाइफ, देन एक्सेप्ट हर। दिस इज व्हाट वी सेड, लविंग समबडी मीन्स एक्सेप्टिंग। और अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं।
0: जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को कोई बीमारी लग जाती है, इट कुड बी एन एक्सीडेंट जिसमें आप फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं, या आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जो ठीक नहीं होती है। हमें बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं दूसरे मेंबर से। मेजोरिटी तो होना चाहिए या होता है कि स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और विद योर फिजिकल हैंडीकैप ऑल्सो आई एक्सेप्ट यू। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पहले तो ठीक थे लेकिन अब आपका ये हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। नो, विद द फिजिकल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो विद अ लिटिल इमोशनल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन थोड़ा सा हैंडीकैप आ गया, थोड़ी सी चोट लगी है बीच में, तो क्या हम रिजेक्ट कर देंगे? जिसको चोट लगी है उसको ही डांटना शुरू कर देंगे? सिर्फ ये है कि फिजिकल एलिमेंट और फिजिकल हैंडीकैप देखना बहुत इजी लगता है, इट्स इजी, लेकिन इमोशनल एलिमेंट देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम खुद ही चोट में बैठ जाते हैं।
1: और इमोशनल एलिमेंट में हम दूसरे को दोष देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। You know, see, we don't take it as an ailment. Yeah. We say you are responsible person.
0: Responsible. And now you have hurt me. So now I have the right to hurt you. तो आपने मुझे डाउट किया।
1: इमोशनल एलिमेंट
0: एक्चुअली। यही तो हो रहा है ना, तो वही तो बात हुई थी कि आप भी दर्द में तो मैं भी दर्द में, तो आपने मुझे डाउट किया तो अब मैं आपको गुस्सा करूंगा। तो क्या हुआ, आप भी दर्द में, मैं भी दर्द में।
1: Wonderful. That's actually a different वे ऑफ लुकिंग एट इट। और कहीं ना कहीं आप शायद विनय जी उम्मीद ये कर रहे थे कि हम आपकी वाइफ से बात करना चाहेंगे, लेकिन जरूरी यही है कि बदलना हमें खुद को होगा।
0: हाँ, और ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग जस्ट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग कि ये हर प्रॉब्लम जो हमारी फैमिली में या हमारी कोलीग्स के साथ आ जाता, लुक एट इट एज अ हैंडीकैप, लुक एट इट एज एन इलनेस, डू नॉट लुक एट इट ये तो है ही ऐसे। मतलब हमें ये समझना होगा, जान पूछ कर कोई कुछ नहीं कर रहा होता। कहीं ना कहीं वाइफ के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि वो अपने हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही है, मेजर इनसिक्योरिटी है अंदर। इस कारण से उसको लग रहा है कि आप बाहर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, क्योंकि उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं,
1: कम है बहुत।
0: इतनी कमजोर आत्मा के ऊपर अब और क्या गुस्सा करना, इट्स नॉट राइट।
1: लेकिन
0: इट्स नॉट राइट,
1: बात वही होता है कि हम भी उतने ही कमजोर होते हैं, और वो जब दो कमजोर आत्माएं साथ होती हैं तो फिर परमात्मा।
0: दैट्स व्हाट इट्स ऑल बिकम अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो हमें औरों को भी अंडरस्टैंड
1: करना
0: इजी
1: आसान हो जाएगा। वेरी वेरी ब्यूटिफुल सिस्टर शिवानी। और अब एक और मेल हम लेते हैं यहाँ पर। ये एक बच्चे का मेल है, और मजे की बात यह है कि इस प्रोग्राम के दौरान हमें इतने स्टूडेंट्स के और यूथ के मेल आए हैं जो ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं जो उन्हें लगता है कि कहीं नहीं कर पाते। एंड दिस इज अ गर्ल हु इज 14 ईयर ओल्ड। शी सेज माय मदर इज वेरी ब्यूटिफुल, टिल सम टाइम आई हैड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हर, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर। वो एक वर्किंग वुमन है और मेरी उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन धीरे धीरे अब मैं ये देखती हूँ आई स्टार्टेड हेटिंग हर। वाई? बिकॉज आई फाइंड हर मच मोर ब्यूटिफुल देन मी, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मैंने ये देखा, अपनी फ्रेंड से भी बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत दूर चली गई हूँ। दिस इज अ चाइल्ड टॉकिंग।
0: इट जस्ट शोज कि हमारी इनसिक्योरिटी किस लेवल तक पहुंच गई है। पहले ये होता कि अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल हैं या मेरी

0: sister ya brother mere se zyada attractive hai to hame insecurity ki feeling aati, lekin parents ke sath is tarah ki cheez feel karna, pehli baat to humne yehi samjha ki beautiful actually matlab kya hai, hai na. Abhi ye kyun ye insecurity aa rahi hai? It could be with mother, it could be with anybody else, it could be with friends. It is because jo zyada sundar hai physically, hamara belief system hai, usko auron se zyada acceptance milegi. Aur usko auron se zyada acceptance milti aur mujhe nahi milti hai, to meri self esteem down ho jati hai, kyunki meri self esteem is par based hai ki aap mere bare mein kya sochte hain, and I believe ki aap mere bare mein sochte hain ki I am not beautiful, ya I believe ki aap sochte hain ki she is more beautiful than me, so I start feeling you like her more than me, and ye mere liye bahut damaging ho jata hai, kyunki maine sara kuch is belief par base kar diya ki physical looks acceptance late hain, physical looks pe meri self esteem dependent hai, aur logon ki appreciation meri self esteem ko badhati hai. Ab kya hota hoga, maybe ke jahan bhi mother and daughter ikatthe jate hain, if she feels ki physically mother usse zyada sundar hai, she must be experiencing ki mother ko zyada appreciation milta hai, aur jahan zyada appreciation milta, to she must have felt ki zyada log unki taraf attract ho rahe hain. अब ये समझने की बात होगी कि इट्स नॉट एक्चुअली फिजिकल ब्यूटी. किसी को भी आप सिर्फ एक दो मिनट के लिए फिजिकल ब्यूटी पर आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कि लोगों की हमारे प्रति एक्सेप्टेंस या हमारे तरफ अट्रैक्ट होने की जो बात आती, इट्स मोर ऑन माय एनर्जी लेवल. So and in your mother, I mean, you can never compete with a mother.
1: No, but then I can understand. Yeah. She's Yana from Rajasthan, and yeah. she is so hurt. मतलब आप anger और hurt से जुड़ा हुआ कि she was my best friend. My mother was my best friend, and now I don't even want to talk to her.
0: हाँ, लेकिन इस केस में तो कोई problem ही नहीं है. ये problem तो खुद अपनी create की हुई है, and one thought and वो finish हो जाएगी.
1: ज्यादा teenagers के साथ ये problem आ रही है, कहीं ना कहीं,
0: क्योंकि self esteem बहुत low है इस time, और self esteem सारा physical पर बहुत ज्यादा आधारित है, and self esteem बहुत ज्यादा इस चीज पर dependent है कि कितने लोग
1: मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे attention कितना दे रहे हैं, मैं जहां जाती हूँ मुझे देखते हैं.
0: self इतना vacuum में है कि मुझे औरों की अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, मेरी सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे औरों से अटेंशन नहीं चाहिए, और दूसरी बात, दूसरे लोग भी अगर आपको चाहिए एक्सेप्टेंस, देन इट्स नॉट फिजिकल ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट. अपने इनर सेल्फ पर काम करना शुरू करें. मे बी इट्स पॉसिबल दैट फिजिकली तो आपकी मदर अट्रैक्टिव है ही है, लेकिन इट्स ऑल्सो दैट शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, है ना. तो शी सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, तो उनके अंदर से वो पॉजिटिविटी जो रेडिएट होती है, उसके प्रति लोगों का आकर्षण होता है, और इसको देख देख के मैंने अपने अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, वो नेगेटिव ऑरा मेरे अराउंड है, उसकी वजह से लोग मेरे से
1: दूर होते जाएंगे,
0: और भी दूर हो जाएंगे. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वॉक इन करता, यू कैन फील द एनर्जी. आप फील कर सकते हैं कि कितना फियर है, कितनी इनसिक्योरिटी है. तो नथिंग अबाउट द फिजिकल लुक, लेकिन लोग वैसे ही दूर हो जाएंगे, बिकॉज आई एम कैरिंग अ वेरी नेगेटिव ऑरा. तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल लुक्स. वो आधारित है कि हमारा ऑरा क्या है. जैसे ही हम किसी भी कमरे में प्रवेश करते, हमारे साथ साथ हमारी एनर्जी फील्ड एंटर करती है, एंड वो एनर्जी फील्ड डिसाइड करती है और लोग मेरी एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं या मुझसे दूर होना चाहते हैं. तो उस पर वर्क करें, एंड यू विल हैव एवरीवन विद यू,
1: एंड समवेयर आई थिंक शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर मदर एज वेल. यू नो,
0: मदर इज ऑलरेडी अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन इंटरनली ऑल्सो, इट्स अंडरस्टैंडेबल, एंड शी शुड अंडरस्टैंड दैट शी शुड लाइक द आइडिया दैट हर मदर इज सो ब्यूटिफुल.
1: सो इट्स
0: एक थॉट है कि यू नो इनसिक्योरिटी किस बात की, कुछ भी नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि उनको जब वो दोनों इकट्ठे होंगे,
1: और कितना बिल्डअप कर लेते हैं इतना हर्ट में रह के कंटिन्यूअसली. यानी आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुख दे रही हैं कहीं ना,
0: और ये आज आप अपनी मदर के साथ एक्सपीरियंस करें, कल आप औरों के साथ भी करेंगे. तो इसको अगर बिलीफ
1: को
0: यहाँ ही ठीक कर दिया, तो ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होगी और रिलेशनशिप्स में, और

0: अगर मेरा मदर डॉटर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो मैं अपने आगे की रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग नहीं बना सकूंगी। मेरे हर रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक हीनता की भावना, एक भय और एक इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी। मुझे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनसे डर है, उनसे खतरा है, तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी और ये मेरी अपनी प्रॉब्लम होगी। आई हैव टू रिमेम्बर ये औरों की वजह से नहीं है,
1: जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। आप आज बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत करके हमें लिखा है, इट्स अ बिग स्टेप। अगला स्टेप ये है कि आप जिम्मेदारी उठाइए आप अपने जिस भी जो भी आप फील कर रही हैं, और फिर एक थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे।
0: इस केस में तो वो रियलाइज भी कर रही होंगी कि मदर की कोई गलती तो है ही नहीं है, इट्स जस्ट दैट उनको ये लग रहा होगा मुझे ऐसे थॉट्स आई क्यों रही हैं। तो कुछ नहीं, स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट और अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दें, वो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दें और अपने आप।
1: एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर दैट ब्यूटीफुल सोल एक्चुअली। असल शिवानी, एक और सवाल है जो बहुत से दर्शकों का सवाल से जुड़ता है, और ये है विदेश शर्मा जी हैं, ये इन्होंने हैदराबाद से लिखा है। ही इज अ रिटायर्ड जज एंड ही सेज आई हैव गॉट टू सन्स। बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बच्चे हैं दोनों, एक अमेरिका में है और एक बैंगलोर में है। मैं और मेरी वाइफ एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन अब मैं 65 के करीब हूं, ज्यादा हूं। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं, मेरा मन ये करता है कि बाकी लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने अपने हिसाब से ही बच्चों को कभी भी बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आने दिया था। जब वो छोटे थे तब मैं इतना बिजी था अपने प्रोफेशन में, और वाइफ के साथ जो था वो भी एक दूरी बनी रही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहा। अब इतनी लोनलीनेस में फील करता हूं, ना बच्चों के साथ रिलेट कर पा रहा हूं, ना वाइफ के साथ रिलेट कर पाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूं उनको, और वाइफ ने अपना सर्कल बना रखा है। मेरे पास ना मैं कह पाता हूं अपने बच्चों से कि मैं लोनली हूं, क्योंकि मुझे अब प्रोग्राम भी देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैंने भी उन्हें लोनलीनेस कहीं दी है, और ना मैं वाइफ के साथ जो है अपना रिलेशनशिप दोबारा, मतलब मुझे पता ही नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करूं मैं। एंड देयर इज दिस लोनलीनेस व्हिच इज सीपिंग इन, सो आई वांट टू शेयर इट विद यू।
0: ट्रू नाउ, ये बहुत अच्छा है कि ये एक रियलाइजेशन आ गई है, और कहीं ना कहीं और भी एक बात जो बहुत अच्छी है वो है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसके, यू नो, ये एक फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया।
1: आई थिंक ही सेड बिकॉज़ ऑफ द यू नो प्रोग्राम आई हैव बीन सीइंग, आई एम रियलाइजिंग दैट
0: बिकॉज़ यू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला स्टेप होता है, क्योंकि इसी सीढ़ी पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हमारा दृष्टिकोण नहीं तो सिर्फ औरों की तरफ होता है। तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया था। अब ये भी समझना होगा कि ये एकदम से एक दिन में दूसरे नहीं चेंज होंगे। हाँ, मैं चेंज हो सकता हूं, लेकिन औरों को, और लोग भी, क्योंकि है तो फैमिली, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये तो बहुत नजदीक के संबंध है। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते होंगे। इट्स जस्ट दैट उनको तो इसी व्यवहार की आदत पड़ी है ना बहुत समय से।
1: अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चला कि आप बदल गए, ये ना हमने कहा था एक बार पहले।
0: क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में तो पुराना वाला पास्ट एक्सपीरियंस से ही चल रहा है, क्योंकि लेबलिंग ये होता है वो ब्लॉकर बिलीफ, यू नो, जो हमने सोच देखा था कि किसी को भी हम एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसे है। हाँ। अब क्या होगा, वाइफ बच्चे सभी एक साइड पर, जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि ये हमारे फादर, ये तो है ही ऐसे। नाउ इट विल नीड टाइम फॉर देम फॉर दैट बिलीफ सिस्टम टू चेंज। तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए मुझे ही वो एनर्जी भेजनी पड़ेगी, अगर तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने बहुत समय से एक ऐसी पर्सनल कॉन्वर्सेशन शायद की नहीं, तो बहुत इजी नहीं होगा बताना कि यू नो आई एम रियलाइजिंग, क्योंकि इजिएस्ट वे तो अदरवाइज ये है जस्ट गो एंड शेयर कि आई हैव रियलाइज्ड, लेकिन हमारे ईगो हमें ये सब करने से रोक देती है। सिंपल, बहुत सिंपल होगा अगर यू कैन वॉक अप टू ऑल थ्री एंड टेल देम आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने अपनी पूरी जीवन क्या किया है, बट नाउ I have realized and so I have changed, you know, not even wanting, I have changed. And कुछ उसके बाद बोलना नहीं है कि मुझे ये करना है या मुझे वो रिलेशनशिप बिल्ड होना है, वो एक बैरियर है जो मैंने ही रखा था बीच में। अब मुझे जाकर सिर्फ उस बैरियर को हटाना है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो वैसे ही रेडी थे, तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो या तो मैं एनर्जी से उस बैरियर को हटाऊं, और अगर मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी है तो

0: ओम शांति।
1: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 09993445 09993446 09873666555। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के सभी कार्यक्रम अब BCDs पर भी उपलब्ध हैं। 10 BCDs के एक सेट की कीमत ₹300 है। अपने सेट का ऑर्डर भेजने के लिए आप ₹300 का डिमांड ड्राफ्ट या चेक ओम शांति सोसाइटी के नाम पर इस पते पर भेजें। ओम शांति सोसाइटी 355 तरुण एनक्लेव आउटर रिंग रोड पीतमपुरा दिल्ली 34। फोन 09873666555। आप अपना नाम पता फोन नंबर और किस वक्ता की VCD ऑर्डर करना चाहते हैं ये लिखकर अवश्य भेजें। डिमांड ड्राफ्ट या चेक और आपके ऑर्डर से संबंधित बाकी जानकारी प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर आपको VCD का सेट मिल जाएगा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उन्हें के तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी, पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

बैठेंगे फुटपाथों पर खेलेंगे, समझे मेरे भाई हैं। जिनको जग की चिंता है वो जग का दुख झेलेंगे, हम सड़कों पर नाचेंगे फुटपाथों पर खेलेंगे।

0: प्यार रे।
1: अरे प्यार की भिक्षा मांगे तो लो

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद ऐतिहासिक सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू
2: सिस्टर। बीइंग डिवाइन में आप बार बार कहती थी आई एम नॉट दिस कपड़ा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस हैंड, आई एम नॉट दिस, आई हैव एक्वायर्ड की आप बात कर रही थी। पहले बॉडी एक्वायर की, फिर नाम एक्वायर किया, फिर पेरेंट्स, फिर दोस्त, फिर टीचर, फिर प्रॉपर्टीज, फिर नाम शाम जो भी है। लेकिन मैं आई जो है, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे, मैं आई हूं कौन अगर ये नहीं हो तो? वरना मैं इतना पैदा होने के बाद ना मेरे माँ बाप ऐसा मुझे सिखाते, ना मेरे दोस्त, ना दुनिया से मैं सीखता कि लड़ो, पढ़ो, मेहनत करो, एक्वायर करो, एक्वायर करो, मोर प्रॉपर्टी, मोर नेम, मोर फेम, कुछ बनो, टैलेंटेड है आप, कुछ करिए। इतना ज्यादा सुन सुन के थक गया आप तो, पूरे का पूरे पे आपने मेरे वो पानी डाल दिया।
3: नहीं, अक्वायर्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट। बॉडी अक्वायर की, उसका ध्यान रखना, उसको हेल्दी रखना वेरी इम्पोर्टेंट। रिश्ते हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट, उनको प्यार से निभाना, अपना हर रोल, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूरेटली ट्रस्टी होकर निभाना। अपनी पोजिशन जो अक्वायर की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें और ग्रो करना है।
2: That is the responsibility also, na?
3: Of course. See, we have to acquire all these things. It's not that.
2: Acquire करके उसको संभालना,
3: बहुत अच्छे से संभालना है, बहुत अच्छे से निभाना है, हर रोल बहुत अच्छे से प्ले करना है। लेकिन हर चीज जो अक्वायर की, अगर उसको अनकॉन्शियसली मैं समझ लिया तो where will the problem come? Let's see what will happen. Suppose हमारी position है
2: जी,
3: हमारे करियर में जो हम कुछ कर रहे हैं उसको मैंने मैं समझ लिया कि दिस इज मी, सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ लाइक यू सेड, एवरीबडी टॉट अस दैट वी हैव टू बी द बेस्ट, तो वी हैव टू गो अहेड। अब क्या हुआ, ये मैं है, वो पोजीशन मेरी है, ठीक है, मैंने मैं से ज्यादा इस पोजीशन को इम्पोर्टेंट किया, विच मीन्स इस पोजीशन में आगे जाने के लिए मैंने यहां कुछ भी

0: कभी मीडियम, कभी बहुत अच्छी, कभी एवरेज, कभी वेरी बैड. तो इट्स अ वेरिएबल फैक्टर. लेकिन अब क्या कर दिया, आय को उस वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं किया. जब इधर की स्थिति उस वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंडेंट हो जाएगी तो यहाँ की स्थिति भी वेरिएबल हो जाएगी, मतलब हिलती ही रहेगी. लेकिन जब यहाँ की स्थिति बाहर के वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आपने क्या कहा कि चाहे कैसी भी गेम हो, योर आंसर इज द सेम. एंड दैट आंसर इज इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. मतलब यहाँ अच्छा फील हो रहा है इवन दो बाहर वॉज नॉट नेसेसरी परफेक्ट. बाहर परफेक्ट नहीं था, लेकिन अंदर अच्छा फील होना मतलब आई एम परफेक्ट, गेम वॉज नॉट परफेक्ट. लेकिन अगर गेम की सक्सेस को ही अपनी आइडेंटिटी बना ली तो गेम की परफेक्शन को ही अपनी परफेक्शन समझना शुरू कर दिया. आई एम गुड ओनली इफ आई प्लेड वेल. गेम की परफेक्शन मेरी परफेक्शन का पैरामीटर बन गई.
1: बचपन से सिखाते ना, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल.
0: बचपन से अक्वायर्ड ही सिखाया है. अब देखो क्या होता जाएगा.
1: ये तो देखो कितना जल्दी इसको एबीसीडी पूरा 1 to 10 आता है, 100 आता है. ये गुड बॉय है, गुड गर्ल.
0: इसने अक्वायर ज्यादा किया
1: वो गुड है.
0: अब ये करने से क्या हुआ, वो जो अंदर आए था वो क्या होता गया, वो और ही छुपता गया, क्योंकि हमने अपनी सारी चीजें बाहर ढूंढनी शुरू कर दी. एंड इन द प्रोसेस वी फॉरगॉट दैट आई. ये आई, ये एनर्जी जो ये सब कुछ कर रही है, जिसको हम हमेशा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, लेकिन वो आत्मा भी एक शब्द है. लेकिन शब्द में नहीं जाना है, उसकी कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, दिस गेम इज नॉट मी, दिस बिजनेस इज नॉट मी, दिस रिलेशनशिप इज नॉट मी, दिस इज ऑल माइन, दिस इज आई, द एनर्जी. एंड जीवन का मेरा पर्पस क्या है, आई हैव टू बी ब्यूटिफुल.
1: आई अगर आत्मा है तो आई तो ब्यूटिफुल होती ही है.
0: लेकिन ब्यूटी से हटना नहीं है ना फिर.
1: अच्छा तो आई हैव टू बी आई.
0: आई हैव टू बी आई द ओरिजिनल. मुझे सारा दिन आज ब्यूटी को अपने सस्टेन करना है. जैसे अगर फिजिकल, अगर हमने फिजिकल ब्यूटी पर सोचा तो हम ध्यान रखेंगे ना कि पूरा दिन अच्छा दिखना है. बीच बीच में जाएंगे, शीशे में देखेंगे. कॉन्शियसनेस, आई शुड बी नीट, क्लीन, परफेक्ट. अब यही अगर सारा दिन में हम यहाँ चेक कर लें कि कोई दाग तो नहीं लगा, मैं परफेक्ट हूँ, यहाँ की चेकिंग नहीं हो रही है.
1: मैंने ये कुर्ते की देखता हूँ, लगा हुआ तो नहीं है.
0: हाँ.
1: और उसको फिर बोलता हूँ धोबी को, थोड़ा इसको व्हाइटनर कम हो गया है, पीलापन आ गया है.
0: लेकिन वो पीलापन आ गया है उसका दाग हटाने के लिए अगर धोबी को गुस्सा करके बोल दिया तो यहाँ का पीलापन तो हट जाएगा लेकिन यहाँ कालापन आ जाएगा. विच इज मोर इम्पोर्टेंट, इट्स आई. आई हैव टू बी परफेक्ट. अगर ध्यान रखा पूरा दिन तो फिर जैसे वो आपने कहा गोल्फ की गेम में, पूरा दिन विल बी अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, इवन अगर बाहर की चीजें हमेशा परफेक्ट नहीं हुई. जब हमें ये याद रहेगा, ये कॉन्शियसनेस बनेगी. आत्मा शब्द हमने सुना है, सोल वर्ड हमने सुना है, स्पिरिट, बीइंग, लाइट, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, पावर, सब वर्ड्स हैं. ये वर्ड्स हमें मालूम है, हम बचपन से सुनते हैं. वर्ड मालूम है, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, क्या उसको जीवन में जीते हैं.
1: जैसे हम पूजा में बोलते तन मन धन सब कुछ तेरा है, और बाहर मंदिर से निकल के जो तुझ भावे साई भलीकार बोलते हैं, और क्या ऊपर से इतना गंदी बारिश आ रही थी, जो तुझ भावे अंदर बोला था, तेरी रजा में राजी, मंदिर के अंदर बोला था.
0: रजा लेकिन बाहर आकर तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही.
1: कहाँ रजा में राजी है. मैं खुद ही बाहर आके अगर मेरी गाड़ी के सामने कोई पार्क कर देता था उसको लात मारता था गाड़ी.
0: सेम चीज कि आत्मा वर्ड मालूम है, लेकिन सारा दिन में जब जीवन में एक दूसरे से आए तो क्या उस कॉन्शियसनेस से जिया कि आई द बीइंग मीटिंग अनदर बीइंग, आई द सोल टॉकिंग टू अनदर सोल.
1: पॉसिबल है.
0: पॉसिबल नहीं है.
1: नहीं है क्योंकि मॉर्निंग से देख लो आप बीवी से मिले तो कहाँ आप उसको सोल देखते हो. बीवी देखते हो फिर नौकर आता है, फिर शुरू काम में लग जाते, ध्यान जाता
0: काम में लग जाना तो ठीक बात है.
1: ध्यान ही नहीं जाता आप वहाँ, सोचा ही नहीं कभी कि मैं आई एम स्पीकिंग.
0: लेट्स सी कि फर्क क्या होगा. रोल से बात करने के बजाय सोल से बात करते हैं.
1: सिस्टर रोल जो है ना,
0: पक्का हो गया, कोई बात नहीं.
1: इतना पक्का हो गया कि मैं, मुझे नींद में भी कोई हिला के बोले तो मैं आई नो कि आई एम अ मैन. इतना पक्का आई एम अ सोल नहीं है ना मेरा.
0: रोल पक्का है, सोल है वो भूल चुका है. भूल चुका है,
1: 100% भूल चुका है,
0: 100% ही भूल चुका है. जितनी अक्वायर्ड लेयर्स होती गई, जैसे हमने पिछली बार देखा कि मैं कौन, मेमोरी वो भूल चुकी है. सपोज किसी की याददाश्त चली जाए, वो भूल चुका है मैं कौन हूँ, वो भूल चुका है ये
1: मैं
0: कौन
1: हूँ, तुम कौन है, सब भूल गए.
0: कोई बात नहीं, लेकिन फिर याददाश्त वापस भी तो आएगी. याद दिलाया भी तो जाएगा धीरे धीरे.
1: हाँ,
0: तो फिर आपको याद दिलाया जाएगा आप ये हैं. आप कहेंगे अच्छा ये हो, अच्छा. फिर थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे. फिर आपको कोई कहेगा ये आप हैं, यहाँ आप रहते थे, ये आपके घर के लोग हैं. तो धीरे धीरे
1: जहाँ जहाँ वो जाता है, जाता था या जाती थी, उसको
0: लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे.
1: हाँ.
0: क्यों करेंगे? क्योंकि जो वो एक्चुअली है, जो वो भूल गया है, वो मेमोरी में तो रिकॉर्डेड है. मेमोरी में तो रिकॉर्डेड है. अब वो क्या है, उसको वहां से इमर्ज कराना है. वो मर्ज्ड हो चुका है. इसी तरह आई द बीइंग, मैं आत्मा जो प्योर डिवाइन पीसफुल हो, वो मेमोरी में तो रिकॉर्डेड है. अगर नहीं होता ना, तो हम उन चीजों को बाहर ढूंढते ही नहीं.
1: सही बात है.
0: हमें पता ही ना होता कि पीस भी ढूंढनी है. हम अपने स्ट्रेस और टेंशन के जीवन में ही जीते रहते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अंडर ऑल एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशन, आई वॉन्ट पीस. Why are we looking for it? Because we've tasted it. And because we've tasted it, we want to taste it again. कोई चीज अगर जीवन में कभी अनुभव नहीं की होगी तो उसको ढूंढेंगे नहीं. ये डेफिनेट है. अगर अनुभव नहीं की है तो अब उसकी खोज नहीं होगी, क्योंकि मालूम ही नहीं है वो है क्या चीज. आज हम उसकी खोज कर रहे हैं क्योंकि we have tasted it. सिर्फ ये है कि वी हैव फॉरगॉटन इट, भूल गए हैं. कोई बात नहीं, फिर याद आएगा. फिर भूल जाएंगे सारा दिन में, फिर याद दिलाएंगे धीरे धीरे. वो जो इनेट है, वो बीइंग, उसकी कॉन्शियसनेस हमें सारा दिन में अवेयरनेस में आती जाएगी. हम अक्वायर्ड को फिर भी यूज करेंगे, लेकिन अब जो कॉन्शियसनेस होगी वो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होगी, रोल कॉन्शियसनेस नहीं होगी, पोजीशन कॉन्शियसनेस नहीं होगी, वो सोल कॉन्शियसनेस होगी. वही काम करेंगे. अब उसी कार में बैठते हैं, वही ड्राइवर होगा, वही रास्ते जाते हैं. चार लोग मिलेंगे, वो वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड मिला था, मैनेजर मिला था, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी मिला था और प्राइम मिनिस्टर मिला था. पिछली बार हम कैसे गए थे, हम रोल से बात कर रहे थे.
1: हाँ. उसको कमांडिंग वॉइस में ड्राइवर को बोला था.
0: हाँ. और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचते पहुंचते कैसे हो गए थे.
1: हाँ जी, कैसे, गुड मॉर्निंग सर, बट नरम हो गए थे. हाँ. रिस्पेक्टफुल हो गए थे.
0: रिस्पेक्टफुल होना इज डिफरेंट एंड फीलिंग स्मॉल इज डिफरेंट.
1: हाँ.
0: रिस्पेक्टफुल
1: और मैं छोटा हूँ.
0: हाँ. इन ओ हो जाना और प्रभावित हो जाना, स्मॉल फील करना इज डिफरेंट, रिस्पेक्ट इज डिफरेंट. अब उन्हीं चार लोगों से मिलते हैं, लेकिन रोल कॉन्शियसनेस की बजाय सोल कॉन्शियसनेस से चलते हैं. तो गाड़ी में बैठे एक आत्मा है जो मेरा ड्राइवर का रोल प्ले कर रही है. उसका रोल है, उसको गाड़ी चला के लेके जाना है, मुझे पीछे बैठना है. उसको रास्ते में मुझे बताना भी है कि ऐसे नहीं चलाना, दिस इज नॉट राइट टू टेक केयर, सब कुछ करना है. लेकिन अब हम ड्राइवर से नहीं बात कर रहे, आत्मा से बात कर रहे हैं. मैं मालिक ड्राइवर से नहीं बात कर रहा, आई द सोल टॉकिंग टू अनदर सोल. विल देयर बी एनी डिफरेंस?
1: बहुत फर्क पड़ेगा.
0: व्हाट विल बी द डिफरेंस?
1: इक्वल उस पर बात करेंगे.
0: पहले क्या हो रहा था?
1: छोटा बड़ा था.
0: छोटा बड़ा था. पहले जब ड्राइवर से बात कर रहे थे तो हम बड़े थे. वो छोटा था. जब हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचे, वो बड़े थे, हम छोटे थे. तो हमेशा हम अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्टेड थे. अब हम चाहे ड्राइवर से बात करें, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर से बात करें, बात किससे कर रहे हैं,

0: soul to soul.
1: And then, even when you're talking to the Prime Minister, you will not be giving respect to his role, you will be giving respect to him or her, the person. आज हम व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे
0: और वो कुर्सी से हट जाए तो भी वो ही करेंगे फिर आप
1: एब्सोल्युटली
0: इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन
1: दैट इज इट क्योंकि आप सम्मान पोजीशन को नहीं दे रहे थे कुर्सी को नहीं दे रहे थे आप सम्मान उस व्यक्ति उस आत्मा को दे रहे थे तो अब आपकी रिस्पेक्ट वेरिएबल नहीं है
0: जब वो नहीं रहता है तो देखो दुनिया कैसी है आज कोई आता ही नहीं मेरे घर कोई पूछता ही नहीं अब मैं बीमार होता तो 100 लोग आके खड़े होते थे दरवाजे पे
1: तो जैसे ही कुर्सी गई पोजीशन गई तो वो जो सोच रहे थे कि खुशी हम अनुभव कर रहे थे वो भी चली गई तो वेरिएबल हो गया तो इनेट जो आय है वो तो खुश नहीं है वो तो अब डिप्रेशन में भी जा सकता है क्योंकि उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा अब जो पहले मिल रहा था
0: कितनी फीमेल एक्ट्रेसेस हो या मॉडल्स हो जैसे उनका चेहरा वो होने लगता है डिप्रेशन में आ जाते हैं
1: क्यों
0: आई वॉज सो ब्यूटिफुल आई
1: इट्स बिकॉज आई एम नॉट ब्यूटिफुल एनीमोर
0: मेरा स्किन
1: चेहरे पे रिंकल आ गए मेरे बाल सफेद हो गए वो आए तो मुझे लग रहा है आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम ब्यूटी बट आई वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस ब्यूटी
0: But कितना पेन के थ्रू जाते हैं कई औरतें तो
1: एनी इट कैन हैपन टू अ मेल
0: आल्सो आई मीन
1: इट कैन हैपन टू द सोल इफ दे आर नॉट कनेक्टेड टू देमसेल्व्स ये किसी के साथ भी हो सकता है जो अपने आप को नहीं पहचानेगा जो उसने अक्वायर किया उसको ही मैं समझेगा उसमें खुशी और पावर और पीस और प्यार को ढूंढेगा क्योंकि वो चीजें वेरिएबल हैं वो आज है कल नहीं है उस पर डिपेंडेंसी हो गई तो जब वो हिला यहां भी सब कुछ हिल जाएगा लेकिन अगर कॉन्शियसनेस राइट है कि आई द बींग ब्यूटिफुल परफेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इटर्नल ये सब
0: ना वो बूढ़ा होता है ना यंग रहता है ना गरीब होता है ना अमीर होता है
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट ना वो मरता है
0: अच्छा
1: मरता भी तो नहीं है ना फियर ऑफ डेथ सबसे ज्यादा है सूक्ष्म सूक्ष्म जितनी चीजें हम अक्वायर करते हैं उससे अटैचमेंट होती है उस हर चीज को खोने से हम डरते हैं पोजीशन ना चली जाए मेरी प्रॉपर्टी ना चली जाए मेरे परिवार या किसी फैमिली मेंबर को कुछ ना हो जाए डीपेस्ट फियर मुझे कुछ ना हो जाए
0: मतलब इस मुझे कुछ ना हो जाए अगर इसलिए अगर हम सोचें कि मेरी बीवी बच्चों को तकलीफ होगी अगर मुझे कुछ हो गया सपोजिंग वो भी फियर है क्या
1: वो भी फियर है बिकॉज
0: बट ये थॉट इज फॉर अदर्स नॉट फॉर माई सेल्फ
1: बट व्हाट विल हैपन
0: आई एम रेडी टू डाई लेकिन मेरे
1: व्हाट विल हैपन बाय रेडिएटिंग दैट फियर एंड एक्सपीरियंसिंग दैट फियर
0: आई एम जस्ट आस्किंग अ डिफरेंस बिटवीन
1: समथिंग विच इज
0: होता है कि मैं ही नहीं मरना चाहता
1: हाई मैं समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन
0: हाँ लेकिन मैं कोई लोग क्या सोचते हैं कि मैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे चिल्ड्रन मेरी वाइफ उनको तकलीफ होगी अगर मैं चला जाऊंगा तो दूसरे के लिए अगर ये फेयर है या खुद के लिए
1: मुझे ये शरीर छोड़ना ही है
0: कब छोड़ना है मालूम नहीं
1: हमें नहीं मालूम है लास्ट टाइम हमने वो ऑब्जेक्ट पकड़ा था वो छोड़ना है वो गिरना है लेकिन जितना समय मिला है वाई क्रिएट दिस थॉट के ये गिर ना जाए क्योंकि जैसे ये थॉट क्रिएट की फियर क्रिएट किया फियर रेडिएट किया यहां भी हिले यहां भी हिले यहां भी नेगेटिविटी एक्सचेंज की जाना ही है मुझे ये शरीर छोड़ना ही है इट डजंट मीन कि हाँ ठीक है इसका ध्यान नहीं रखो छोड़ना है ध्यान पूरा रखना है लेकिन फियर कि इसको कुछ हो जाए या दूसरे को कुछ हो जाए देन आई हैव स्टार्टेड लिविंग इन फियर देन आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनलिटी
0: सिस्टर अब मुझे ये एपिसोड खत्म करना ही है बट नॉट विथ फियर
1: थैंक यू सो मच
0: ओम शांति
2: वी नीड टू एक्वायर ऑल आवर गोल्स एंड टेक केयर ऑफ द एक्वायर्ड लाइक अ ट्रस्टी बट नॉट मेक द एक्वायर्ड आवर आइडेंटिटी व्हेन वी फॉरगेट that I am the soul, we start looking for perfection, happiness, power, love, which are the qualities of the soul.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में करियर ऑप्शन में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग विशेष बात करने वाले करियर इन मैजिक। जी हाँ, मैजिकल करियर भी बोल सकते हैं आप। और पिछली बार जैसे कि हमने बातें की थी डॉक्टर संदीप शेलके जी से होम्योपैथी के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में, और खास उसमें मेडिकल में होम्योपैथी किस तरह से काम करती है, होम्योपैथी में कैसे करियर बना सकते हैं, होम्योपैथी के क्या चैलेंजेस हैं, इस विषय को लेकर विस्तार से आपसे बातें की थी। तो आज हम लोग एक और नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं कि मैजिक यानी जादू सीख के अपना करियर कैसे बना सकते हैं, अपने जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरह से लोगों की दुआओं के साथ में, है ना। किसी को खुशी देकर, किसी को हंसा कर, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट पाकर अगर आप अपना कमाई कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो आइए आज ऐसे ही एक बड़े मैजिशियन से आपकी बातचीत कराने वाला हूं, प्रशांत भावसार जी से। आप नागपुर से हैं और पिछले काफी समय से जो है ये काम कर रहे हैं मैजिशियन का, और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं आप। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने बताया कि आप मैजिक का काम करते हैं, मैजिक वर्कशॉप भी करते हैं, सिखाते भी हैं। तो मुझे बड़ा जिज्ञासा हुआ कि क्यों ना हमारे रेडियो मधुबन को जो सुनते हैं, और खास शनिवार के दिन आपके लिए हम करियर वाला ये प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग फील्ड के बारे में बातें करते हैं। तो आइए, आप सभी की तरफ से प्रशांत भावसार सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति। प्रशांत जी कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा, बहुत खुशी।
2: जी, मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप समय दे पा रहे हैं हमें और आपसे बातचीत हो रही है। प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए हमें, अपने परिवार के बारे में बताइए विस्तार से।
3: जी, जादू का जो सीखा कैसा हुआ कि मेरे जो गुरु थे भावसार जी थे, मेरे अंकल थे वैसे वो, और उन्होंने जादू पर बना था नागपुर में मेडिकल कॉलेज से पास कर रहे। जादू जैसा था पता, जैसे एंट्री होते से ऐसा गेट खुल जाना, एंट्री होते से थाली बजे गेट खुल जाना, कार्पेट के ऊपर पैर जाना, खोपड़ रखी उसके ऊपर अपने आप बाल उगाना, बहुत कर लिया। ऐसे बहुत सारे कमेडी उन्होंने बनाए थे घर के पास ही बनाए उन्होंने जादू मार्ग, तो बहुत लोग आते थे वहाँ पे।
2: अच्छा,
3: तो बचपन में मैं वहाँ पे एक बार देखने के लिए गया, चीज क्या है देखते थे जादू ने क्या है। मदर खेल से हमने बहुत सारे देखे तो उत्सुक था, ये ऐसे गायब क्यों, ऐसे तुरंत दिखती है, तुरंत कैसे गायब होती है आंखों के सामने। तो जिज्ञासा मैं देखने गया जादू मार्ग पर, तो अंदर से मैंने बात किया, अंदर से मैं इतना हैरत अंदर जो अपने यह कला जो है वो अलग तरह की कला है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। सौ में से हार्डली दो तीन लोग इसे सीख पाते हैं, बाकी लोग देखते चले जाते हैं। मुझे लगा कि यार कुछ अलग बनना है अपने को, तो ये कला सीखना अति आवश्यक है। डांस ड्रॉइंग पेंटिंग है तो कोई भी करता ना, कॉमन चीज है,
2: लेकिन
3: मैजिक को ना कुछ अलग कास्ट के करे अपन। तो मैंने वहां पे ज्वाइन किया, उनसे बात किया, जब भी उनके शो रहते थे, बड़े बड़े शो करते थे वो, जो उनके सामने रहता था, तो ऐसे में धीरे धीरे उनके सामने में रहते बस सीख गया। और कुछ अलग रह गया, अपने अलग हटके कर रहे हैं
2: बिल्कुल,
3: और अपनी पॉपुलरिटी भी जल्दी बन गई कि अरे वाह इतना अच्छा कम समय में ऐसा मेजर मंगे स्टेज शो कर रहा है, तो उसे प्रसिद्धि भी अच्छी मिली, पैसा भी अच्छा मिला और भावना भी अच्छी हुई। काफी अच्छा लगा कि लोग फील्ड अपने चॉइस किया करें, लेकिन उसको प्रैक्टिस काफी ज्यादा है। और पहले आज से कुछ साल पहले जादू टोना जादू अलग अलग मुलुक मानते थे।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: जादू कला इसको बहुत कम मानते थे, जादू टोना करना।

0: मुझे गलत करना है, ऐसा उसको लोगों ने दिले दुमाग देता। लेकिन जादू कला में ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर तो कोई नाता नहीं है उसका जादू टोने को लेकर, और उसमें गलत हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल
0: है ना, तो वो सब कला है जिस लोगों को हंसी मनोरंजन हम लोग करते हैं, लोगों के चेहरे पे हम लोग स्माइल ला देते हैं अपने अटेंड के जरिए, अपने स्पीच के जरिए।
1: जी
0: तो काफी अच्छा लगता है कि लोग सराहते हैं, लोग मान सम्मान देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मेरे परिवार में भी दो तीन लोग हैं जो इसको चला रहे आगे। मैं वर्कशॉप लेता हूँ, मैजिक का वर्कशॉप लेता हूँ, अभी भी लिया नागपुर में भी लिया, और हमारे नागपुर में जामठा में ब्रह्म कुमारी जो विश्व शांति सरोवर, वहाँ भी वर्कशॉप लिया बच्चे बच्चों के लिए वगैरह।
1: बिल्कुल।
0: जो भी गया तो बहुत अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज को। कला है ना, कला कला कला सर कैसे, कला कोई भी सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कला में कोई उम्र का बंधन होता ही ना।
1: हाँ,
0: 5 साल के ऊपर जिसे समझ में आए तो सभी कर सकता है, छोटा बड़ा बुजुर्ग कोई भी कला को सीख सकता है।
1: जी जी जी,
0: ये ऐसे ही है, जादू कला भी है।
1: प्रशांत जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आपका जो वीडियो है सरोवर का वो मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा, आपने उसमें अध्यात्म को भी जोड़ा है, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वो बताइए, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं?
0: वर्तमान मीडिया से जुड़ा हूँ, नागपुर का महाराष्ट्र का नंबर वन दैनिक पेपर है नवभारत, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ कम से कम 25 साल से, और उनका भी सहयोग मुझे बहुत बार रहता है। मैजिक शो में संडे को मुझे छुट्टी रहती है, तो संडे के दिन मैक्सिमम मैं मैजिक शो करता हूँ, और वहाँ से मुझे ऑफिस में जगह कॉपरेशन मिलता है, वहाँ भी मेरे शो हो चुके हैं।
1: अरे वाह।
0: हाँ, ऑफिस में ऐसा है कि मेरे नाम से कुछ जानते हैं, जादू का नाम भी सब लोग जानते हैं। बोलेंगे प्रशांत माथा जी है क्या, तो कोई बोले कौन प्रशांत माथा पता नहीं, लेकिन आप बोले जादूगर है क्या, तुरंत
1: जादूगर एक ही है।
0: तो अच्छा लगता है, हम लोग को अच्छा लगता है, चलो अलग हटके तो कुछ काम कर रहे हैं अपन, और सभी लोग बोलते कुछ अलग हटके काम कर, लिंक करके काम कर, तो ज्यादा मजा आता है उस चीज में।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मुझे भी बहुत खुशी होती है, और मुझे भी, मैं आपके ब्रह्म कुमार परिवार से जुड़ा हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार, एक आध्यात्मिक तौर पे मैंने बाबा को लेके शोज करता हूँ, काफी जगह मेरे शो हो चुके हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल शो हो चुके मेरे।
1: जी जी जी।
0: हाँ जी, चीजें ऐसी है कि उसमें अपन अलग अलग फैसलों को यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो
1: प्रशांत जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, मीडिया से जुड़े हुए हैं और काम करते हुए साइड में आप मैजिशियन का काम करते हैं, लेकिन मैजिशियन आपकी एक पहचान भी बन गई, जो काम कर रहे हैं उसको सेकेंडरी हो गया और मैजिक आपका प्राइमरी हो गया, फर्स्ट हो गया, तो लोग आते हैं तो आपको एज ए जादूगर ही आपको याद करते हैं और पहचान देते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक जो है स्टेटस बन जाता है, एक नाम आ जाता है।
0: जी,
1: तो आइए इसके इसी विषय को लेकर आगे और बात करते हैं, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही है प्रशांत भावसार जी से और मैजिक के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैजिक आपने कितना समय लगाया सीखने में और कैसे आपने इसकी स्टार्टअप किया? आप अपने जो गुरु से शुरू किया है, जो चीजें देखा वही से आपको लगा कि ये नया चीज है, इसको सीखना चाहिए, तो कितना टाइम आपको लगा? थोड़ा सा अपना अनुभव भी शेयर कीजिए। कुछ चीजें जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ चीजें हो सकती है इसमें, तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत वाली आपकी एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिए।
1: जी, हालांकि मुझे इसको 20-25 साल से मैजिक शोज में कर रहा हूँ और शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ है मुझे, क्योंकि समझ में आता कि क्या करें, लोग उसको उल्टा पुलटा कुछ बोलते थे उस चीज को, जादू तो मैं करता, ये करता, वो करता, तो चिढ़ाते भी थे। लेकिन जब उनको पता लगा कि अरे ये तो कोई आसान चीज है, अपन भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, धीरे धीरे वर्कशॉप लगा, धीरे धीरे सीखना चालू किया, तो काफी लोग परिवार जुड़े कि नहीं यार हमारा बच्चा भी कर सकता है। जो आप सुनते बड़े बड़े शो देखते हैं, आदमी काटते हैं, पीटते हैं, गायब कर देते हैं, जो उनको अलग था, लेकिन जब उनको सिखाया ये सब ठीक हुए, ऐसा कुछ ही नहीं होता है, ट्रिक के जरिए सब हम कर सकते हैं। फिर मानवीय हलचल से सब कुछ होता है, तंत्र मंत्र जादू में कुछ होता नहीं है, एक जब उनको दिमाग में बात डालते तो फिर धीरे धीरे सब लोग आने लगे, सीखने लगे। और आज भी हमारे नागपुर में कम से कम 50 मैजिशियंस है, उसमें ये 25-30 को मैंने सिखाया है और वो रेगुलरली शोज कर रहे हैं, ऐसे कमा भी रहे हैं, उनके परिवार में भी लोग इन्वॉल्व हेल्प करते हैं और उनको पता लगे है जादू को तंत्र मंत्र होता नहीं, फालतू बकवास बातें हैं, इसे बोलने की बात है, अलग ही कला है और कुछ नहीं, इसलिए वो काफी लोग अगर सीख रहे हैं, वो कर भी रहे और अच्छा रोजगार का अच्छा जरिया है ना ये, क्योंकि आजकल हर जगह पार्टी होती है, इवेंट्स होते बड़े बड़े,

0: शादी ब्याह हो, बर्थडे हो, किटी पार्टी हो, हर हर प्रोग्राम में मैजिक का भी लोग रखते हैं उस चीज को। ये अलग हटके कला है और मैजिक ऐसी कला की फैमिली देख के पूरा फैमिली देख सकते उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें एक नवीनता पूर्ण होती है और फालतू की कुछ नहीं होती वहाँ पे, प्योरली अच्छा मनोरंजन होता है, फैमिली इंटरटेनमेंट होता है उसमें। इसी वजह से आदेश करते हैं और हर संडे सैटरडे फेस्टिवल्स में हम लोग ऑलरेडी बुक हो जाते हैं, एक एक महीने से हम लोग बुक हो जाते हैं वहाँ से फेस्टिवल आया तो कोई भी। हाँ, अभी गणपति का शो रहे, अभी दुर्गा ऐसे फेस्टिवल चालू हो जाएंगे, अभी तो सब मैगजीन बुक रहते हैं। कभी कभी कोई भी मैगजीन एक एक दिन में दो दो तीन शो करते, सब क्या करते वो। हाँ, और पैसा अच्छा कमाते वो लोग।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वर्तमान में वो है की युवा को भी मेरा बोलने का मतलब है की आप इस मैजिक फील्ड में आइए, सीखिए और कमाइए। हाँ, कोई भी स्वच्छता सीखने के लिए तो उम्र होते नहीं ना सर, कोई भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, जेंट्स हो, लेडीज, कोई भी सीख सकता उसमें।
1: जी जी जी,
0: आपको मैं बता दूंगा मैजिक में फर्स्ट टेस्ट बीबी जिसका नाम है कृतिका पारेख, अहमदाबाद की है वो, फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट टेस्ट बीबी हो, फेमस मैजिशियन है।
1: अच्छा,
0: फेमस मैजिशियन, इंडिया फर्स्ट टेस्ट बीबी कृतिका पारेख नाम है उसका। वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा मैजिक करती है।
1: अच्छा,
0: और बहुत अप्रिशिएट करते, बड़े बड़े शोज करती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि कुछ आपने गुरु के बारे में जरूर बताइए जिनसे आपने सीखा, उनकी क्या हॉबी थी, कैसे वो आपके साथ जुड़े और किस तरह से उनके कौन कौन से शोज आपने देखे और किस तरह से वो काम करते थे, उनकी विशेषता क्या थी, वो थोड़ा सा बताए।
0: हाँ, तो मेरे गुरु जी सुनील भावसर जी थे, वो मेरे अंकल लगते थे और वो भी मैंने सर्विस करते हुए उन्होंने मैजिक को डेवलप किया। वो छोटे गांव से आए थे वो नागपुर में, तो उनको भी लगा कि अपन सर्विस तो करते रहते, सर्विस में कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन हम तो कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है जिंदगी में, खुद के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। तो उन्होंने जादूगर बनाया जिनके जरिए मैं खुद वहां सीखा और आगे बढ़ा। और उनके बड़े बड़े शोज करते थे वो भी, जिनका उनका एक ऐसे था कि बॉक्स में अंदर उसको डाल देते, फिर वो बॉक्स तालाब में डाल देते और फिर वो बॉक्स में अपने बांट देते। ऐसे बहुत सारे विषय रहते हैं उनके, एक बॉक्स में बंद करके वहां बंद सुखा देते थे उनको, तो लोगों के बीच में आ देते थे।
1: जी जी जी,
0: कागज फाड़ के बहुत सारे नोट निकाल देते थे, कबूतर, खरगोश, ऐसे कबूतर खरगोश ऐसे निकाल के लोगों को मना नहीं करते थे। तब बैन नहीं था, अभी बैन हो गया उसके ऊपर, तो पहले बैन नहीं था, तो उनमें खरगोश है, कुछ भी है निकाल देते थे, अच्छा लगता था उनको, बच्चों को। आज से 20-25 साल पुरानी बात है वो, 25 साल पुरानी बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हमारे गुरु सुनील भावसर जी को तो उन्होंने वहां पे बहुत सहयोग किया और उनके बदौलत से आज मैं इस तरह आज भी मेरे भी खुद के वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने भी एक नया कार्यक्रम किया, मैंने आंखों पे 12 पट्टी नकाब पहन के नागपुर से वर्धा सेवा ग्राम और फिर रिटर्न नागपुर, ऐसे 17 स्पीड से बाइक चलाई मैंने।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: हाईवे पे, हाईवे पे
1: पट्टी बांध के,
0: आंखों पे 12 पट्टी और नकाब बांध के गाड़ी चलाए, वो हाईवे पे, वो भी 17 स्पीड से बाइक चलाई। हमारे यूट्यूब पे आप देख सकते, नजीम प्रशांत भावसर नाम से ब्लाइंड फोल्ड यूट्यूब पे लाइव है मेरा, तो वो रिकॉर्ड बन गया। तो वो भी अपने एक साहस पूर्ण काम किया जिसको अंजाम दिया। तो
1: बताइए मुझे कि हम लोग, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बताया कि आप बाइक जो है आंखों पे पट्टी बांध के, वो भी 12 पट्टी बांध के चलाए, तो ये क्या प्रैक्टिस तो होगी आपकी, कितना टाइम लगा
0: प्रैक्टिस? काफी कम से 10-15 साल लगे।
1: अच्छा,
0: तब बिल्डिंग का बड़ा काम थी, हाईवे रोड पे
1: देखिए, और थोड़ा सा भी आग बंद करते हैं तो हमारा बाइक इधर उधर हो जाता है।
0: आजू बाजू लोग चल रहे, आप ले सकते पूरा 1000 लोग आजू बाजू खड़े हैं, बाजू में ट्रक चल रहे हैं, बाजू में गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, देख सकते आप यूट्यूब पे देख सकते। मैंने प्रशांत वहां से ब्लाइंड फोन के नाम से, और कंटिन्यू लाइव था ना वो, उसमें तभी रिकॉर्ड बनता है, कंटिन्यू चाहिए, बीच में ब्रेक, एक मिनट का भी ब्रेक नहीं चलता उनको, तो कंटिन्यू चाहिए, तो वो पकड़ नहीं पाया मैं कितना ट्रिक होने के बाद
1: में,
0: इतना स्पीड से मैंने सक्सेसफुल किया उसको, और वो मुझे रिकॉर्ड पत्र मिला उसका, रिकॉर्ड का। तो वो ऐसी की कला ऐसी है कि जोखिम भरी है, इतनी अच्छी भी है, तो लेकिन प्रैक्टिस हो जाता है वो।
1: एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे,

0: जी, हमारे जीवन में ऐसे कुछ चैलेंजेस हम लोग ले रहे हैं
1: जी, तो चैलेंजेस के बीच में जो है जोखिम भी लगता है, तो जोखिम से लोग डरते हैं कभी कभी, है ना?
2: जी हाँ बिल्कुल सही।
1: तो क्या अभी इन चीजों को, जैसे आपने बाइक वाला, ये तो एक्स्ट्रा में ही है शायद, नहीं मेरे ख्याल से
2: हाँ, ये एक्स्ट्रा
1: हट गया। हाँ, तो स्टंट हो गया आपका, कुछ
2: स्टंट हो गया वो जी,
1: ठीक है ठीक है। तो ये मैजिक से अलग है।
2: हाँ जी, हाँ जी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: स्टंट मैजिक बोल सकते उसको,
1: स्टंट मैजिक बोल सकते हैं।
2: काफी लोग करते, क्योंकि काफी कम लोग स्टंट मैजिक करते, क्योंकि उसमें जान जाने की बहुत बड़ी संभावना होती है। इस बार या उसमें दुई लेवल, उसमें ये तो आप कर पाए तो जीत गए, नहीं कर पाए तो खत्म हो गए आपका विषय। काफी लोग की डेथ हो चुकी है उसमें, केरला में हो चुकी है, केरला में हो चुकी है, बेंगलुरु में हो चुकी है, दो लोगों की डेथ ब्लाइंड फोल्ड के चक्कर में। थोड़ी भी गलती होगी तो सीधा नाले में सीधा कहीं भी घुस गए, तो ऐसा हादसा हो चुके हैं
1: बहुत ज्यादा।
2: तो मैं भी डरते हुए तो प्रोग्राम किया और सक्सेसफुल रहा
1: बहुत,
2: जिसे सबने तारीफ किया मुझे।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको कांग्रेचुलेशन, बहुत शुभकामनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं, और मैजिक की बातें चल रही थी, तो जैसे कि आप उनके बारे में, अपने चाचा जी के बारे में जिन्होंने आपको सिखाया, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने जिक्र किया, जैसे वो टाइम पे वो करते थे, तो वो अभी भी है आपके साथ?
2: नहीं, अभी डेथ हो गई उनकी।
1: अच्छा, उनकी डेथ हो गई,
2: कल 20 साल के ऊपर हो गई उनकी डेथ हो गई।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो
2: उनका नाम आज भी बरकरार है, जादू आज भी लोग याद करते हैं चीज को।
1: तो उनका जो आखिरी लास्ट में उन्होंने कुछ इल्यूशंस वगैरह भी यूज करते हैं जादू में, वो क्या है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और वो चाचा जी ने कुछ इल्यूशंस या कुछ अलग माइंडस्टोन उन्होंने अपने मैजिशियन में, मैजिक के कार्य में किया हो, तो वो हमें बताइए थोड़ा सा।
2: वो तो एक इल्यूजन उन्होंने किया था, जो उनको उनको एक बक्स में बंद करके डाल दिया था, और हम तालाब में उसको क्रेन से डाल दिया था, बांध के अगर कोई रस्सी से, फिर वो बाका का, फिर उन्हें खुद को छुड़ा के, हथकड़ी छुड़ा के, खुद को बांध के बाहर निकाल के वो तैरते हुए बाहर आए थे। वो
1: अरे
2: वो हजार लोगों के सामने वो प्रोग्राम किया था उन्होंने, 2 साल पुराने बात है, 20-25 साल पुराने, तो उसका स्टंट था वो। और एक आग के ढेर में उनको ऊपर से डाल दिया था क्रेन से, तभी वहां से वो बाका का सही सलाम आए थे। तो ऐसे स्टंट किया है, तो ऐसे स्टंट मैजिक स्टंट क्या थोड़ा सा खतरनाक भी होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन जब सक्सेस होगा तो आपकी वापस बहुत होती है उसमें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: जैसे मैंने कहा कि मैंने स्टंट किया ब्लैक,
1: इसमें तो पूरा माना डेरिंग और थोड़ा भी गलती नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो आपकी प्रॉब्लम।
2: आप थोड़ा आंखें बंद करके यहाँ से बाहर जाने के, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते आंखें बंद करके।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ऊपर तो मेरे 12 लोगों ने माता के गेस्ट आए थे, 1000 लोगों के सामने किया, और नकाब उसके ऊपर नकाब, जैसे लोगों ने चेक किया, लोगों ने चेक करने का उन्हें बांधा, उससे मैंने बाइक चलाया बंदा, वो भी 24 आवर्स ऑनलाइन था, वो कैमरा वगैरह 4-5 कैमरे थे, कैमरे से भी लोगों के बीच में ट्रिक करना और
1: कंटिन्यू चलाना, अपने
2: कंटिन्यू चलाना, वापस आना, और थोड़ी भी उसमें गलती होती तो मेरा भी काम तमाम होता।
1: लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हमने कहीं वीडियोस देखा था बेंगलोर या कर्नाटक में, तो एक आदमी उड़ता है, लड़का उड़ता है बहुत, तो क्या ये रियल में उड़ने जैसा कुछ है क्या, जादू से उड़ते हैं क्या लोग?
2: नहीं नहीं, जादू से उड़ते तो मैं यहाँ से तुरंत माउंट आबू आ गया होता ना, क्यों ट्रेन का और प्लेन का खर्चा करता मैं भाई, तो ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं है ट्रिक है वो, उसको वीडियो ट्रिक बोल सकते हैं आप, तो कोई हरकत नहीं। पीछे में उनका एक पर्दा लगा हुआ था, वो वैसे टेबल से टेबल उड़ते हैं, और पीछे में जो बैकग्राउंड होता है वो चेंज करते हैं। अच्छा, पूरा कैमरा ट्रिक होती है।
1: अच्छा, पूरा कैमरा ट्रिक है,
2: कवर कैम, ताजमहल गायब करना, कुतुबमीनार गायब करना, ट्रेन गायब करना, ये भी जो स्टंट है ये सिर्फ ट्रिक होती है और कुछ नहीं।
1: अच्छा,
2: हाँ, ये सामने जो जिसको बोलते इंटेलिजेंस या जिसको दृष्टिभ्रम जिसको बोलते ना, कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाना और वो चीज दूसरे शिफ्ट कर देना, ऐसे कुछ तो वो ट्रिक होती है बस, और कुछ नहीं था। और वास्तव में लोग उड़ते आते तो फिर हम कहीं भी उड़ सकते थे ना, पेट्रोल पानी का खर्चा बढ़ता सरकार का, सब लोग फ्री में उड़ा करते, चलो भाई हम आपके साथ भी उड़ते थे करके, हम भी उड़ रहे आप भी उड़ो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ट्रिक होती है, वो ट्रिक बस उसके लिए भी काम नंबर होता है, काफी खर्चा करना पड़ता है उस ट्रिक के पीछे में। वहाँ के लोग अपने 99% वहाँ जो ऑडियंस जो है वो अपने लोग चाहिए वहाँ पे, जो हवा करे सीरीज।
1: बिल्कुल,
2: बाकी बाहर लोग एंट्री देते हैं उसमें, तो बाहर लोग एंट्री तो पकड़ में आएंगे ना ट्रिक क्या है, तो
1: सही बात है, सही बात है।
2: तो 99% अपने लोग चाहिए वहाँ पे।

0: भावा कर सके,
1: हाँ
0: और ट्रिक है कि जरिए वो कर सके ऐसा
1: बिल्कुल
0: कारनामा।
1: बिल्कुल
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: फॉरेन में काफी काफी लोग करते हैं, अपने इंडिया में भी बहुत लोग करते हैं।
1: हाँ
0: अब जो आंखों से जितना जो दिखता है वही सही मानेंगे ना, ऐसी बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ऐसा कुछ होता है रियली में, ऐसा नहीं होता है। हमें उड़ना वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, योग वगैरह बात ही नहीं हो।
1: जी
0: अब
1: जी जी जी
0: पुराने सभी पुरानी बात अलग बात थी, सब सात्विक काम था, सब अच्छे लोग थे उस समय उस युग में। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं,
1: जी
0: अभी
1: जी जी
0: के जरिए वो लोग करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हम लोग भी ट्रेन वगैरह करते, कुछ चीजें गायब कर देते हैं, तो वो उस समय के लिए था ना, उस समय के लिए।
1: हाँ, वो सब कुछ सेकंड का खेल है। बिल्कुल
0: हाँ, कुछ सेकंड में खेले, और वो भी
1: बिल्कुल
0: मैक्सिमम ऑडियंस अपने लोग रहते हैं वहाँ।
1: अच्छा, सही
0: वास्तविकता है,
1: बात है,
0: लेकिन
1: सही।
0: जो ब्लाइंड शो जो मैंने किया वो रियल रहता है, वो साहस पूर्ण काम है, ड्रिंग वाला काम है। तो
1: हाँ, चलिए, बहुत
0: ये
1: अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे यूथ है, वो अगर अपना पढ़ाई वगैरह करते हुए इन चीजों को सीखना चाहे, पार्ट टाइम वगैरह, क्या सीख सकते हैं?
0: हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। वो उसका कोर्सेस है, बाका था, फर्स्ट बेसिक कोर्स होता है, जिसमें 5 साल के बाद में कोई भी लड़का लड़की को होता है। बेसिक कोर्स में क्या होता है, घर की जो चीजें होती हैं, जैसे पेंसिल है, ग्लास है, पेपर है, करेंसी है, मैच बॉक्स है, तो घर की जो चीजें उसे जो अपन मैजिक सिखाते हैं, बेसिक कोर्स वो कम से कम 10-15-20 दिन का रहता है वो। तो बेसिक चीज में सीखने के बाद आप आधे आधा घंटा कर्म कहा भी छोटे मोटे पार्टी में आप शोज कर पाते हो। बेसिक
1: अच्छा,
0: कोर्स वो फर्स्ट होता है।
1: फर्स्ट
0: बाद में सेकंड होता है एडवांस मैजिक, जिसमें आप कम से कम 2-3 हजार पब्लिक रही तो भी वो इजिली सीख सकता है। उसमें कुछ इलेजर्स होते हैं, कुछ आइटम भी होते हैं, तो
1: अच्छा,
0: जो प्रैक्टिस है उसको कम से 2 या 3 महीने लगते हैं सीखने के लिए। और
1: हाँ,
0: उसके बाद थर्ड लास्ट जो कोर्स है प्रोफेशनल मैजिक,
1: अच्छा
0: जब
1: अच्छा
0: भी बड़े शो हम लोग करते हैं 2-3 घंटे के, तब उसको जो सीखने लगे उसको साथ में लेके आते हैं, और
1: हाँ
0: उसको इलेजन बताते हैं वो इलेजन होता कैसा है
1: हाँ
0: और कैसे। क्योंकि मैजिक में सिर्फ छोटी 110 उंगली का कमाल है, जिधर की उंगली आपने उधर करते तो मैजिक फ्लॉप हो गया।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: मैजिक में नो वंस मोर, जैसे गाना है ना,
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: बिल्कुल
0: आपने गाना गलत गलत बोल दिया, टोनिंग अलग बोल दी गाने के, तो बोलते तो यार मैं दोबारा कर देता हूँ।
1: सही बात है। हाँ
0: ड्रॉइंग में गलती हो गया, ठीक है मैं सुधार दूंगा उसको, ठीक है। लेकिन मैजिक में एक बार ओपन होगी, सीक्रेट ओपन होगी तो ओपन होगी, उससे दोबारा मैं कर सकता हूँ उसको। तो उसे
1: बिल्कुल
0: सावधानी पर
1: बिल्कुल
0: भी उसे सिखाना पड़ता है। तो हम लोग उसके बाद आता स्टेज पे कैसे खड़ा रहना है, कैसे क्या बात करना है, कैसे डायलॉग वैसे करना चाहिए, कैसे एंगल से रहना चाहिए, आजू बाजू में लोग भी रहे तो भी उनके बीच में उनके कैसे सिगरेट छुपा के उसको प्रेजेंट करना चाहिए, सिखाते हैं हम लोग। तो कम से कम 5-6 महीने में जो व्यक्ति है वो अच्छे से ट्रेन होता है और आराम से शो कर पाता है, और कमाई भी
1: बिल्कुल
0: इसमें अच्छी है।
1: सही बात है। चलिए प्रशांत जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी जो सुन रहे हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। तो
0: हाँ,
1: आइए एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं कि इल्यूशन क्या है, इसमें कैसे काम होता है, और कितना आप मैजिशियन बनने के बाद कमाई कितना कर सकते हैं, वो सारी चीजें और आपके मन की भावनाओं को कोशिश करूंगा कि मैं ठीक से पूछ पाऊं प्रशांत जी से, और आपको पूरा एज ए मैजिशियन आप कितना समय में तैयार हो सकते हैं, वो सारे सवाल आपको जो है उसका जवाब मिलेगा आगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा जादूगर वाला गीत अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

बिक्री को बना दूर रस्सी, कॉफी को लस्सी, टोपी से निकालू टॉपी एक नहीं अस्सी। गिली गिली पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11।

छड़ी घुमाऊं करूं न कोई चोरी, आंख झपकते खोल दूं तारा या तिजोरी। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11 सर पे चढ़ के बोले जादू में साल है कर।

0: है रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर इन मैजिशियन के बारे में बातें हो रही है। मैजिक एक बहुत ही अच्छा जादू शब्द सुन के खुशी होती है सबको। और आप अगर जादू की कला सीखकर अपना करियर बना लेते हो, पैसा कमाना शुरू कर देते हो, तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मैजिक के साथ बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा मनोरंजन है, ये दुखी को खुशी कर देता है, उदास को सुख देता है, उदासी में हंसी ला देता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है दुआएं कमाते हैं इसमें, है ना। तो इसीलिए ये जो प्रोफेशन है ये हमेशा चलता रहता है, लोगों को खुशी प्रदान होती है। तो आइए, मेरे साथ फिर से प्रशांत जी जुड़े हैं और उनसे बातें हो रही हैं, और वो खुद एक मैजिशियन है और काफी लंबे समय से वो इन चीजों को कर रहे हैं। तो प्रशांत जी, अब बताइए कि जैसे हम लोग अगर नए बच्चे इसमें आना चाहते हैं इस फील्ड में और आ गए या सीख लिए, तो कम से कम उनको कितना टाइम देना पड़ेगा और कितने समय के बाद वो एक प्रोफेशनली कमाना शुरू करे, तो कहाँ से शुरू होगा, कितना होगा कमाई? जी
2: जी, तो वैसे उम्र का 6 साल के बाद आप तो इसमें कर सकते हैं। कोई भी कला हो तो उसको खुद का इंटरेस्ट होना अति आवश्यक है। उसको आप जबरदस्ती नहीं करते, ये करो तो खुद का इंटरेस्ट होना, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। मैजिक चीजें ऐसे की उसको हम लोग दो चीज बता सिखा दे तो

0: क्या चीज उसे अपने दिमाग से करना चाहिए। हार्डली हम लोग सिखा देते वैसे वर्किंग करते थे उसके ऊपर, तो कम से कम 5 या 6 महीने के अंदर दो तीन जो कोर्स हम करें तो पूरा कर सकता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: हालांकि तो नागपुर में तो कुछ ज्यादा ये डिग्री वगैरह नहीं है, नीचे कॉलेजेस नहीं है, लेकिन आप उधर में केरला में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, बेंगलुरु में जाइए, बॉम्बे में जाइए, कलकत्ता में जाइए, तो वहां तो बस कॉलेजेस है मैजिक के, वहाँ डिग्री नहीं थी उसकी।
1: अरे वाह,
0: बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है वहाँ पे और शो कंटिन्यू वहाँ चलते रहते हैं वहाँ पे।
1: अच्छा।
0: बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में हमारे नागपुर में कंटिन्यू शो चलते रहते हैं, क्योंकि फिर भी रहती हूँ आप ऐसे बड़े सिटी में जाओ। केरला में तो बात आता है मैजिक पार्क बनाया मैजिशियन ने, मैजिशियन मुचुपुर करके वहाँ का, तो पूरा पार्क बनाया कम से कम 40-50 एकड़ में, तो पूरा मैजिक के रिलेटेड वहाँ पे सब सिखाते भी है।
1: 40-50 एकड़ में?
0: जी हाँ, बहुत बड़ा एकड़ में उसने बनाया, गवर्नमेंट का उसको बहुत बड़ा प्रदर्शन मिला वहाँ पे, सपोर्ट मिला उसको।
1: अच्छा।
0: तो केरला में आप कभी भी जाइए तो मैजिक पार्क करके वहाँ पे है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: और बहुत सुंदर उसने बनाया, तो वहाँ पे डिग्री भी मिलती सिखाते हैं बाकायदा, और कलकत्ता पे भी डिग्री मिलती है उसकी बाकायदा। हर महीने उसको नए नए मैजिक के उसको एडमिशन करना पड़ता खुद चीज। आजकल सर इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता, हालांकि आपको मैजिक के आइटम को बाहर बाजार मिल जाएगी। आज आप 10 रुपए का कोई चिप्स का पैकेट भी उसके अंदर मैजिक आपको मिल जाएगा, बट उसको करने की कला जो हाउ टू प्रेजेंटेशन वो महत्वपूर्ण होता
1: है।
0: चाहे चीज छोटी या बड़ी उससे मतलब नहीं, लेकिन छोटी चीज में आप कल सर 10-15 रुपए आराम खींच सकते हैं, अगर आपने काबिलियत हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने की इच्छा हो या कुछ उसको नया बनाने की इच्छा हो तो कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कुछ, उस पर जब आप उसका कुछ बोल नहीं सकते, जितना प्रैक्टिस में उतना काम आएगा, जितना आप लोगों को दिखाएंगे उसका आपको आउटपुट मिलेगा। और कमाई तो इसमें अच्छी है, अभी भी हमारे नागपुर में काफी लोग बड़े बड़े शोज कर रहे हैं, आप बड़े मेट्रो में स्टूडियोज पुणे बॉम्बे कलकत्ता इधर उधर जहाँ भी जाए बड़े बड़े मैजिक में वहाँ पे अच्छा खाना करते हैं। 500-500 रुपए टिकट रहती होंगी, 5000 रुपए टिकट रहती होंगी, फिर भी लोग हाउस में छोड़ते हैं उनका।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत
0: केलाल जी है, जी केलाल जी है, प्रकाश जी है, उनको जो प्रोफेशनल शोज रहते होते हैं, जरूर आनंद जी है, उनका प्रोफेशनल 1000 रुपए टिकट स्टार्टिंग होती है, इसके बाद भी लोगों को भीड़
1: ज्यादा होती है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: उनको लाइन लगती है
0: जी। हमारे तो हमने भी जस्ट हमने मैजिक डे मनाया सर हमने नागपुर में, ये कम से कम 1 महीने पहले की बात है, तो वो हमारा हॉल कैपेसिटी का सर 2-3 हजार लोगों को दी।
1: अच्छा।
0: तो हमने मैजिक डे मनाया काफी नागपुर के अभी मिलकर शो किया वहाँ पे, तो हॉल के अंदर जितने लोग बैठे थे उससे डबल लोग बाहर खड़े थे।
1: अच्छा।
0: इतनी भीड़ थी, लोग पैसे ले भैया हमसे पैसे लो हमको अंदर जान दो हमको शो देखेंगे, ऐसी थी लोगों को हमने वापस बाहर से लोग वापस
1: गला
0: क्लियर थे। तो ये क्रेज है जादू का, अभी भी है और आगे भी रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो जिस तरह से बता रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग जब मेले में जाते हैं तो हर साल कहीं ना कहीं गांव में मेले लगते हैं, और मेले के अंदर जो है वो सारे जैसे कि बाइक चलाने वाले ये सब आते हैं, तो उसके साथ में मैजिशियन का भी एक शो लगा रहता है, वो पूरा पैक रहता है और बड़ा अच्छी तरह से लोग जो है टिकट खरीदते हैं, घंटे भर का शो रहता है, आधा घंटा पहले टिकट बिकती है और टिकट फुल होने के बाद फिर मैजिक शो शुरू हो जाता है, फिर ऐसे 2-3 शो करके मुझे लगता है कि 10-15 दिन का जो अगर मेला लग जाता है हफ्ते भर, तो कम से कम कहीं ना कहीं बड़ा मेला रेगुलर होता है किसी
0: 15-20 दिन तो चलते हैं मेले को।
1: हाँ, तो अगर 10 दिन भी आपने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल शो चलाया और आपको अच्छा कमाई हो जाता है, तो मेरे ख्याल से एक बार में पूरे साल भर का आपका खाने पीने का तो रह ही जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी कमाई
1: जाती है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। कमाई ऐसा नहीं है कि भाई आप आज ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करके अनुभवी बन जाते हैं और थोड़ा सा नाम हो जाता है, तो निश्चित तौर पे आपको जो है एक अच्छा कमाईने का जरिया भी मिल जाता है। और महीने में अगर आप 10 शोज भी कर लेते हो, हर शो का 4-5 हजार भी पकड़ लिया, तो 50-60 हजार रूपये आराम से आपका मिल जाता
0: आराम
1: है।
0: आराम से, आराम से।
1: और उसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं, आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो शोज रिपीट होते रहते, प्रोग्राम तो उतने ही चलने हैं जितना आपने सीखा है, तो आदत होने के बाद फिर वो तो आपके एक क्या कहते हैं कि वो नोटिंग हो जाता है, और उसको बहुत सिंपली तरीके से आप करते हो, लोगों को लग भी जाता है कि ये तो सचमुच मैजिशियन है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो ये चीजें हैं कि करते करते बहुत अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, और प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट ऐसा कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते, कि भाई जैसे अब जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, डिग्री कोर्स वगैरह का भी बात आपने कही, क्योंकि ये भी पहली बार मैंने सुना कि इसका भी कोई डिग्री कोर्स होता है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो प्रोफेशनली सब कुछ करना चाहते हैं तो पहले आप मैजिशियन को असिस्ट कीजिए अपने यहाँ के नजदीक में, और फिर सीखने के बाद आप छोटे मोटे जो शोज करना शुरू करेंगे, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप बकायदा जो है जैसे कलकत्ता है या बॉम्बे है जहाँ स्कूल्स है या कॉलेजेस है उसमें भी एडमिशन ले लेता, वहां पर भी आप जो है सीख के नए सीखने को मिलेंगे नई चीजें, और आप खुद उनसे कुछ नया बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगा आपको। तो फिर हो सकता है कि आप उसमें अगर कोई अच्छा चीज करके दिखाते हो तो वो भी आपका एक रिसर्च वाला मैजिक हो जाता है, तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे। तो उससे कई लोग सीखेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कूल के लिए कॉलेज के लिए भी एक नया जो है सिलेबस में चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको कमाई करने के साधन हैं और रुचि की चीजें हैं। तो इसके अलावा प्रशांत जी आपने कुछ सेवा कार्य भी इसके माध्यम से करते हो, तो उसके बारे में बताइए। कुछ मरीजों के लिए आपने मैजिक किया था हाल ही में, पेपर में आया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
0: तो
1: कि हम लोग इससे लोगों को जो है ना, एक सोशल सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो समाज में हम रहते हैं, समाज से हम कमाते हैं तो समाज को रिटर्न भी देना पड़ता है।
0: यस यस,
1: अगर आप कमाते हो तो उनको रिटर्न भी दो। हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में कमाएं, तो ऐसे गरीब बस्ती में जाकर उनको थोड़ा सा अगर
0: करते करते
1: है तो उनके मन पे जो खुशी होगी, उनको जो खुशी मिलेगा, वो अपने आप में एक जो है समाज को आप कुछ दे रहे हो अपनी कला के माध्यम से, इसका आपको मन जो है संतुष्ट या सुकून फील करता है।
0: बिल्कुल।
1: तो प्रशांत जी आपने ऐसा कुछ सोशल काम किया है
0: जी, अभी है, अभी जस्ट मैंने दो दिन पहले हमारे टुकड़ी कैंसर हॉस्पिटल है नागपुर में, काफी बड़ा है, जैन सेवा मंडल की तरफ से उनका जो क्रिटिकल पेशेंट जो कैंसर के जो लास्ट स्टेज पे होते हैं,
1: अच्छा,
0: जो आज है कल आए थे पता नहीं, तो उनके लिए मेरा शो हुआ था, मैजिक शो हुआ था, तो दो एक घंटे का मेरा शो आता है।
1: अच्छा,
0: अच्छा शो रहा है, सबने बहुत हंसी लाते चेहरे पे, बहुत खुश हो गए कैंसर के पेशेंट, और सबने बहुत दुआ दी, और इस तरह के शो काफी कर चुका हूँ सोशल वर्क में, और झोपड़पट्टी में जाके गरीब बच्चों को भी वहाँ सिखाया, उनको उनको मैजिक शो भी करवाया, और जितने भी एनजीओज है नागपुर में उनके लिए मैं नाम मात्र शुल्क पर मैं शोज करता हूँ, पैसा सर्वपरमी है, पहले भगवान जी ने अपने को कला दी है उसको उपयोग भी ऐसे होना चाहिए। मैं हर जगह पैसा बेचता नहीं, लोगों को खुशी था, लोग खुश होते तो अपन खुश है। और मैंने कुछ साल पहले भी माउंट अभी ब्रह्म कुमार जो मैं आगे वहाँ शो किया था, रतन मुनि दीदी के सामने शो किया, बहुत मुझे खुश हुई डायमंड हॉल में,
1: अरे,
0: और हारमोनी हॉल में भी शो हुआ मेरे, तो वहाँ पे मुझे रतन मुनि दादी ने बहुत प्यार दिया, लाड़ प्यार दिया, और आधा घंटे का शो मेरा बहुत अच्छा, सबने बहुत तारीफ किया।
1: जी जी।
0: और मुझे दोबारा आने के बाद इच्छा है, अगर बाबा ने मुझे बुला करेंगे तो मैं तुरंत वहाँ पे आ जाऊंगा शूज करने के लिए।
1: हाँ।
0: तो मैं चाहता हूँ मुझे वहाँ दोबारा बुलाए।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं आने के लिए रेडी हूँ वहाँ पे, और मुझे भी अच्छा लगता है कि सोशल काम में मेरी कला काम आ रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उनकी दुआएं मेरे साथ में
1: मिलती है। हाँ,
0: पैसा तो हर कोई कमाता, दुआ कमा चाहिए अपने भगवान जी को, ये बोलते दुआ कमाए, दुआ काम आ गई, तुम्हारे यहाँ दवाई काम नहीं, दुआ काम होती है, कहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अपना अच्छा कला भगवान जी दे तो उसका मैं उपयोग ऐसे कर रहा हूँ सोशल वर्क में, किसी भी संस्था के पास में बजट रहता नहीं पैसे का,
1: अपना
0: नाम बहुत हमने सुना है, जरूर करने की इच्छा है,
1: हेल्प करते
0: हैं। मैंने बोला आपको जो बन पड़ता हो दो दो ठीक है, आप मेरे शो रुको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वृद्धाश्रम हो गया, वृद्धाश्रम किया, अन्नाथालय हो गया, काफी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में शो कर चुका मैं, और जादू के जरिए मैं अंधश्रद्धा जो होती
1: का भी काम किया है,
0: वो भी काम इसे करे,
1: बहुत
0: मॉल में लोगों के डाउट्स भी क्लियर किए इस मैजिक के जरिए।
1: सही बात
0: जी।
1: चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आपने जो है मैजिक के बारे में बताया, करियर इन मैजिक के बारे में बताया, और मैजिशियन क्या कर सकते हैं वो आपने बताया, इससे समाज में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, समाज में क्या सेवा कर सकते हैं मैजिक के माध्यम से, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और कर भी रहे आप। तो चलिए जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे हमारे विद्यार्थी मित्रों को?
0: मैसेज मेरा ये है कि सभी मेरे युवाओं को, मेरे दोस्तों को ये है कि आप कोई भी कला को आप कम मत आंकिए, हर कला में श्रेष्ठता आप ला सकते हैं, चाहे अभिनय कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिस हो आप बड़ा बन सकते हो, लता मंगेशकर हो या अमिताभ बच्चन हो, तुलना चंद्रकर सर हो,
1: बिल्कुल,
0: तो प्रैक्टिस से वो लोग जितना आगे बढ़े, उन्होंने एजुकेशन से आगे नहीं बढ़े लेकिन प्रैक्टिस से आगे बढ़े, हालांकि देखा है उनका एजुकेशन बहुत कम है, उनका डिग्री नहीं कुछ नहीं, लेकिन आज वो कहां के कहां पहुंच गए। तो वैसे मैजिक कला भी जैसे केलाल जी सरकार जी हो चुके हैं, उनका भी रुतब आ रहा है मैजिक में भी, वैसे भी कि आप लोग इस मैजिक फिल्म में आइए, सीखिए, खुद को डेवलप करें और खुद को

0: लोगों को प्यार भी कमाइए और पैसे भी कमाइए। मेरा सबसे यही अनुरोध है, जहाँ भी कुछ तकलीफ हो मैं तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए सिखाने के लिए तैयार हूँ, ऑलवेज मैं आपके साथ हूँ और रहूंगा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपने संदेश के लिए। और आपने कहा कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र है सीखना चाहते हैं, उनको सिखाते भी है, वर्कशॉप भी आप कंडक्ट करते हैं और साथ साथ में सोशल वर्क भी आप करते हैं एनजीओ के साथ मिलकर। बहुत बहुत दुआएं आपको एंड थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने मैजिक के बारे में दिया। चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर प्रशांत भावसार जी हमारे साथ नागपुर से जुड़े और आप सभी को मैजिक के बारे में बताया। और आशा करूंगा कि आप सुनकर कहीं ना कहीं आपके मानस पटल पर विचार तो चल रहा होगा कि मुझे भी सीखना है। बिल्कुल सीखिए, आप देखिए, अगर कुछ आपको लग रहा है कि आपको प्रशांत जी से जुड़ना है तो आप 9414-1415 इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम लोग आपको हेल्प आउट करेंगे प्रशांत जी से जुड़ने के लिए। और आप अपना करियर अच्छे से करें, मैं चाहूंगा कि इसमें करियर में किसी की मत सुनिए, आप अपने दिल की सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है उसी में आप काम करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज हमने इस पर बात किया तो इसी में आप करियर बने, नहीं नहीं, हमारा मकसद ये है कि आपको अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताना और उसका लिमिटेशन क्या है और अनलिमिटेशन क्या है और उससे फायदा क्या है वो सारी चीजें बताना। अब आपकी रुचि देखिए, आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बने, अगर आप मैजिशियन बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मैजिशियन ही बने। किसी के कहने पर या पीयर प्रेशर में आकर, माता पिता के प्रेशर में करियर के बारे में कभी भी डिसीजन गलत ना हो आपका, क्योंकि करियर का डिसीजन अगर गलत हो जाता है तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ता है, फिर से वापस आपको समय मिलता नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि शो के माध्यम से सारी बातें आपको बता दे और आप अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़े, अपना करियर बनाएं, अपना और देश का नाम ऊंचा करें। ऐसी शुभ आशा के साथ फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति,
0: ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ।

0: और जहाँ पर एक सामाजिक बात रहती है, हम सभी जानते हैं चाहते हैं कि समाज की सेवा करें, लेकिन कभी कभी हम लोग अपनी ड्यूटी अपने परिवार की बातों में बंध के रह जाते हैं। कुछ ऐसे महावीर होते हैं जो इस बंधनों को तोड़कर समाज के लिए निकलते हैं और समाज की सेवा करते हैं। तो ऐसा ही एक व्यक्तित्व तो हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद है। अगली आवाज आप उनकी सुनेंगे, उनका नाम है श्री अरुण पवार जी, जो सोशल एक्टिविस्ट है और पर्यावरण को लेकर उन्होंने काफी काम किया है। और सिर्फ पेड़ लगाना ये उनका उद्देश्य नहीं है, पेड़ों को बढ़ाना, उनको बड़ा करना ये उनका मेन लक्ष्य है, जिसके लिए वो अपने 7-8 टैंकर्स जो है, समर में जब पानी नहीं मिलता, हमें भी पानी की दिक्कत हो जाती है, तो उन्हें पता है कि जब हमें तकलीफ हो रहा है तो पेड़ों को कितना तकलीफ होता होगा, पानी नहीं मिलने से वो ग्रो कैसे करेंगे। इसलिए 7-8 टैंकर्स वो हमेशा लगाए रखते हैं ताकि पेड़ ग्रो होते रहे और हम और आप अच्छी ऑक्सीजन लेते रहे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अगली आवाज आप सुनेंगे श्री अरुण पवार जी का। तो अरुण जी, आपको यहाँ रेडियो में आकर जो अपनी सेवाओं के बारे में, ये जो संस्था है इसके माध्यम से जो आप काम कर रहे हैं और सामाजिक सेवा का ये सपना कैसे आपने देखा और कैसे उसको हवा दे रहे हैं, फुलफिलमेंट कर रहे हैं?
1: जो भी आदमी जिंदगी बना देता है
0: जी,
1: तो दूसरे के लिए भी कुछ जीना पड़ता है। खुद के लिए तो कोई भी जीता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो एक सामने ऐसा हमेशा उम्मीद रख के हम भी, जब हमारा जिंदगी गुजारा तो एकदम जीरो में से बोलेगा तो एकदम कामगार से, जब अपना कर्म और निष्ठा
0: जी जी जी,
1: और अपन जब नीति बोल रहे जो अच्छा रखता है तो अपने को भगवान हमेशा साथ देते हैं।
0: सही बात है।
1: और अपन जब भी जिंदगी गुजरता है तभी खुद के लिए कम सोचना पड़ता है, समाज के लिए ज्यादा सोचना पड़ता है। जब तो भगवान अपने को कुछ मांगने का आस ही नहीं रखता है। तुम कभी भी सुख शांति ऐश्वर्य जो को आज अपना जिंदगी जीने के लिए कुछ लगता है, अपने को चंदा लगता है, अपना जब भी 10 रुपए का अपेक्षक रहेगा तो भगवान निस्वार्थपन से अपन काम किया तो अपने को 100 रुपए मिल जाता है। तो जब भी अपन 10 रुपए का मेहनत करके अपना ईमानदारी से ये अपन कर्म करते हैं, उसे अपने को 100 रुपए मिला है तो अपन 10 रुपए उसमें से समाज के लिए निस्वार्थ, कुछ भी मन में भेदभाव न रखता, समाज के लिए देना पड़ता है।
0: सही बात है। तो ये जो संकल्प है सामाजिक सेवा या पर्यावरण के लिए, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपने इसको चीजों को चुना?
1: पता ऐसा था तो हर एक आदमी का दिल में कैसा था, जब भी अपन झगड़ झगड़ के या मेहनत करके अपना पसीना बहा के खुद का जिंदगी सुधार देते तभी अपने को दूसरे को याद आ जाते हैं।
0: सही बात है।
1: अभी हमारे समझा आजोबा पिताजी बड़े होते तो हम इसमें नहीं आते थे, उनका ही परंपरा चला कि उनका पैसों से या उनका खेती बाड़ी या कदा व्यवसाय वही हम आगे चलाते थे और उसमें चलने में कुछ दिक्कत नहीं रहता है, पूरा फाउंडेशन रहता है।
0: बिल्कुल, बेसिक मिल जाता है।
1: वो तो लंगड़ा लोड़ा आंधा भी रहेगा तो भाग जाता है, मगर जब तुम शुरुआत ही मेहनत से कर देते तो समाज के लिए परिवर्तन बन जाता है और भगवान ही अपने को बुद्धि दे देते हैं और समाज के लिए अपन काम करते हैं।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका कोई गॉडफादर नहीं है कि इन सारी चीजों को आप लेके चले या करें, लेकिन आपने खुद से मेहनत करके उन चीजों को समझा और खुद को लगा कि मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स हैं तो मैं दूसरों लोगों के लिए, दूसरों के जीवन में कैसे ये चीजों को ला सकूं, तो आपने उस पर मेहनत किया और आप इसको धीरे धीरे करके शुरू किया। तो शुरुआत में जब आप इन सारी चीजों को करने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए, तो कुछ दिक्कतें आई या लोगों ने आपको सपोर्ट किया तुरंत?
1: दिक्कतें तो कल भी था, आज भी और कल भी आने वाले।
0: अच्छा,
1: अच्छा आदमी होने दो या बुरा होने दो, दिक्कतें आदमी को आज ही जाती।
0: अच्छा अच्छा।
1: जब भी जितना तुम सही और अच्छा काम करेंगे उतना ज्यादा दिक्कतें आते हैं, मगर ऊपर वाले का मर्जी रहता है, सही मकसद है समाज के लिए, निस्वार्थ है तो उसको सजेशन निकल के अपने को आगे जाने के लिए ऊपर वाला अपने को भगवान ये सब अपने को मार्ग निकल के दे देता है, अपन चलते रहते हैं। बात ऐसे दिक्कतें आते परेशानी बढ़ते मगर अपना जो मकसद अच्छा रहेगा समाज के लिए,
0: जी जी,
1: ये मट्टी के लिए, देश के लिए, तो वो ऑटोमेटिक कैसा रहता है, कचरा तो आता है मगर हवा में से वो निकल के अपने को अच्छा रास्ता मिल जाता है, अपना मकसद ही अच्छा रहता है। पूरा दुनिया में स्वार्थ कुछ भी नहीं रहता है, जितना अपना जिंदगी में अच्छा करना है उतना अपना करके
0: आप निकलते
1: आगे निकल के जाने का ये मकसद है, इसलिए प्रॉब्लम आ जाता है मगर यू मिनट में निकल के जाते हैं।
0: अरे वाह,
1: प्रॉब्लम बहुत आते हैं, इतने प्रॉब्लम आते हैं कि मगर ऐसा लगता है कि कुछ सजेशन नहीं मिलेगा, मगर ऊपर वाले का दुआ और अपना निश्चय।
0: कोई एक केस स्टडी छोटा सा घटना के बारे में बताइए जो आपको प्रॉब्लम आया हो।
1: नहीं तो हमारे को बहुत आए ले।
0: एक आध सुनाइए।
1: जब भी बिजनेस करता है तभी कैसा होता है, लोग

0: सुलता बिल रुकाने वाला रहता है, जानबूझ के टांग डालने वाला रहता है, तो अपन शांति से काम लेने का। जब उनको ही पता चलेगा कि ये आदमी को कुछ भी गलती नहीं, आपने ही गलत काम किया, तो अपने को रास्ता देखे वो आगे बाजू में निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो दिक्कतें आते ही रहते हैं समाज में, जिंदगी जीना है तो दिक्कतें आती रहती
1: जी,
0: मगर अपना मकसद सीधा रहेगा तो अपने को मार्ग निकल के अपने को आगे जाने को आ जाता है।
1: अच्छा, जो पेड़ों का मुहिम है वो आपने कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया है, उस जगह के बारे में बताइए, अभी कैसा है और पहले कैसे था?
0: पेड़ों का शुरुआत ऐसा है, जो अपने विश्व गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज
1: जी जी जी,
0: उन्होंने पेड़ को ही अपना सगा सोयरा माना था, तो भगवान ही माना था पेड़ को, तो वही हमारे को लगता था, तो आदमी तो दोन पैर वाला, आज नहीं तो कल पार दिखाने वाला है, मुंह कभी नहीं दिखाएगा, मगर जो पेड़ रहता है वो विश्व के लिए काम करता है, मट्टी के लिए काम करता है, ऑक्सीजन के लिए काम करता है, तो पेड़ ही लगाना बहुत अच्छा है बाकी काम करने से। हम तो बच्चे लोगों के लिए शायद शैक्षणिक मदद रहने दो, जितना बनता है उतना अपना
1: करना,
0: भगवान बुद्धि देता उतना हम देखे बाजू में हो जाता है। हम दुष्काल में 20 गांव में प्राणी के लिए काम किया, प्राणी के लिए इतना काम किया कि गाय भैंस के लिए तो काम किया हम, मगर जंगल में हम मुरुम में टाकी खोद के सरपट और प्राणी रहता है, वो सरड़ रहता है, सांप रहता है, उनका भी हम पीने के लिए बंदोबस्त किया था।
1: अरे वाह।
0: और धूप में इतना था जो पक्षी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हम उनका बाजू में जो पक्षी के लिए लगता है, धान्य लगता है, काकड़ी लगता है, गाजर लगता है, जो हमारे भमरे साहब आए, तो ऐसा मिलके सहकार्य करता था।
1: हाँ।
0: और हम भी करते थे, तो हमारा धाराशिव जिले में परांडा बोल के, उधर पानी नहीं था, पानी था तो मगर वो गंदा था, तो कम से कम 200 या 250 जो मंकी रहते हैं ना, वो गुजर गए थे।
1: ओहो,
0: तो हमारे को इतना व्यादना हो गया कि हमको उस दिन खाना भी नहीं गया, जो हमारा मित्र परिवार, हम बोल के भाई उधर ऐसा ऐसा हो गया, तो हमारे पास टैंकर था पानी का, तो हम वो पानी के लिए हम एक टैंकर उधर रखा था 5 या 6 महीना, और उनका खाने का भी हम बंदोबस्त किया जितना बनता है उतना, हम भी उसमें सजेस्ट किया, और जो जिनको दिल है मन है उनको भी हमको हेल्प किया, तो उनके लेके हम उतना ही वो बड़ी सेवा किया उधर, वो पानी बचाने का उतना।
1: क्या बात,
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि अनिल पवार जी को आपने सुना किस तरह से उन्होंने अपना काम किया, और शुरू शुरू में हर अच्छे काम के लिए भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलें आने से आपको घबराना नहीं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि आप पीसफुली उन चीजों को बताते रहिए और आप अपनी तरफ से कोई रिएक्शन मत कीजिए, तो कुछ समय के बाद चीजें जो है आपके अनुकूल हो जाएगी। लेकिन कभी कभी हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, और चीजों को जो है जैसा कोई आपको रोक रहा है तो आप दूसरों को रोकने जाते हैं, तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है, यहाँ क्लाइमैक्स शुरू हो जाते हैं, यहाँ फिल्म बनती है। हमें फिल्म नहीं बनाना है, हमें समाज का कल्याण करना है, हमें मनोरंजन नहीं करना है, क्योंकि दो लोग लड़ते हैं तो हजारों लोग देखते हैं और उनके लिए एक मनोरंजन का साधन बन जाता है। तो हमें शांति से काम करना है जिससे हमारे जीवन को एक गति मिल सके और हम अपने मकसद में सफल हो सके। हम अगर अपने कार्य को, पेड़ लगाने का काम अगर हम शांति से करते हैं और उसकी पालना करते हैं, तो हजारों लोगों की दुआएं बाद में आपको मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर वो प्योर ऑक्सीजन उसके पास चला जाता है तो कहीं ना कहीं दुआएं बनकर ही वो आपको मिल जाती है। आप व्यक्ति से अपेक्षा न रखें, उस ईश्वर का, जैसे तुकोबा का जो है अरुण पवार ने याद किया कि उन्होंने भी कुदरत को, नेचर को अपना देव माना, और उनसे उन्होंने उनकी पालना की, उनकी देखरेख की, और लोगों को एक नया रास्ता दिखाया जीवन जीने का। तो हमें भी हमेशा कुदरत के साथ रहना, ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज मिलता है। तो जाते जाते अरुण पवार जी, मैं चाहूंगा एक संदेश, एक मैसेज, रेडियो से आपको काफी लोग सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि सब तक पहुंचना चाहिए वो जरूर सुनाइए।
0: एक बात ऐसा है आज का, समझो उसमें हम भी शामिल रहेंगे, पेड़ लगाए, बच्चे लोगों को स्कूल की हेल्प किया, सब कुछ किया, इतना अच्छा काम करने का था किया, मगर अभी जो बीच में 2021-22 में कोरोना का महामारी आया था
1: जी जी जी,
0: तो अपन भी बचे हैं, कोरोना ये हर एक आदमी को स्पर्श करके गए, ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अच्छा बोल के उनके पास छोड़ के गया,
1: बुराई तो छोड़
0: बुराई तो उसको चित्र पे, ऐसा नहीं किया, हर एक आदमी को कोरोना स्पर्श करके गया, मगर उसमें जो बचा अपना माँ बाप का पुण्य है, अपन जो अपना जिंदगी में कर्म किया, अच्छा मन रखा, उसके लिए अपन बच गया, तो भगवान का या ऊपर वाले का शुक्र करना पड़ता है हर एक आदमी ने, प्राणी से लेके संत महासंत रहेगा, कोई भी आदमी रहेगा तो, मगर एक बात इसमें से देखने को मिला, इतना कोरोना में हर एक आदमी

0: पुनर्जन्म हो गया, मगर जो हिंसा नहीं वैसे की वैसे रह गए, अर्धा टक्का भी बदलाव नहीं हो गया, उसके आज भी दर्द होता है कि चलो आपने को पुनर्जन्म मिला है। समझो हम कल गलत काम करता था, आज तो करना ही नहीं पड़ता है। भले सोना मिलता रहेगा 10 किलो या 1 करोड़ कोई देता रहेगा गलत काम का, तो उसको किसी ने हाथ नहीं लगाना पड़ता है। अपना मेहनत का मिलता है उतना ही अपन हाथ में लेना पड़ता है, अपना मेहनत में से समाज सेवा करना पड़ता है।
1: सही बात है।
0: अभी हम समझो हमारा पहचान है बोल के, कल हम घुमरे साहब के पहचान है बोल के 1 लाख रुपए लेंगे और हमारे को बात किया तो देंगे भी, मगर उनका पैसा लेके हम समाज सेवा किया तो वो गलत होता है।
1: सही बात है।
0: हम का समाज सेवा कर रहे हैं तो उनको भी लगेगा कि चलो पावर 100 रुपए का कर रहे हैं तो अपन 10 रुपए का करना पड़ता है, अपना ही फर्ज बनता है। मगर इसमें से इंसान इतना बदल गया है कि क्यों जिंदगी जी रहा है, किसके लिए जी रहा है। अभी समझो घुमरे साहब बिजनेस कर रहे हैं, उनका किस्मत है, उनको भगवान ने रोजी रोटी दिया है, बुद्धि दिया है करके कर रहे हैं, मगर वो भाग रहे बोल के हम उनके पीछे भाग रहे हैं। मगर घुमरे साहब का मकसद है कि मेरे को बिजनेस करके संसार संभालने का है, समाज के लिए कुछ लेन देन करने का है, समाज परिवर्तन करने का है, उनका सिद्धांत है। मगर हमारा तो कुछ भी नहीं, घुमरे साहब भाग रहे बोल के हम 10 लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। ऐसा जमाना आ गया और कोरोना काल में ऐसा हो गया कि प्राणी में बदलाव आ गया। सच्ची में देखो अपन छोटा छोटा क्लिप देखता है, प्राणी को हेल्प कर रहा है अपना, उनका हाथ में एक फल रहेगा तो अर्धा उसका दे रहा है और अर्धा वो खा रहा है। मगर इंसान ऐसा है कि खुद का ताट भर के भयके जा रहा है फिर भी दूसरे का ताट में से खींच रहे हो, ये बदलाव नहीं हो गया। कहने का मतलब ऐसा है कि प्राणी में बदलाव हो गया, इंसान है वो फाइबर शरीर का वैसा के वैसा रह गए, वो फाइबर मरता नहीं ना, वैसा इंसान का जिंदगी बन गया। तो उसके लिए कुछ तो भगवान ने सबको अच्छा बुद्धि देना मांगता है और इंसान बोल के तुम जीव बोल के एक सजेस्ट देना मांगता है और एक सद्बुद्धि देना मांगता है, यही आज का जमाने में अच्छा है। यही संदेश सबसे बड़ा है।
1: सबसे बड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरुण पवार जी बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बात जो है दिल तक पहुंच गई होगी, क्योंकि कोरोना ने हमें एक नया जिंदगी दिया, हम सभी को एक नया जीवन देके चला गया, लेकिन हम लोग उस नए जीवन को कैसे जीना है ये शायद आज तक नहीं सीख पाए, जबकि इससे ज्यादा कुदरत में पशु प्राणियों ने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा है। और जो आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोगों ने शॉर्ट्स बना के वो मैसेज भी दे रहे हैं, लेकिन हमें उसको मनोरंजन की तरफ से हम देखते हैं और अपने जीवन में उसका कोई लेसन लेते नहीं। इस वजह से ये मुश्किल घड़ी है इंसानों के लिए। इसलिए मुझे एक जो है हमारे पुराने कुछ शब्द याद आते हैं, आओ कुछ ऐसा किया जाए, आओ कुछ ऐसा किया जाए फिर से इंसान को इंसान बनाया जाए। तो जीवन में हमें जो है इंसान, हम सभी लोग हैं, लेकिन इंसानियत को लेकर जिंदा रहना ये हमारी असली पहचान है। तो हमें सबके साथ सहानुभूति होकर अपने जीवन को बेहतर बनाना है, दूसरों के लिए भी काम आना है, दूसरे के जीवन को भी बेहतर बनाने में हमें समय देना है, ये बहुत जरूरी है। तो आशा करूंगा आपको अरुण पवार जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक जो है उमंग आया होगा, दूसरों के लिए सहानुभूति जरूर जगी होगी। तो इस ज्योति को बनाए रखें और ज्योति से ज्योति जलाए करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। एक बार आप सभी की तरफ से पवार जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, खुश रहिए, खुशियां बांटिए।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
3: तेरे जैसा यार कहां,
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
2: मला पीठ वाजल्या की शरीर अपोप फिरकतं। त्याच सोबत गावाची आठवण, मातीचा सुगंध, जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
3: पहला नशा, पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में

0: मूर्ति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

गीता की तबीयत में जहाँ शोकी और चंचलता थी, वहाँ जिम्मेदारी का भरपूर एहसास भी था। हमने कई गाने एक साथ गाए, इसलिए बड़ी अच्छी दोस्ती थी। गीता बहुत जल्द किसी भी बात से परेशान हो जाती थी और परेशानी बढ़ जाती तो सीधे मेरे पास आ जाती। उसे मुझसे मिलने की जितनी जल्दी हुआ करती थी, उतनी ही जल्दी गीता ने इस दुनिया से जाने में भी दिखाई। ये वक्त का सितम नहीं तो और क्या।

मंजिल है प्यार की। झूम झूम गाऊं नजारों पे खाऊं सनम मैं दिल बहार की। मैं अलबेला जाऊं।

खजाना झूम झूम लहराता चल। अरे पीले खाले प्यार कताना झूम झूम लहराता चल। ऐ मेरे दिल

0: दे दे हम सफर है
1: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।

हम तो हैं राही दिल के, पहुँचेंगे रुकते चलते, मंजिल है किसको प्यारी हो। अरे हम तो हैं मन के राजा, राजा की

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्रल्ला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्रल्ला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: अल्लाह
1: अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
2: हर हर

अंजन। भाभी ने जो घूंघट खोला तो आँख में पड़ गया सादा, खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन। भाभी ने जो घूंघट खोला तो आँख में पड़ गया सादा, भाभी जी ने

0: की रे पाप की रे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे पाप की रे पाप की रे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे
1: अपने दुम में बांधे
0: अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस आलम में तो साहब बन गया attention salamat sa

जाए आके चंदा पर खा जाए माता द्वारा हाथ हाथ तुम्हारा है।

क्या कहने हैं, क्या खूब कही है दिल की है। अमा यार तुम भी तो कुछ कहो अपना दिल की।